0: in North Dallas. From beginner to competitive athletes, structured coaching, expert guidance, and performance-driven training, ages 8 and above.
1: Frisco Precision Sports Academy, powered by Arjun Archery Academy, conveniently located on Quiet Road in Frisco. Visit friscoprecisionsports.com or call 469-333-1099.
2: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
3: Ocho.
4: Hoko.
3: Ocho.
4: Hoko.
3: Ocho.
4: It's Hoko.
5: अरे बस भी करो यार.
4: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
5: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
6: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
7: क्या मतलब?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.

डालस की जनता, क्या हाल है आप सभी लोगों के? मेरे तो बिल्कुल ठीक है। इट इज थर्सडे इवनिंग यहाँ, दैट मींस मैं सिर्फ आपके साथ सिर्फ आज होने वाली हूँ, उसके बाद मैं मंडे को मिलूंगी। यस इट इज योर बेस्ट एपी द हैप्पी ओनली on Financial Radio 104.9 FM. Thank you again for joining me every single day of the week. जब आप 7 बजे लॉग इन करते हैं, लॉग इन तो नहीं, मैं लॉग इन बोलती हूँ, हम इतना इंटरनेट पे डिपेंडेंट हो गए ना, जब 7 बजे आप रेडियो ऑन करते हैं ऑन योर ड्राइव बैक होम एंड यू कॉल मी अप एंड टेल मी यू हाउ मच यू लव माय प्लेलिस्ट एंड माय म्यूजिक, आई एब्सोल्युटली लव इट, बिकॉज ये सब मैं आप ही के लिए करती हूँ एंड दिस इज ओनली फॉर यू गाइज। लेकिन गाइज, ड्राइव करते करते कभी कभार एक्सीडेंट्स भी हो जाती हैं, धक्के भी लग सकते हैं, तो अगर यू बीन इन्वॉल्व इन अ क्रैश, ट्रक एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, देन लेट अटर्नी ओमर ख्वाजा हैंडल द लीगल बैटल वाइल यू कैन फोकस ऑन फिजिकल एंड मेंटल हीलिंग, बिकॉज इट्स अ रियली स्ट्रेसफुल टाइम। आई हैव बीन थ्रू इट, आई एम श्योर सम ऑफ यू हैव बीन थ्रू इट एज वेल। ही विल फाइट फॉर द कॉम्पनसेशन दैट यू गाइज आर इंटाइटल टू, और आप उनको कोई भी पैसे नहीं देंगे अनलेस योर केस इज वन। तो मतलब कोई मतलब लॉस ही नहीं है, मतलब अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप कैसे पता चलेगा। तो कॉल 4693005046 और विजिट attorneyomer.com फॉर योर फ्री कंसल्टेशन। दैट इज राइट फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास बहुत अच्छा शो प्लान्ड है। आज थर्सडे है, इट इज व्हाट डेट इट इज, व्हाट डेट इज इट, इट्स द 19th और द 20th, भाई मुझे तो टाइम का ध्यान ही नहीं रहा आजकल, लेकिन कोई बात नहीं, आपको तो है ध्यान। एग्जैक्टली गाइज, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो इनटू सम मोर म्यूजिक। आई विल बी राइट हियर विद यू। 8 बजे आपको पता है क्या होने वाला है, 8 बजे हमारा गिव अवे राउंड होता है, सो वी आर गोइंग टू प्ले द गिव अवे। आज का हमारा गिव अवे होगा कंप्लीट द डायलॉग, ठीक है? तो आप ये गाना सुनिए एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।

we are back, guys. You're still listening to Funasia Radio 104.9 FM, and this is your bestie, Ippy the Hippie, and aap sun rahe mera show, An Evening in Dallas. That's right, guys. पता है वो गाना कितना ज़्यादा energetic नहीं था? मुझे तो हर बारी वो गाना सुनके ना ऐसे थिरकने का मन करता है. I was like, oh my gosh, so the energy on that one. But do you guys remember कुछ महीनों पहले ना, there was this American girl, you know? Like American, she was white, you know, she was not our desi, but she, one of her reels became so viral because she was not only dancing to this, but apparently she was talking about this particular song. She was talking about it so much ki log gym jaane se pehle na pre-workout dalte na apni drink mein, coffee mein ya pani mein pre-workout dalke unko energy aati hai. Pre-workout is basically like caffeine, jinko nahi pata hai. तो वो मैडम कहती है कि भाई आई डोंट डू एनी प्री वर्कआउट, ऑल आई डू इज आई पुट ऑन दिस धूमता नाना ना गाना और उसके बाद मैं घर पे इतनी तेज तेज डांस करते हुए फुल एनर्जी के साथ जिम में जाती हूँ और जिम में जाके मेरी पूरी एनर्जी एकदम फुल ऑन होती है. सो शी यूजेस दिस सॉन्ग, शी इज नॉट इवन देसी, शी यूजेस दिस सॉन्ग टू लाइक हाइप हर अप इन द मॉर्निंग सो शी कैन गिव इट हर बेस्ट इन द जिम. इज दैट अमेजिंग? म्यूजिक can cross boundaries. Music needs no language, nothing like that. Bhai, music is a language in itself. तो अगर आपको rhythm और groove और सुर का अगर आपके दिल को छू जाता है तो it doesn't matter कौन सी language में. मैं तो African गाने भी सुनती हूँ, उसमें क्या है. तो energy से याद आया guys, आपको पता है ना Sonu Nigam is coming to Dallas. Yes, Sonu Nigam Revolution. Get ready for an unforgettable night of music. The one and only Sonu Nigam, he's going to be live in concert on September 26th, which is a Saturday at 8:30 p.m. at the Credit Union of Texas Event Center in Allen. Your favorite song, that iconic voice, everything is going to be live. Tickets are already on sale at Ticketmaster, so don't delay because it's only about a month away. उसके बाद tickets के prices बढ़ जाते हैं, आपको पता है ना जब जितनी close जाते हैं show के उसके ticket price बढ़ जाती है. For more information, call 855-360-SHOWS. Revolution, Sonu Nigam live, exclusive media partner, Fun Asia Network, of course, the one and only. तो गाइज इसी खुशी में मैं आपको सोनू निगम जी का एक बड़ा अच्छा सा नया गाना सुनाती हूँ. ये आपने कभी नहीं सुना होगा लेकिन आपको सलीम सुलेमान पता है ना, द एब्सोल्युटली फेमस बॉलीवुड कंपोजर्स, द डुओ सलीम सुलेमान, दो भाई हैं, उन्होंने बहुत सारे मूवीज में कॉम्पोजिशन किया हुआ है. तो फॉर पीपल हु डोंट नो, दे एक्चुअली हैव एन इंडिपेंडेंट लेबल ऑल्सो. इंडिपेंडेंट मतलब क्या? इंडिपेंडेंट मतलब ये कि वो outside of the movies अपने गाने डालते हैं and they collaborate with like lots of different artists, small artists, big artists, everything, and they give like little artists chance as well. तो उनमें से एक collaboration है सलीम सुलेमान जी का, one of their compositions, but it is sung by the one and only Sonu Nigam and Vishal Dadlani. Can you believe it? So I just came across the song and I thought I have to share it with you guys क्योंकि I'm sure आपने नहीं सुना होगा. ये अभी कुछ सालों पहले, एक साल पहले ही शायद रिलीज हुआ था, I think 2024 में रिलीज हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी सुन लीजिए उसमें क्या जाता है. This song is called जान ले गई.

एंड आई हैव गॉट अनदर ट्रीट फॉर यू. पर मैं सोच रही हूँ ये मैं अभी बजाऊं कि मैं बाद में बजाऊं. क्यों एक्चुअली मैं सोच रही हूँ ये जो है ना मैं थोड़ी देर बाद बजाऊंगी, ब्रेक के बाद, क्योंकि आपको पता ही है यूफोरिया कौन है भाई. यूफोरिया द वन एंड ओनली द पीपल हु रोड धूम पिचक धूम पिचक धूम एंड मायरी यादवो, दे जस्ट केम आउट विद अ न्यू सॉन्ग लिटरली येस्टरडे. एंड आई नो मेरी सारी मिलेनियल जनता जो इस वक्त थके हारे कॉरपोरेट जॉब से वापस करके ड्राइव करके वे आ रही है, आप सब सब सोच रहे हैं कि ओ माय गॉश यूफोरिया इज बैक. यस गाइस, दे आउट विद अ न्यू सॉन्ग फाइनली आफ्टर लाइक अ डेकेड और समथिंग. सो आई एम गोना प्ले दैट फॉर यू, लेकिन वो हम ब्रेक के बाद बजाएंगे, क्योंकि नहीं तो फिर ब्रेक शुरू हो जाएगा 2 मिनट में, फिर गाना खत्म हो जाएगा. देन आई डोंट वांट टू रूइन द एक्सपीरियंस. सो वी विल वेट अंटिल वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक. ओके, तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए.

0: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online third through sixth grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
5: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज थ्री में होना मेरी गारंटी है।
4: कैसे?
5: पेज थ्री ईटरी?
4: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
5: डूड, इट्स पेज थ्री। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
4: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
6: पेज थ्री ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
7: अजी सुनते हो?
8: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
9: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Funasia Radio.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
9: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
12: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
9: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
12: इंडिया तक।
9: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्डवाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
11: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
13: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड।
14: Friends, we are back. Yes, this is still Ippy the Hippie on Funasia Radio 104.9 FM, and you are listening to my show, An Evening in Dallas. So, as promised, for all my millennial साथियों, अगर आपको पता है, आपको I'm sure पता है, आप सबको मायरी गाना तो पता ही है, धूम पिचक धूम पता है। तो इसीलिए आपके लिए ये यूफोरिया का नया गाना, वैसे कुछ सालों पहले वो डैलस भी आए थे, पर समहाउ द ऑडियंस डिडंट लाइक इट दैट मच। हाउएवर, इट्स अ डिफरेंट वाइब यू गाइस, इट्स नॉट लाइक बॉलीवुड, इट्स लाइक इंडी एंड लाइक फोक म्यूजिक मीट्स रॉक। तो आई होप यू एंजॉय दिस वन।
15: Oh, chuck it down.

छुटिया छुटिया ये कोई गाना होता है।

भाई वो डायलॉग वगैरह आप अपने आप से सुन सकते हैं, वो अगर यूट्यूब का यूट्यूब खोलेंगे, यूट्यूब पे वीडियो लगाएंगे यूफोरिया का गाना कोई ना, तो आप उसके यू नो वेरी टिपिकल थिंग ऑफ यूफोरिया, पता है क्या है, वो सिर्फ गाने नहीं रिकॉर्ड करते हैं, वो जब वीडियो भी डालते हैं ना पूरे उसमें स्टोरी होती है, एक ऐसा लग रहा है आप शॉर्ट फिल्म देख रहे हो, पूरे 7 मिनट 7-8 मिनट की वीडियो होती है, शुरू में थोड़ा डायलॉग होता है, एंड में थोड़ा सा डायलॉग होता है, देन इट जस्ट द सॉन्ग जस्ट हैज मोर कॉन्टेक्स्ट टू इट, है ना। तो बाय द वे गाइस, कॉन्टेक्स्ट से याद आया, टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, डिड यू सी दैट उत्तर प्रदेश के एक गांव में, अमेठी में एक गांव है भनौली बोल के, वहां पे एक आदमी अपनी जमीन की फाउंडेशन खोद रहा था, वो अपना नया घर बना रहा था, तो वो फाउंडेशन का काम कर रहा था, और उसमें डिग करते करते खोदते खोदते पता है उसको क्या मिला, 29 कॉपर के गमले, ऐसे मटके छोटे छोटे जिसमें सोने के सिक्के भरे हैं। कैन यू बिलीव इट, आज की डेट में भी लोगों को सोने के सिक्के मिल रहे हैं अपनी जमीन के नीचे से। भाई व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज हमें भी मिल सकता है यार, हम भी चलो अपने बैकयार्ड में जाते हैं मेटल डिटेक्टर लेके, पता नहीं कहाँ कभी कुछ क्या मिल जाए। इजन दैट अमेजिंग, एंड पीपल आर सेइंग दीज ईच ईच मटका अपेरेंटली वेज अराउंड 9 से 10 किलो। इमेजिन अगर आपके पास 9 से 10 किलो के सोने के सिक्के मिल जाएंगे अपने जमीन के नीचे गड़े हुए, तो मतलब हमें जिंदगी में कभी काम ही करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, ऐसी होनी चाहिए किस्मत, ऐसी होनी चाहिए किस्मत, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपनी किस्मत अपने जैसे एंजॉय करेंगे, है ना।

watch this. गाइज वी आर बैक. हाँ जी हाँ जी, 8 बजने वाले हैं. मैंने अपना गाना भी तैयार करके रखा है. आज मैंने थोड़ा सा सोचा कि डायलॉग ना बोल के गाना ही करते हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसर्च कर लिया, मैंने ढूंढ लिया है. और आपके लिए हम गिव अवे गाने वाला करेंगे, नॉट द डायलॉग वाला, क्योंकि डायलॉग वाला यार थोड़ा मुश्किल हो जाता है, याद नहीं रहता उतने डायलॉग्स, है ना. तो कोई बात नहीं गाइज. पता है आपको, अमेरिका में अभी बहुत कुछ चल रहा है वीज़ा वगैरह को लेके. रोज़ ही ऐसा लग रहा है कि रोज़ ही नई रूल आ रही है वीज़ा को लेके. अभी आज ही मैंने देखा कुछ, तो मतलब आई फॉलो ऑल दीज लाइक इंस्टाग्राम लॉयर्स या जो भी है. आई नो दैट्स नॉट द राइट सोर्स टू फॉलो, बट स्टिल समटाइम्स देयर इंफॉर्मेशन इज़ क्वाइट ओके. समटाइम्स यू जस्ट, इफ यू जस्ट नीड टू बी अपडेटेड ऑन द न्यूज़ ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग, इट्स द ईजिएस्ट वे टू गो अबाउट इट. तो इसीलिए गाइज, डोंट डिपेंड ऑन द इंस्टाग्राम लॉयर्स. अगर आपको भी इमिग्रेशन रिलेटेड कोई सवाल है, या वीज़ा रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं वे यू हैव टू काइंड ऑफ फिगर आउट योर स्टे, देन यू नीड टू रीच आउट टू सीमा मेहता लॉ ऑफिसर्स. इफ़ यू आर ऑन H-1B, F-1, LL-1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एंड यू आर प्लानिंग योर पाथ टू US परमानेंट रेसिडेंसी, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प. अटर्नी सीमा मेहता एंड हर एक्सपीरियंस टीम स्पेशलाइज एक्सक्लूसिवली इन इमिग्रेशन लॉज, इंक्लूडिंग EB-5, इन्वेस्टर वीज़ाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज, पर्म लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप. For more information on EB-5 Investor Visa Program, email info@seemamehtalawfirm.com. That is info@seemamehtalawfirm.com. Yes. So, guys, always talk to an expert, because you never know what you might be qualified for. Sometimes we don't have all the information, but unless and until you try, you will never find out, right? So, isiliye, guys, reach out to the right source without wasting any more time. Let's go into the next song, and then I have some really amazing things to share with you later today. But uske pehle aap ye gana suniye.

गाइज, अभी जो गाना आप सुन रहे थे उसका ना फैशन जो था, आई मीन दिस वॉज लाइक एन अर्ली 2000 सॉन्ग. ऑफ कोर्स यू हर्ड बॉम्बे वाइकिंग्स, ये बॉम्बे वाइकिंग का गाना था. ओरिजिनल तो खैर पुराना, बहुत पुराना था, बट दिस वॉज लाइक अ रीडन वर्जन बाय बॉम्बे वाइकिंग. एंड उसमें ना मैं वीडियो देख रही थी अभी, ये गाना बजते बजते बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा था. इट इज़ सो फनी, द फैशन इन दी अर्ली 2000s वॉज एब्सोल्युटली सो रिडिकुलस. यहाँ पे एक छोटी सी हॉल्टर टॉप है, क्रॉप टॉप है, एंड देन यू हैव लाइक स्पाइकी हेयरडूज, मतलब जूड़ा बना के रखा है, उसमें से स्पाइक्स निकल रही हैं. उसके बाद फ्रॉस्टेड आई शेडो, आई मीन लाइक सिल्वर सिल्वर वाइट, ऐसे इस तरह के कूल शेड्स वाले आई शेडो, लाइक लाइट ब्लू. एंड देन साथ में नाक में नथ और सर के ऊपर एक बिंदी, एंड मतलब पहनी है मिनी स्कर्ट इसके साथ. एंड यू नो हाउ दिस वॉज इंस्पायर्ड? दिस वॉज एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय ग्वेन स्टेफानी. इफ यू नो हु ग्वेन स्टेफानी इज, देन ग्रेट. इफ यू डोंट, देन ग्वेन स्टेफानी वॉज लाइक एन एब्सोल्यूट आइकॉन ऑफ अ सिंगर, अमेरिकन सिंगर. दिस लेडी फ्रॉम हियर इन द US, एंड शी वॉज रियली पॉपुलर. शी वॉज द फ्रंट वुमन ऑफ दिस बैंड कॉल नो डाउट, एंड शी वॉज लाइक रियली रियली पॉपुलर इन द लेट 90s एंड अर्ली 2000s. तो ग्वेन स्टेफानी का जो पूरा लुक था ना, ये हॉल्टर टॉप, क्रॉप टॉप, एकदम लो वेस्ट जीन्स, डेंजरसली लो वेस्ट जीन्स, अलॉन्ग विथ यू नो वट एवर हर मेकअप एंड द स्पाइकी हेयर, साथ में सर के ऊपर बिंदी. और उसको पूछा, ये तुम बिंदी क्यों पहनती हो, ये तो वेरी इंडियन कल्चर है, व्हाट इज दिस लॉजिक? कहती है, मुझे तो कूल लगता है, दैट्स व्हाई आई वेयर इट. एंड देन इट हैड बिंदी वाज एक्चुअली स्टार्टिंग टू काइंड ऑफ गो आउट ऑफ फैशन इन द अर्ली 2000s, एंड इट एक्चुअली टुक एन अमेरिकन, इट्स कॉल्ड रिवर्स कॉलोनाइजेशन, इट टुक एन अमेरिकन टू एम्ब्रेस इट एज अ पार्ट ऑफ लाइक द रेगुलर आउटफिट. एंड देन शी मेड इट लाइक कूल, एंड ऑल द किड्स स्टार्टेड वेयरिंग इट विद पैंट्स एंड शर्ट, एंड यू नो यू जस्ट डिडंट हैव टू वेयर एन इंडियन आउटफिट टू वेयर अ बिंदी एंड अ नाक में नथ. इट्स सो फनी. एंड आई वाज लाइक, यार ये कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जस्ट टू बी कूल. एनीवेज गाइज, वी आर गोना गो इन टू अ ब्रेक इन अ रियली शॉर्ट वाइल. लेकिन उसके पहले मैं आपको अपना गाना बजाना चाहती हूँ दैट आई हैव प्लेड अ फ्यू टाइम्स. दिस इज माई सॉन्ग किताबे, एंड आई कोलैबोरेट विद दिस डीजे दैट आई मेट हियर इन डैलस. हिज नेम इज थर्ड स्टेट, एंड इफ यू लाइक इट देन यू कैन लिसन टू इट ऑन स्पॉटिफाई एंड यूट्यूब म्यूजिक एवरीवेयर एल्स. And the more you listen to it, the more it helps me. So, bas, you just have to listen to it. If you like the song, and if you like my voice, and if you want any live acts for your individual events and parties and stuff, I also have a Dallas-based Bollywood band called the Dallas Bollywood Project. We do a lot of corporate events. So, agar aap corporate events hain, agar aapka koi, you know, you need a entertaining act with contemporary Bollywood music, then do reach out to us. You can find us anywhere on Google or Instagram or Facebook, wherever you look for it. I'll see you in a short while.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
4: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
3: Kya matlab?
4: Oora can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
3: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
4: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
3: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
6: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke योग
7: है। अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: एक और लड्डू ले लो।
11: थोड़ी और बिरयानी।
10: अरे अमरीका जाके थोड़ी मिलेगा।
12: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
13: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जायटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
14: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
8: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स। और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो। विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
15: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
16: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
17: If I get married, I'll wear a Karina designer lehenga. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय
10: कर। अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
16: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
10: वेट, इतना सब और प्राइस?
16: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
18: मैं हीरो।
19: डैलस, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए।
20: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल। एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलिशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड and family fun for every age.
11: Live performance by Raga Boys.
20: Saturday, August 22nd from 3 p.m. to 11:45 p.m. at South Fork Ranch in Parker, Texas. Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayat Mela 2026.
11: Media partner, Fun Asia Network.
18: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
21: Hello everyone, this is Ippy the Hippie and we are back on Fun Asia Radio 104.9 FM and this is my show, An Evening in Dallas. Thank you again for constantly listening to my show and giving me all the beautiful calls. और मेरा हाल चाल पूछने के लिए मुझे बड़ी खुशी होती है. मेरे अपने मेरा हाल चाल नहीं पूछते, जब आप पूछते हैं आई फील लाइक सो लव्ड. आई फील सो लव्ड. थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट. लेकिन बाय चांस अगर आपकी कॉल मिस हो जाती है एक्सीडेंटली, तो गाइज डोंट वरी अबाउट इट. वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि या तो मैं कभी अपने स्टेशन से निकल के वॉशरूम जाती हूँ या फिर कुछ हमें नेक्स्ट पार्ट के लिए क्यू वगैरह करना पड़ता है गाना. सो यू कैन ट्राई बैक अगेन एंड देन आई विल आंसर योर कॉल अगेन. ओके, लेट्स गो इनटू आवर गिव अवे राउंड. आपको पता है ना ये कौन सा टाइम है? इट इज़ द टाइम टू प्ले द गिव अवे, द वन एंड द ओनली गिव अवे. वही आज का हमारा गिव अवे है फ्रॉम फूडिस्तान. जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वैसे ही फूडिस्तान. फूडिस्तान में क्या मिलता है? फूडिस्तान में सारी इंडियन ग्रोसरीज, हलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानीपुरी, फ्रेश गन्ने का जूस, आए हाय हाय, केटरिंग सर्विसेज, इवन एन अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस. ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो टू फूडिस्तान एंड ऑबरी. आपकी सारी नीड्स वहीं पे आंसर हो जाएंगी. और सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है? वो फ्री डिलीवरी भी ऑफर करते हैं इफ़ योर ऑर्डर इज अबव $30 एंड यू आर विद इन द 5 mile रेडियस. तो अगर आप प्रेस्टन होलो में रह रहे हैं और ऑबरी से ऑर्डर कर रहे हैं तो आई मीन डोंट एक्सपेक्ट फ्री डिलीवरी. लेकिन अगर आप ऑबरी में रह रहे हैं और ऑबरी से ही ऑर्डर कर रहे हैं देन तो आपको मिल जाएगी शायद. ओके, इफ यू मेंशन फन एशिया यू कैन ऑल्सो गेट ए 10% डिस्काउंट. और पता है सब चीज़ की सबसे बड़ी गारंटी क्या है? दे ऑफर द लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. तो जैसे अगर आप बटर चिकन मसाला लेने गए और आपको बटर चिकन मसाला किसी और ग्रोसरी स्टोर में $4 का मिला और यहाँ पे $2 शायद ज़्यादा था, यहाँ पे $6 का मिला, मुझे पता नहीं कितने का है वैसे, मैं ऐसे ही फट्टे मार रही हूँ. तो अगर आपको यहाँ पे $6 का मिला तो आप बोल सकते हो कि भाई मुझे तो उस वाले स्टोर में $4 का मिला था, प्लीज़ प्राइस मैच इट. बिल्कुल इंडिया वाली फीलिंग आ जाएगी, एकदम घर वाली फीलिंग. तो वो कहेंगे हाँ जी मैडम जी बिल्कुल, हम तो मैच शैच एकदम कर देंगे, वाई नॉट. तो दैट्स I love that. That's called negotiating. And you know, we Indians and South Asians, we love to negotiate, right? We negotiate everywhere. So, isliye khele hum apna giveaway game. Our giveaway is from The Vibe Restaurant inside Foodistan. So, आप ये क्वेश्चन आंसर करते हैं तो आपको कोई भी एक डिश फ्री मिलेगी फ्रॉम द वाइब रेस्टोरेंट. ठीक है, तो विदाउट फर्दर डू लेस टॉकिंग मोर सिंगिंग एंड मोर प्लेइंग गेम्स. माई नंबर इज 9722355555 एंड यू आर स्टिल लिसनिंग टू फनेशियर रेडियो 104.9 FM. तो आज का हमारा गेम है साउंड्स लाइक गेम. क्योंकि मुझे गाना मिल गया था तो मैंने यही किया, मैंने डायलॉग वाला नहीं किया आज. तो इसीलिए मैं आपको गाना बजाती हूँ. आई विल गिव यू अ लिटिल हिंट. आपको इसका बॉलीवुड गाना साउंड्स लाइक जो बॉलीवुड गाना है वो बताना पड़ेगा और साथ में थोड़ी सी दो लाइनें गाने भी पड़ेंगी. ठीक है, ऐसे ही नहीं कि गाना का नाम बता दिया ब्लैंक ऐसे करके बोरिंग से, नहीं थोड़ा गा के भी तो पता चले ताकि हमें पता भी चले कि दिस इज द सॉन्ग यू आर टॉकिंग अबाउट, आपको पता भी है. ठीक है, आई विल गिव यू अ लिटिल हिंट. ये गाना जो है दिस इज फ्रॉम दिस मूवी कॉल्ड किस्मत कनेक्शन विच फीचर्स विद्या बालन एंड शाहिद कपूर हु लुक्स लाइक एन एब्सोल्यूट बच्चा इन दिस मूवी बट इट डजंट मैटर, दैट्स नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे. तो लेट्स प्ले द सॉन्ग. भाई होल्ड ऑन टू द कॉल्स, पहले मैं गाना तो बजा दूं फिर कॉल करना. हियर वी गो.

0: we have our first caller. Let's listen to this. Hi, can you hear me? And it got disconnected. Hi, can you hear me? Hello?
1: Hi. Hello.
0: Hi, can you hear me?
1: Yeah.
0: Okay, great. पहले तो अपना नाम बताइए and then tell me the correct answer.
1: मेरा नाम है कृतिका.
0: कृतिका, okay, कृतिका. Go for it.
1: Move your body now.
0: नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं. वो तो इस मूवी का गाना है भी नहीं शायद.
1: Okay, okay, thank you.
0: Thanks for the call. Yeah. Hi, can you hear me? Hello? Hi, can you hear me?
2: Hello.
0: Hi, can you hear me?
2: Hi. Yeah, I can hear you.
0: Okay, first of all, tell me your name.
2: My name is Krishab.
0: Krishab?
2: Yeah.
0: Okay, Krishab, go for it. Kaun sa gana hai?
2: I feel this is the song Is This Love?
0: That is the correct answer. Thoda ga ke bhi suna do.
2: Yeah. What? The song goes.
0: Haan, go for it.
2: Is This Love? Na maine jana.
0: एग्जैक्टली भाई उसी वाले गाने को हम जब जो इंग्लिश वाला था दैट वाज द एब्सोल्यूट फेमस सॉन्ग टेक ऑन मी बाय AHA और उसको हम स्लो कर देंगे तो वो इज दिस लव ही बन जाता है ऑफ कोर्स. तो कांग्रेचुलेशंस आप जीत चुके हैं आज का गिव अवे. तो कृषभ लाइन पे बने रहिए. आई एम गोना प्ले द सॉन्ग इन द बैकग्राउंड. उसके बाद आके विल टेक योर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, जस्ट स्टे ऑन द लाइन. ओके गाइज, एंजॉय द सॉन्ग इन द मीन टाइम.

है, तो वो करते करते आज पता क्या हुआ, मैंने देखा एंड आई लिव ऑन अ ग्राउंड फ्लोर वाला घर, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर का अपार्टमेंट है और बिल्कुल जहाँ पे मेरा रियाज है वहाँ सामने एक पैटियो का डोर है, ठीक है, और वहाँ पे ना थोड़ी सी कैरी लगी हुई है, ऐसे ही हेजेस लगे हुए हैं, तो वहाँ पे मैंने एक मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में ना बहुत सारे बनीज हैं एंड एवरीथिंग, सो इट्स लाइक इट्स देयर इज अ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ यू कैन से इन माई अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स. तो एक बनी जो है ना बिल्कुल सामने आके मेरे पैटियो के दरवाजे, कांच वाले दरवाजे के सामने आके बैठ गया जहाँ पे मैं रियाज कर रही थी, और वो ना रियाज सुनते सुनते अपना खाना खा रहा है. सो इट्स लाइक अराउंड 11 o'clock, तो वो 11 o'clock अपना लेट ब्रंच कर रहा है और मेरा रियाज सुन रहा है बैठ के, ऐसी आंखें लगा के देख रहा है मेरी तरफ, एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट आई कॉन्टैक्ट, नो ब्रेकिंग, नो ब्लिंकिंग, नथिंग. फिर जितनी बार भी मैं पॉज करती थी रियाज में, वो खाते खाते सर ऊपर करता था, मेरी तरफ देखता था, कहते ये क्या चल रहा है यहाँ पे, इसने बंद क्यों कर दिया. फिर वापस मैं करना शुरू हो जाती थी, वापस वो अपना खाना शुरू हो रहा था. मैंने कहा वाह, आज मेरे रियाज में देर वॉज लाइक अ फ्री अनइनवाइटेड गेस्ट एंड ही एन्जॉयड अ फ्री शो एंड डिनर, दिस इज वॉट यू कॉल्ड लक. हाँ, एंड आई वाज लाइक चलो एटलीस्ट द बनी इज होल्डिंग मी अकाउंटेबल, सो दैट मीन्स आई डोंट पॉज इवन इफ आई एम डूइंग 30 मिनट्स, इट्स गोइंग कंसिस्टेंटली, राइट. आई थॉट कि कितना, एंड आई फेल लाइक अ डिज्नी प्रिंसेस, फॉलो लाइक दोज वो जिसमें डिज्नी प्रिंसेस स्नो वाइट गाना नहीं गाती वाइल्ड लाइफ में, ओ करके, दैट वाज द फीलिंग दैट आई हैड. तो वो सब बातें बाद में, आप ये गाना सुनिए.

आज पता है मेरे साथ बड़ी अमेजिंग चीज हुई, पता है क्या चीज हुई? मैं ना रोज सुबह उठ के, लाइक यू नो, आफ्टर ड्रिंकिंग माई कॉफी एंड एवरीथिंग एंड बिफोर आई गो टू द जिम, मैं रोज 30 to 40 minutes या 45 minutes जो भी है, जब भी टाइम होता है, मैं रियाज करती हूँ बैठ के. ठीक है, तो मैं रोज़ कुछ, या तो मैं क्लासिकल करती हूँ या इफ़ एनी थिंग दैट आई एम लर्निंग और वट एवर, मेरे को करना होता है बिकॉज दिस इज़ माई लाइन ऑफ वर्क. सो यू नो, यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योर लाइन ऑफ वर्क एंड यू हैव टू गिव इट दैट मच एफर्ट. चाहे आप कुछ भी करो, कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है. कितनी देर के लिए करो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रोज़ करना बनता है.

Alright, this next song goes out to अज्जू. भाई अज्जू, ये गाना आपके लिए. लेकिन ये गाना बजाने से पहले, आप सबको पता है ना कि रक्षाबंधन आने वाली है अगले हफ्ते. एग्जैक्टली 28 अगस्त को है रक्षाबंधन, विच इज अगले फ्राइडे. तो अपनी बहनों के लिए बड़ा अच्छा अच्छा गिफ्ट शिफ्ट ले लेना, डोंट वरी. तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड भी आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, मैं बताऊंगी सबके बारे में. लेकिन सबसे बेस्ट ऑफर पता है क्या है इसमें? दिस रक्षाबंधन फन एशिया रेडियो एंड चौक टॉक कसिनो एंड रिजॉर्ट एंड ड्यूरॉन्ट वॉन्ट टू हियर योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विथ योर ब्रदर एंड योर सिस्टर. तो एक मिनट का हमें वॉइस नोट भेज दीजिए ऑन व्हाट्सएप एट 2148374-7147 एंड यू कुड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग फ्री डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज. An unforgettable sibling reunion weekend at Choctaw Casino and Resort in Durand. भाई कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाइयों बहनों और भाइयों भाइयों एंड बहनों बहनों का भी मिलन हो सकता है. आपको क्या पता, हमें तो नहीं पता, जाके पता चलेगा ना. तो इसीलिए कॉन्टेस्ट में एंटर करो. टू एंटर एंड टू चेक आउट ऑल द डिटेल्स, चेक आउट फनीशा सोशल मीडिया पेजेस, यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट कैसे एंटर करना है, क्या है. प्लीज मेक श्योर यूर 21 ईयर्स और ओवर. उसके नीचे है तो देन इट डजेंट काउंट. चौकटा कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरॉन्ड, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टूगेदर. ठीक है गाइज, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. कैसीनो में जाएंगे तो प्लीज ध्यान से खेलना, ऐसा नहीं कि रक्षाबंधन के दिन गए और सारे पैसे जो आपको अपनी बहन को देने थे वो कैसीनो में ही उड़ा दिए सारे. हैं, ऐसे नहीं होता. बहन के लिए अलग से बचा के रखना, उसका बहन फंड अलग होता है, सिस्टर फंड.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
2: लिया।
1: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
2: नहीं आया।
1: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
3: Visit www.sanadainc.com today.
4: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन्स आस्किंग लंच में क्या है।
5: फिकर नॉट, वी हैव द परफेक्ट सॉल्यूशन।
6: द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को ब्रिंग्स यू इट्स ऑल न्यू वीकेंड लंच बुफे, फ्रॉम फ्लेवरफुल इंडियन फेवरेट्स टू लाइव काउंटर्स एंड शेफ स्पेशल, 25 प्लस डिशेस, वेलकम ड्रिंक, चाट, एपेटाइजर्स, मेन कोर्स एंड डिजर्ट, सैटरडे टू संडे 12 PM टू 3 PM। दिस वीकेंड लेट द फ्लेवर लाउंज डू द कुकिंग।
7: जिंदगी एक रंगमंच है,
8: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
9: फ्लोर्स क्लीन
10: चेक,
9: विंडोज क्लीन
10: चेक,
9: किचन क्लीन
10: चेक,
9: एयर डक्ट्स क्लीन।
10: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
11: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
12: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू। लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
13: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
14: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
15: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
16: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
17: तुमसे मिलके दिल का है।
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
16: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।

गाइस, जैसे कि मैंने बताया था, चौक टॉक कैसीनो का रक्षाबंधन स्पेशल भी है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट रक्षाबंधन तो वैसे भी है नेक्स्ट वीक. तो अगर आप अपनी बहनों के लिए बड़े सुंदर सुंदर से गिफ्ट लेने की सोच रहे हैं, देन लेट मी टेल यू दैट तनिष्क इज डूइंग ए तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, एंड यू कैन एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबव 18 कैरेट. सेलिब्रेट द सीजन विद टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क. भाई, डायमंड्स आर नॉट जस्ट फॉर योर टू बी वाइफ, समटाइम्स डायमंड्स कैन बी फॉर योर मॉम एंड योर सिस्टर ऑल्सो. ओके, सो डोंट सेव कि डायमंड का ओकेजन होगा, सिर्फ मैं अपनी होने वाली बीवी के लिए ही वो अंगूठी खरीदूंगा $10,000 की या $4,000 की या जो भी. लेकिन यार, बहनों के लिए भी कुछ छोड़ दिया करो, ऐसे थोड़ी ना.

एंड गाइज वी आर बैक. तो गाइज आज मैं कुछ मतलब आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन लाई हूँ. ठीक है, वो इंटरेस्टिंग सा डिस्कशन ये है कि समटाइम्स वी हैव टू थिंक अबाउट वेदर डू यू वेदर यू रियली वॉन्ट द पर्सन दैट यू थिंक यू रियली वॉन्ट देम और डू यू जस्ट वॉन्ट टू बी चोजन. ठीक है, तो आज के हमारा डिस्कशन होगा इस पे, वेदर यू एक्चुअली वॉन्ट समवन दैट यू एक्चुअली लाइक देम एंड यू लव देम एंड यू वॉन्ट देयर अटेंशन, दैट आपके दिल से वो आवाज़ आ रही है कि यू आर चूजिंग देम, और डज इट जस्ट फील नाइस टू बी चोजन. एंड समटाइम्स वी लैंड अप गेटिंग इन टू रिलेशनशिप्स और डेटिंग एप्स और एनी ऑफ दीज सिचुएशनशिप्स और जस्ट फॉर द सेक ऑफ समटाइम्स मैरिज ऑल्सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ बींग चोजन बिकॉज मे बी वी बिन वेटिंग आउट टू लॉन्ग. The question is, we don't often ask why. We don't often ask why. Honestly, do you really want that person or do you just want that person to want you? Because those are two very different things, okay? Now, think about someone that you've been obsessed with, okay? Aap unki stories check kar rahe ho, unke DMs check kar rahe ho, unki Instagram story, like, profile pe ja rahe ho, Facebook profile pe ja rahe ho, threads pe ja rahe ho, har jagah ja rahe ho. You're kind of like low-key stalking them, okay? Online stalking, which is kind of normal, you know, not so bad. However, the person whose text, you know, agar unka text aa jata hai, and that can completely change your mood. The person whose silence can completely ruin your entire evening. The person you kept thinking about, why haven't they called you? Did I say something wrong? Do they still like me? Why are they pulling away? And then suddenly, wo wapas aa jate hain. They text, they come back, they show interest, they flirt, and boom. You're back in the game. Then you're like, oh wow, it feels so good. Dopamine hit, boom. So we're going to talk about more of this stuff, lekin after this song.

भाई वो गाना भी मैं चला दूंगी लेकिन थोड़ी देर बाद यू गाइस, क्योंकि पता है क्या, अभी तो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ, बड़ा अच्छा सा, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स. लेकिन उसके पहले आपको पता है ना, द पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास इज डूइंग ए स्पेक्टेकुलर सेलिब्रेशन कॉल्ड द कुवैत मेला 2026 ऑन सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर टेक्सास. द डोर्स ओपन एट 2 o'clock. देयर इज गोना बी लाइव परफॉर्मेंसेज बाय रागा बॉयज एंड यू कैन एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलिशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल फेस्टिविटीज, फैमिली फन एंड लॉट्स मोर. एंड हियर इज द बेस्ट पार्ट, एंट्री एंड पार्किंग बिल्कुल फ्री है. ब्रिंग योर फैमिली, ब्रिंग योर फ्रेंड्स एंड कम सेलिब्रेट एट द कुवैत मेला 2026. And we, of course, Fun Asia Radio 104.9 FM is the media partner. Yes, you guys are still listening to Ippy the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. And ye mera show chal raha hai, an evening in Dallas. That's right. Abhi mere paas sirf 1 ghante aur hai is hafte ke liye. To bane rahiye, lekin uske pehle ye beautiful sa song sunte hai in the amazing voice of Hasan Jahangir and Gul Panra. This is Hawa Hawa, Khushbu Luta De.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
4: जी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
5: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
4: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
5: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
4: सच में सब संभालेंगे?
5: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
6: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer, enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. Ab har bite ke saath milegi extra savings. Dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: तीन पे क्यों अटक गया?
2: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
0: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे.
4: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं.
3: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
4: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
3: इंडिया तक.
4: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
0: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
5: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
0: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
6: तुमसे मिलके दिल का है.
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
0: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.

गाइस, दिस इज इपी द हिप्पी. यू आर स्टिल लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम. आपको पता है द फ्लेवर लाउंज इन फ्रिस्को इज नाउ सर्विंग एन ऑल न्यू वीकेंड लंच बफे. एग्जैक्टली, फीचरिंग माउथ वाटरिंग डिशेस, एक्साइटिंग लाइव काउंटर्स, शेफ स्पेशल एंड फ्रेश फ्लेवर्स दैट यू विल वांट टू कीप गोइंग बैक टू. All of this is just for $24.99 per person, which is quite affordable, especially in today's economy. Enjoy the buffet on Saturday and Sunday from 12 p.m. to 3 p.m. Take your family and friends and make your weekend delicious at the Flavor Lounge, 5855 Preston Road, Frisco. Flavor Lounge, where good food and great memories are made. Yes.

गाइज, अब हम आते हैं पूरे FBI मोड में. तो हम जिसकी पहले मैं बात करी थी, हियर्स व्हाट विल हैपन. जब द पर्सन पुल्स अवे, ओके, व्हेन द पर्सन पुल्स अवे, दैट्स व्हेन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, डज योर अटेंशन, बिकॉज योर अटेंशन बिकम्स मोर सर्टन, दैट्स व्हेन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, एम आई रियली अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन और डू आई जस्ट वॉन्ट दिस पर्सन टू वॉन्ट मी, वॉट इज हैपनिंग ओवर हियर. But here's what can happen. The moment their attention becomes uncertain, your attention becomes certain, okay? You weren't necessarily more attracted to them. You have to ask these questions to yourself. You became more focused on getting your position back. So think about that. Ki, was I really attracted to them or was I just attracted to the attention that they were giving me, okay? You want to know, these are the questions you should ask yourself. You want to know, do I still have them? And that's a very different question from, do I want this person in my life? Okay. And what if they were completely available? Here's an experiment. Now think about the person that you are thinking about. ठीक है? जिसके साथ आपकी ऐसी up and down, push and pull वाली dynamic चल रही है. Now imagine. कल सुबह वो उठते हैं and they tell you, ठीक है? I want you. I'm 100% sure about you. ठीक है? एंड उस तरह से ये लोग सवाल करते हैं, आई वॉन्ट यू, आई एम 100% श्योर अबाउट यू. उसके बाद दे से आई वॉन्ट अ रिलेशनशिप, आई एम इमोशनली अवेलेबल, आई एम कंसिस्टेंट, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, यू डोंट हैव टू चेज मी, यू हैव टू कन्विंस मी, यू डोंट हैव टू डीकोड मी, आई एम हियर. अगर वो कल आके ये बोले, नाउ आपको कैसा फील होगा? तब सोचिए इस बारे में. इंस्टेड ऑफ वॉन्टिंग कि हाय वो मुझे चूज क्यों नहीं कर रहा, आप ये सोचिए कि कल अगर वो वापस आ जाते हैं और ये सारी चीजें बोलती हैं, हाउ विल यू फील? आर यू गोइंग टू फील रिलीव्ड, एक्साइटेड, और आर यू जस्ट गोना बी लाइक, ओ ओके, अ लिटिल बोर्ड? दैट इज प्रोबेबली द क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ.

0: Sometimes हमें खुद नहीं पता होता whether we are really attracted to the person unless the uncertainty actually disappears. What happens when there's nothing left to chase? जब आप किसी को chase ही नहीं कर रहे हो, सब कुछ आपके already मिल रहा है. You know, we had this conversation कुछ दिनों पहले when I was talking about, कई बार क्या होता है कि जब we are living in so much stress mode all the time, जब आपके सामने सब कुछ आराम से हो रहा है, आपकी life में आप कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ना फैमिली प्रॉब्लम, ना रिलेशनशिप प्रॉब्लम एज सच, एंड यू आर प्रीटी मच इन अ वेरी पीसफुल सिचुएशन. कई बार हम उस पीस को बोरिंग से कंपेयर.
1: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ,
2: तो कैरेट लेन चलो. दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस.
1: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
2: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स. यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग.
3: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस. कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क.
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
4: क्या मतलब?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
4: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
8: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications ab aa chuka hai digital media platform par. Kai million followers ke saath, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, jinhone apni kalam से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर पन एशिया.
9: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
10: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days week, 8 a.m. to 8 p.m. walk in anytime. 9191 Kaiser Way, suite 205, Frisco.
11: 90s ke gaane sirf hits nahi, hamari yaadein hain. Aur ab wo legendary aawaz aa rahi hai live to Plano. वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s. सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो. लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल. टिकट्स एट eventbrite.com. मोर इन्फो 214-869-2668. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप.
12: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

तो गाइस जैसे हम बात कर रहे थे, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज नथिंग लेफ्ट टू चेज, नो मिक्स सिग्नल्स, नो गेसिंग, नो इमोशनल रोलर कोस्टर, नो पुलिंग अवे, नो जस्ट ग्रैबिंग ऑन टू समथिंग सो टाइटली, नो वेयर इज दिस गोइंग, व्हाट आर वी, जस्ट लव, जस्ट कंसिस्टेंसी एंड प्रेजेंस. एंड देन सडनली यू रियलाइज, भाई एक्साइटमेंट कहाँ गई, ये तो बड़ा बोरिंग हो गया. यू नो सिमिलर टू वॉट कॉकटेल 2 का जो स्टोरी था बिटवीन दिया एंड कुणाल. मे बी द प्रॉब्लम इज इन दैट हेल्थी लव इज बोरिंग, मे बी केओस, वी हैव लिव्ड सो मच इन केओस एंड सो मच इन हाई स्ट्रेस एनवायरमेंट दैट वी थिंक केओस इज हेल्थी एंड केओस इज नॉर्मल. वी थिंक दैट स्ट्रेस और जस्ट द फैक्ट दैट वी वॉच सो मेनी बॉलीवुड मूवीज एंड मोस्ट ऑफ दीज बॉलीवुड मूवीज आर कॉन्स्टेंटली अबाउट समबडी इज चेजिंग समवन, कोई बिग ग्रैंड जेस्चर, कोई रूठ रहा है, कोई मना रहा है. सारी तो हम सीख यहीं से मिलती है ना, प्यार की हमें बॉलीवुड मूवीज से ही मिलती है. लेकिन वहाँ पे हेल्थी लव के एग्जाम्पल्स बहुत कम दिखाते हैं, बहुत ही कम. एवरीवेयर दे शो द बिगिनिंग स्टेजेस, द चेज, द अट्रैक्शन, द केमिस्ट्री, द एक्टिवेशन. We use the word chemistry also so casually. I have chemistry with him. Yeah, I have chemistry with her. She gives me butterflies. I can't explain it. There's just something about them. And sometimes there is chemistry, but sometimes that feeling in your stomach isn't butterflies. It's anxiety. Hai na? You don't know where you stand. You're waiting. You're hoping. You're interpreting. You're afraid that, oh my God, one day they're just going to get up and leave. And your body is saying, ध्यान से भाई, वॉट यू इंटरप्रेट दैट इंस्टेड ऑफ एज ध्यान से. योर अंदर की फीलिंग शायद कह रही ध्यान से भाई, आप उसको इंटरप्रेट करो, ओह माय गॉश, आई एम सो इन लव. दैट्स व्हेन थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज इंटेंसिटी जो है हमारी, जो इतनी इंटेंस फीलिंग्स जो आती है, दैट इज एन ऑटोमेटिकली इंटिमेसी. अ रिलेशनशिप कैन समटाइम्स फील इनक्रेडिबली इंटेंस एंड समटाइम्स इट कैन फील इनक्रेडिबली अनहेल्दी. Meanwhile, a secure relationship feels calm and boring, where you don't have to earn for your partner's attention. You don't have to perform. It's not a show every single day. You don't have to constantly wonder, अच्छा कल तो नहीं चलाएगा, कल तो मुझे ghost नहीं कर देंगे ये लोग. They're just there. And initially, it can feel a little bit different. Not necessarily worse, just something unfamiliar. So make sure you're ready when that happens for you. ठीक है guys? Without further ado, let's go into the next song. And then I'm here with you guys only until 10 o'clock today. I hope you are enjoying the show. You can call me and tell me if you're enjoying it.

Let's talk about something that we don't like admitting, okay? Sometimes dating, relationship, प्यार becomes like a competition. Not consciously, मतलब आप intentionally नहीं चाहते हो अपने partner के साथ compete करना, लेकिन emotionally हो जाता है कई बार. What do I mean by that? You meet someone and then they seem incredibly desirable. Maybe they are successful, maybe they are charismatic. Maybe everybody wants them, they are magnetic. And suddenly, getting them becomes like a goal. You start thinking, oh, I want her. Oh, wow, look at her personality. She's so confident. She's on the spot. Like everybody wants to be with her. But what you actually want is, I want to be the man that she chooses. You know, what if that's the thing that you want and not really the girl that you want, but what if you want her to choose you because she is so magnetic? Because if everybody wants them, then they should choose you. What does that say about you? That's where relationships can sometimes, in fact, a lot of the times, be tied to self-worth. उनकी अट्रैक्शन बिकम्स योर वैलिडेशन. मतलब आपको जो अपने अंदर से जो वैलिडेशन चाहिए थी, अपनी जो सेल्फ वर्थ है, वो सब प्रूव ना करके आप उनकी अट्रैक्शन ले रहे हो. उनका कमिटमेंट बिकम्स प्रूफ फॉर योर सेल्फ. देयर रिजेक्शन बिकम्स अ वर्डिक्ट. एंड सडनली यू आर नो लॉन्गर आस्किंग कि ये पर्सन मेरे लिए सही है, कि हाउ डू आई मे या फिर यू आर आस्किंग नाउ हाउ डू आई मेक दिस पर्सन चूज मी. दीज टू आर कम्प्लीटली डिफरेंट डेटिंग स्ट्रैटेजीज. कई बार हम लोग डेटिंग मार्केट में जाते हैं, यू लुक एट समवन, शादी के मार्केट में भी जाते हैं, जीवनसाथी.com एंड ऑल ऑफ दीज ऑनलाइन वेडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड स्टफ. इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं, हम कई बार दूसरी चीज़ें सोचते हैं. वन इज़ अबाउट कंपैटिबिलिटी, द अदर वन इज़ अबाउट वैलिडेशन. अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीन, स्पेशली पीपल हु आर यू नो स्टिल डेटिंग एंड स्टिल हैवन बिन एबल टू फाइंड द पर्सन, दिस इज़ द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग. The person you are trying to impress. Now, this is what we are going to talk about. Here's another question. Okay, who are you when you're dating someone? What do you really want? Are you yourself? या फिर आप अपने आप को किसी की आइडिया में ढाल रहे हो, मतलब what they expect of you. आप सडनली कूल बन जाते हो, मोर अग्रीएबल, मोर अवेलेबल, यू नो मे बी लेस अवेलेबल, आई डोंट नो, इट कुड बी एनीथिंग. आप कैलकुलेट करते हो, हाउ लॉन्ग शुड आई वेट बिफोर टेक्सटिंग, 10 मिनट, अरे इमीडिएटली टेक्स्ट करूंगा या करूंगी तो उसे लगेगा आई एम लाइक डेस्परेट और समथिंग लाइक दैट, सो मे बी आई वेट इट आउट. ओके, शुड आई डबल टेक्स्ट, शुड आई टेल देम आई मिस देम, इज दैट टू मच, शुड आई एक्ट लाइक आई डोंट केयर. एंड सडनली डेटिंग बिकम्स अ परफॉर्मेंस. यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग द रिलेशनशिप एनी मोर, यू आर मैनेजिंग द परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ इन साइड द रिलेशनशिप. यू आर अफ्रेड ऑफ बींग जज्ड. Have you ever thought about that? But eventually, sometimes they have to meet the real you, right? कभी ना कभी तो मिलेंगे आपके असली रूप से. And if you spend the entire time trying to make yourself desirable just to fit their image, they may have never actually gotten to know who the real person is, right? Think about that.

Guys, this is Ippy the Hippie, and you're listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, and it is 9:52 on the clock. मैं एक गाना आपके लिए बजा के टाटा बाय बाय बोलने वाली हूँ. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर टुडे. हम मंडे को वापस आएंगे. वी विल टॉक मोर अबाउट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ रिलेशनशिप स्कूप, लॉट्स ऑफ डेटिंग एडवाइस. आई डोंट नो इफ आई एम द राइट पर्सन टू गिव इट और नॉट, बट वी विल ट्राई. एंड लॉट्स ऑफ अमेजिंग म्यूजिक ऑफकोर्स. So guys, stay tuned. I will see you in exactly 3 days. Bye. Have a wonderful weekend. Zarur jaiye North Texas ke Quaid Mela mein, right? Aur mujhe bataiyega Monday ko kaisa gaya. Bye.

भाई इतनी जल्दी तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी वैसे वो ऑटो प्ले वाले गाने के साथ, ये मेरी तरफ से, क्योंकि मैं भी भागने वाली हूँ यहाँ से पनेजा के ऑफिस से, जल्दी जल्दी मुझे घर जाना है. तो चलो हम सब मिलके भागते हैं, और डीके बोस को भी बोलते हैं भागने के लिए.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
3: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
4: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
5: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
6: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
7: डैलस, आर यू रेडी? जागो टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर. कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान साहब, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
8: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
10: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
9: नहीं.
10: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
9: नहीं.
10: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
9: वो भी नहीं.
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax. Your growth, our strategy.
12: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: So let me present to you the Pandavas.

0: We need to show the world our power. अब हम डर के शांत नहीं बैठेंगे, करके शांत बैठेंगे।
1: नेशन का फन स्टेशन, फनेशियर रेडियो।

जाने लेके किस्मत ने बांटे हैं राहों में कांटे हैं।

Funny Show Radio 104.9 FM. 104.

0: भी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
2: ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
2: मेरा यार बड़ा

KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम हैं ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर, सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

नमी है। एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एजिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
5: वो
6: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी. सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
7: Hello guys, this is me, Kinjal Dave, and you are listening and watching Fun Asia Radio.

आपके सुहाने सफर का साथी फनीशिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

Lights, Mike, Bollywood, Fallujah.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Randhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, both in English and Urdu. Led by the famous and fearless journalist Raja Zahid Akhtar Khanzada, जिन्होंने अपनी कलम से social injustice और corrupt practices के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. Dallas और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए The Jago Times available है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. For more details and advertisement, contact Raja Zahid Akhtar Khanzada, 682-551-6500. The Jago Times Commission, Jago Bhi, Jagao Bhi. Exclusive media partner, FunAsia.
4: Hi, this is Stephanie Khan. You are listening to FunAsia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: आनंद लगे रहो।
1: I love you।
2: आनंद तेरा फोन आया यार।
0: औरत
2: चल चल।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड, डैलस में रेडियो का डैड, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: कितने आदमी थे?
1: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।
2: That's right. Pump it up.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
2: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती। और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए। रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन।
0: कॉल 214-666
3: पट्टा। एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
0: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होक्को अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
4: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of Funasia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
5: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
6: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
0: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन। साल्स हॉट चिकन कमिंग सून।
7: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।

Let's go ahead and get started with our program here on this lovely Friday morning. It's the 21st of August today. Sabse pehle tareef us upar wale ki jisne duniya banayi, chand sitare banaye, zameen aasman banaye, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, aapko aur ye sari kainat ko इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए बनाया है. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद, एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एज वी गेट स्टार्टेड विथ आवर प्रोग्राम टुडे.

0: All right, ladies and gentlemen, thank you very much for your calls. I'm glad y'all are enjoying the show, and I will play whatever it is that y'all are requesting right here. We'll have the world news coming up for you in the half-hour segment. We have some stories from the annals of history at 7:45. Stay with me right here on Funisia Network.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury Brilliance Celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
11: लैपटॉप में।
10: इन्वेस्टमेंट?
11: गूगल ड्राइव।
10: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
11: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
10: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
12: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
13: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
12: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
14: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
16: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
17: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
12: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ी, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
18: इतना सब और प्राइस?
12: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
19: मैं हीरो।
20: I am so stressed.

0: Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
1: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
0: Kya matlab?
1: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
0: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
1: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
0: Ab to karna hi padega, madam.
2: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future. Sathiya.
3: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
4: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
5: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
6: तुमसे मिलके दिल का है।
4: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
5: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क है, इश्क इश्क है।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: Weekend ka plan abhi tak nahi mana. First 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye to luxurious sky tower aur relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury aur excitement sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
11: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
12: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
13: अरे यार, घर मिल गया।
14: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड ऑल्सो कैश बैक एट क्लोजिंग।
10: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैश बैक भी।
14: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैश बैक भी?
10: बिल्कुल। विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
15: मेरे कल वाले खाने में दोसा, आने वाले खाने में डोसा।
10: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
16: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
10: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 120 और कस्टर जंक्शन।
17: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
18: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्डवाइड को बुलाते हैं।
17: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
18: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
17: इंडिया तक।
18: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
10: SFL वर्ल्डवाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
19: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
16: 90s का रोमांस, 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज। DFW गेट रेडी टू रिलीव द मैजिक ऑफ कुमार शानू लाइव अनफॉरगेटेबल 90s सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो। गाइए, झूमिए और फिर से जी लीजिए अपने फेवरेट 90s के गाने। लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल। फॉर टिकट्स विजिट eventbrite.com या फिर कॉल करें 214-869-2668 पर। प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप।
20: If you are just joining us, please receive my very warm welcome to this hour of the program. We will get you caught up right here.

0: Seventh day of triple digit temperatures and the 36th day with no rain. We are going to be either 105 or 106 with a heat index of 109 today, tomorrow, as well as on Sunday.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
5: Calculating route, rerouting.
4: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
5: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
4: क्यों?
5: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या Pooja essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
4: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो,
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
5: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
7: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स अकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग, एजेस 8 एंड अबव।
6: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स अकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी अकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
7: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
2: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
1: क्योंकि Sal's Hot Chicken भी तीन पे पहुंच गया।
3: Plano, Richardson, and now at a brand new location, Sal's Hot Chicken coming.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
2: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
1: Fikar not. We have the perfect solution.
0: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
3: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com
4: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
5: फ्रंट पेज का तो पता नहीं बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
4: कैसे?
5: पेज 3 ईटरी?
4: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
5: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
4: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं।
0: Page 3 ईटरी, eat, sip, gossip, repeat. डैलस तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए
6: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026 अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल एंजॉय लाइव म्यूजिक डिलीशियस फूड शॉपिंग कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज
0: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज
6: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 पीएम टू 11:45 पीएम एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर टेक्सास Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
0: Media partner, Fun Asia Network.

0: That clock on your dashboard in the car should say 9 a.m.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं। और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
4: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
5: चौकटा कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांड, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली।
6: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
7: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
8: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून।
9: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
10: नहीं आया।
9: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
11: Visit www.sanadainc.com today.
12: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
17: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
18: तुमसे मिलके दिल का है।
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
17: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
0: I do have a Sonu Nigam song lined up for you, but before that, I want to welcome all of you who are just joining us on this lovely Friday morning right here in this final hour of our program.

0: That track, ladies and gentlemen, was from a movie called Break Ke Baad, and it was picturized on Deepika Padukone and Imran Khan. And the first one to give me the right answer was Anshul Bhargav. And Anshul is going to get $10 off his dine-in bill as long as it's $50 or more at the Chandigarh Bites located on McDermott Drive in Allen. And I'm sure he's going to enjoy the khana out there. That is Chandigarh Bites in Allen. I will have the world news coming up for you in the half hour segment, so right after 9:30, and plenty more all headed your way right here on the airwaves of the Fun Asia Network. Here are some more messages from our sponsor.
1: Heere moti maina chahu.
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स.

0: गेट वन फ्री और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
1: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
2: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%। सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 96641।
3: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
4: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
4: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
3: ये क्या होता?
4: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
6: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
7: बेटा 95% आए?
8: हाँ मम्मी।
7: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
9: मेरा?
7: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
9: वो
10: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
11: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
12: Ocho.
13: Hoko.
12: Ocho.
13: Hoko.
12: Ocho.
13: It's Hoko.
7: Arey bas bhi karo yaar.
13: Arey naya restaurant hai par naam samaj hi nahi aa raha hai.
7: Naam Hoko ho ya Hocho, kya farak padta hai? Ek baar wahan ke लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
10: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
5: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
14: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
9: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में? सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: All right, looks like it's the end of my show for today and ending the week here for you, the working week. We do have two more days of the week, Saturday and Sunday, and along with today, they are going to be hot. The 27th day today of triple digit temperatures and the 36th day of absolutely no rain. 105, 106, that's our temperature for today, tomorrow and Sunday. Our heat index will be anywhere between 109 and 111. We want all of you to please stay cool. We are under an extreme heat warning, very dangerous heat, and also an air quality alert that will continue until the week ends. Actually, I don't see much of respite even during the next week. After all, we are in the hottest month of the year. So please make sure you all stay cool and continue listening to the Fun Asia Network, whether it's Radio Sangam in Telugu, Radio Vanakkam in Tamil, Apna Punjab in Punjabi, Radio Caravan, as well as right here, the Fun Asia Radio. And make sure that whatever you do, you make it your best.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ
4: तो कैरेट लेन चलो दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस
3: सीरियसली कैसा कलेक्शन है
4: मिनिमल डायमंड एलिगेंट एवरीडे स्टाइल्स यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग
5: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस कैरेट लेन नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क
6: मेरे कल वाले खाने में डोसा आने वाले खाने में डोसा
7: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश योर सर्च एंड्स हियर
8: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स क्रिस्पी डोसास फ्लफी इडलीज कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस
9: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338 दैट्स 817-786-3338
12: अरे तीन पे क्यों अटक गया
13: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया
14: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन साल्स हॉट चिकन कमिंग सून
15: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
16: चीनी हुकम मेरे आका हम आज पार्टी के मूड में हैं एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो
17: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं
16: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं
17: नो प्रॉब्लम आका लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए
16: और एंटरटेनमेंट
17: मूवी नाइट बेली डांसिंग नाइट्स प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में
16: वाह जीनी ये जगह है या कोई जादू
17: जादू नहीं मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे मिरेकल्स हैपन इन मिराज

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरैंड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनीशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
2: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.

0: ये तो सच है कि एवरीथिंग इज ए लिटिल मोर टुडे. इट इज फ्राइडे, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू ए ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल फ्राइडे. अब फ्राइडे बाहर कैसा है इन टर्म्स ऑफ वेदर, वो छड़ी है यार. बाकी जो हमारा जो ये जो वीकेंड का ये जो दस्तक देता है ना आज के दिन, जस्ट इन्जॉय दैट पार्ट ऑफ इट, क्योंकि हफ्ते भर की थकान को अब बाय बाय कह दीजिए. फ्राइडे आ गया है, थोड़ा अच्छे से मुस्कुरा लीजिए यार. दिस इज गपशप गली विद मी टू. हेलो, नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू थैंक शबनम जी फॉर द मोस्ट अमेजिंग शो दैट शी ब्रिंग्स एवरी डे, फुल ऑफ एनर्जी एंड इन्फॉर्मेशन दैट शी ब्रिंग्स फॉर ऑल ऑफ अस राइट हियर ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. अच्छा, एक छोटी सी छुट्टी पे जा रही है, छोटे से वेकेशन पे जा रही है अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ. तो आने वाले दो दिन यानी कि मंडे और ट्यूजडे को मैं सुबह 8 बजे से शबनम जी को कवर करने वाली हूँ. सो यू गाइज नीड टू प्रॉमिस मी दैट यू विल गिव मी कंपनी. आई एम गोइंग टू ट्राई माई बेस्ट टू कीप यू वेल एंटरटेन ड्यूरिंग द मॉर्निंग ड्राइव टाइम आवर्स ऑन मंडे एंड ट्यूजडे. बाकी तो 12:30 बजे तक हूँ ही आज भी और आने वाले दिनों में भी.
1: मधम मधम तेरी गीली हंसी

अलग अलग फेजेस में हमें अलग अलग साथी मिले हैं, राइट? मतलब वो चाहे जिंदगी का रिश्ता जोड़ते हुए हमारे पार्टनर जो हो, या तो फिर पार्टनर इन क्राइम हमारे भाई और बहन जो रहे हैं. तो ऐसे में रक्षाबंधन की बात करनी चाहिए. आने वाला है रक्षाबंधन, नेक्स्ट वीक इट इज, एंड वी आर डूइंग दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेशन. फनीजिया एंड चौकटा कैसीनो एंड रिजॉर्ट आर डूइंग दिस वेरी वेरी स्पेशली फॉर यू. नाउ दिस चौकटा कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट इज ब्रिंगिंग फॉर यू अमेजिंग गिव अवेज, लेडीज एंड जेंटलमैन. एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, देन एंटरटेनमेंट, देन रिजॉर्ट स्टेज, एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू भाई, ग्रैंड प्राइज, ड्रम रोल्स हो जाए थोड़ा सा, सिबलिंग री यूनियन वीकेंड एट चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट. लेडीज एंड जेंटलमैन, कहाँ मिलता है ऐसा वक्त? और ऐसा वक्त निकालें, बिकॉज चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट आर मेकिंग श्योर जो बहुत सालों से नहीं किया वो इस साल आप जरूर करें. चौकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट इन ड्यूरेंट आर ट्राइंग टू मेक दिस वेरी अनफॉरगेटेबल रक्षाबंधन फॉर ऑल ऑफ यू. तो बस हम ये चाहते हैं कि एक मिनट का वॉइस नोट आप व्हाट्सएप कीजिए 2148377147 पे, या तो मुझे कॉल करके बताएं और हम आपको ऑन एयर लेंगे. और एक मिनट के अंदर अंदर आप अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी एक अमेजिंग सी स्टोरी हमें एक मिनट के अंदर सुना दो, तो वो भाई आप डायरेक्ट कॉन्टेस्ट के का हिस्सा बन जाएंगे. सो येस, डू रिमेंबर दैट वंस अगेन, यू कैन कॉल मी हियर एंड आई कैन टेक यू ऑन एयर, या फिर आप व्हाट्सएप करेंगे 2148377147. एंड येस, ऑफ कोर्स मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट, एंड प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली. भाई बहनों के साथ ना हम अक्सर बहुत पागलपन करते हैं, यहाँ पर थोड़ा संभल के. That's what they want to tell you, and we want to join in. This is Gapshap Gali with me too.

0: है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और पीएमजे ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरों की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: पीएमजे ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
4: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: मैं हीरो।
6: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
7: Calculating route, rerouting.
6: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
7: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
6: क्यों?
7: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst

0: Outing.
1: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
0: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
1: क्यों?
0: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
1: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
0: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
3: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
2: अरे बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं।
4: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
2: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
4: इंडिया तक।
2: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
5: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
6: तारा वो तारा हर तारा।
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, walk in anytime, 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
8: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
2: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
1: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
9: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
1: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
10: Tracks that put you on the right track.

0: मेरी गलती थी।
1: सच बताऊं, सही लगता है।
2: उसी की ही तो गलती थी
1: काफी हद तक,
3: लेकिन थोड़ी गलती तो आपकी भी थी,
0: तो इसीलिए फोन उठाओ
1: और अभी इसी वक्त उनसे बात करो,
3: वरना कहते रह जाओगे।

0: यार याद आ गई अपने दोस्तों की,
1: वो बचपन के दोस्त।
2: अजाने क्यों ये दूरियां बढ़ गई।
1: कई बार आपको लगता है कि मेरी गलती थी ही नहीं।

0: साथ यारा।
1: यहाँ कहाँ की ज़रूरत नहीं है, यहीं आपको वो मिल जाएंगी, वो पुरानी यादें, पुरानी दोस्ती, उन सब चीज़ों के बारे में जो बातें होती हैं, क्योंकि हम जिंदगी अनप्लग्ड लेकर आते हैं, जहाँ पे ऐसे ही जिंदगी के बारे में बातें होती है हमारी। तो यस, एवरीथिंग जो आपको लग रहा है कि पीछे छूट गया है, वो यहीं है, आप ही के पास है, आप ही के बस में है। 9722355555। पता है मेरे दिमाग में ना 11 to 12 के बीच में एक कुछ हटके कुछ करने का मन है। वो जो है वो तो 11 बजे तक आपको उसका इंतज़ार करना ही पड़ेगा। बट प्लीज़ बी विथ मी एंड पार्टिसिपेट इन इट, ऑलराइट? इट विल बी फन। फ्राइडे का दिन है, कुछ बड़े दिनों से दिमाग में चल रहा था, तो फाइनली सोचा कि आज वो मुहूर्त निकाल ही देते हैं आपके लिए। एंड गपशप गली विथ मी टू में वी विल प्ले, इट्स नॉट अ गेम, बट या सम वॉट दैट, आई टॉक अबाउट इट वेन द टाइम कम्स। फिलहाल वक्त है हमारी घड़ी में 10:27, इट इज 27 minutes past 10 बाय द स्टूडियो क्लॉक। आज की तारीख है 21 अगस्त, 21st of August, और गर्मी का ऐसा आलम है कि क्या ही कहा जाए, कुछ ना ही कहा जाए तो अच्छी बात होगी, क्योंकि कल जैसा फील हुआ था ना, बस वैसा ही फील होने वाला है। इट इज गोइंग टू रिमेन डेंजरसली हॉट टुडे एज वेल अक्रॉस नॉर्थ टेक्सस। एक्सट्रीम हीट वार्निंग इज इन इफेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। हमारे जो हाइज हैं कुछ 103 से 108 के दरमियान कुछ होने वाला है, डिपेंडिंग ऑन विच एरिया यू आर इन। और फ्राइडे का एक स्लिम अपॉर्चुनिटी है शावर या थंडरस्टॉर्म लेट इन द डे। भाई बरस जा यार, बरस जाएंगे तो फिर शायद टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। एंड दिस एक्टिविटी लुक्स वेरी हिट और मिस, एज आई वॉज टेलिंग यू येस्टरडे, एंड मोस्ट ऑफ अस विल स्टे ड्राई। तो जी हाँ, अनदर चांस विल बी पॉसिबल सैटरडे फॉर ऑल ऑफ अस, अगेन अ स्लिम चांस इट इज। देखते हैं क्या होता है, उससे मौसम का हाल कुछ बदलता है कि नहीं, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। बाकी ऐसे ही कुछ रहने वाला है अगस्त का महीना, और सेप्टेम्बर का फर्स्ट वीक भी शायद कुछ ऐसा ही रहे, एंड ट्रिपल डिजिट्स में ही होंगे। हीट इंडेक्स विल बी इन एक्शन, तो जिसका मतलब ये होता है कि कुछ और डिग्रीज हायर ही होगा हमारा टेम्परेचर, द फील ऑफ इट। तो वंस अगेन 105 degrees इज द हाई फॉर टुडे, द रेकर्ड हाई हैज़ बीन ऑफ 106 फॉर टुडे। तो एक डिग्री कम है, उसी से खुश हो जाए यार। और लो हमारा 81 degrees का होने वाला है। टुमारोज हाई अगेन द सेम 105 degrees with that slim chance of rains that I was talking about, and हमारा लो भी कुछ सेम ही रहने वाला है, 81 के आसपास, lower 80s that it is going to stay, and copy paste कर दीजिए the same weather and temperature for Sunday, Monday, Tuesday, and Wednesday. Wednesday को थोड़ा कम होगा, तो Wednesday को बात करते हैं अगले weather के बारे में। बाकी हवा Monday को थोड़ी अच्छी चलने वाली है, it's going to be a bit more breezy than usual. अच्छा ये देखिए ना, मैं वेदर के बारे में ऐसे डूब के बात कर रही हूँ कि वक्त हो गया है कि चलिए एक और गाना मैं प्ले करती हूँ यहाँ पर। जो सैटरडे और संडे हमारे लिए होता है ना, वही चीज़ वो फील संडे का जो इंडिया के लिए होता है, क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, पूरा ऐसे दो दो दिन थोड़ी ना वीकेंड सबको मिलता है वहाँ पर। तो बस संडे के लिए जो एक ओड आदित्य ए ने लिखा, जी हाँ वही जिन्होंने चांद बालियाँ बनाया, बस संडे के लिए एक ओड यहाँ पे। The greatest day of the week for us, it is Saturday though.

आदित्य ए जिन्होंने चांद बालियां गाने के साथ अपना एक अपनी एक जगह बना दी है लोगों के दिल में, और यही लेके आए हैं एक और नया गाना, वो मैं प्ले करने वाली हूँ आप लोगों के लिए राइट नाउ राइट हियर ऑन फनिश रेडियो 104.9 FM. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

जी हाँ, सवारी, दैट्स द नेम ऑफ द सॉन्ग दैट यू जस्ट हर्ड. कुछ 8 दिन पहले रिलीज हुआ है और इस गाने को इतने व्यूज नहीं मिले हैं. तो जो आदित्य ए के लिए जो देख रही हूँ कि कुछ वन सॉन्ग वंडर बन के तो नहीं रह जाएंगे. देर आर अदर सॉन्ग्स दैट हैज वर्कड बट नॉट एज मच एज चांद बालियाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन. ये मेरे ख्याल से संडे जो गाना था वो भी काफी प्यार मिला था उस गाने को. बट ऑल सेड एंड डन, लेट्स मूव ऑन, क्योंकि एक और सवारी पे बैठने वाले हैं हम. दिस इज कश्मीर बीट्स की सवारी, विच इज अ फन सॉन्ग, लेडीज एंड जेंटलमैन. हीरा मणि की आवाज जो हम सुनने वाले हैं. एंड टॉकिंग अबाउट फन, व्हाई नॉट टॉक अबाउट कुमार सानूज नॉस्टैल्जिक इवेंट दैट इट इज गोइंग टू बी, कॉन्सर्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. अनफॉरगेटेबल 90s ऑन द स्टेज ऑफ रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स इन प्लेनो. एंड बाय द वे लेडीज एंड जेंटलमैन, ए ब्रांड न्यू कॉन्सर्ट लोकेशन फॉर ऑल ऑफ यू टू चेक आउट. एंड यहाँ पे वो सारे वो 90s के गाने, वो सारे नॉस्टैल्जिया में हम पढ़ने वाले हैं. एंड दिस इज ऑन September 11th, and you need to go on to eventbrite.com to find out more. Actually, buy the tickets right there. 2148692668. ये है नंबर की अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए. एडिशनल जो जानकारी है वो मैं आपको दे सकती हूँ कि फ्री पार्किंग है और एक्सक्लूसिव मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस भी है इस कॉन्सर्ट के लिए. सो यस, इट्स कुमार सानू, अनफॉरगेटेबल 90s दैट विल बी unfolding for us on the day of September 11th. Zaroor jaiyega, all right? Now that being said, chale aage aur ye is sawari pe baithe. Sare indie pops jo leke aati hu main is segment mein, koshish yahi rehti hai. Let's dive straight into this next one.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था।
4: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया। सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी। लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो, विजिट signaturecuisine.net। सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर।
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
5: नहीं।
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
5: नहीं।
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
5: वो भी नहीं।
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
7: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
8: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking, lunch mein kya hai?
7: Fikar not. We have the perfect solution.
2: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
9: Shaadi biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग। हैव यू थॉट अबाउट व्हाट वुड हैपन इफ यू और अ बिजनेस पार्टनर पास्ड अवे अनएक्सपेक्टेडली? The death of an owner can create serious challenges for a business, from ownership disputes to cash flow concerns and family financial needs. A properly structured buy-sell agreement funded with life insurance may help provide the funds needed to purchase a deceased owner's share of the business and allow for a smoother transition to the surviving owners. Life insurance can be used with different buy-sell structures, including cross-purchase and entity purchase arrangements. Protect your business, your partners, and your family. Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603 to learn more about business continuation planning with life insurance. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult your attorney and tax advisor regarding buy-sell agreements. Not legal, tax, or investment advice.
10: Dallas, tayyar ho jaiye ek shandar jashn ke liye.
11: Pakistan Society of North Texas presents Kayad Mela 2026, a tribute to our heritage and a celebration for all. Enjoy live music, delicious food, shopping, cultural activities, and family fun for every age.
10: Live performance by Raga Boys.
11: Saturday, August 22nd from 3 p.m. to 11:45 p.m. at South Fork Ranch in Parker, Texas. Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
2: Media partner, Fun Asia Network.
12: Tracks that put you on the right track.

दिस मूवी लेडीज एंड जेंटलमैन अगर आपने नहीं देखी है जरूर देखिए. नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड राधिका आप्टे एट देयर बेस्ट. इट इज कॉल्ड माझी द माउंटेन मैन जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी इन द ईयर 2015. इट इज द सेगमेंट विच आई कॉल दिस डे इन सिनेमा हिस्ट्री. तो ये फिल्म एक्चुअली क्रिटिकली एक्लेम फिल्म, हो सकता है कि बॉक्स ऑफिस में कोई रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं तोड़े थे इस फिल्म में, लेकिन बहुत पावरफुल परफॉर्मेंसेज जिसके कारण इट सीमेंटेड एब्सोल्युटली एंड unforgettable, you know, this element in the film that it brought, jo ek real life story par based thi, and that person was दशरथ माझी. और उन्होंने एक्चुअली बिहार के एक छोटे से गांव गैलोर में 30 फीट वाइड और 360 फीट लॉन्ग एक माउंटेन में से सिर्फ हथौड़े यानी कि हैमर और चिजल के साथ उन्होंने एक रास्ता काव किया था अपनी वाइफ के लिए. एंड दैट इज़ द स्टोरी अबाउट. एंड दिस वाज डन ब्यूटिफुली बाय द टू, द माउंटेन मैन माझी द माउंटेन मैन डायरेक्टेड बाय केतन मेहता. और वो शूटिंग लोकेशन जो लोकेशन था वो भी वो सेम जगह थी गैलोर के बहुत रफ टेरेन्स में किया था. तो वो पूरी फील भी आई है इस फिल्म में. सो इफ यू हैवंट वॉच इट इज समथिंग दैट यू वुड वॉन्ट टू चेक आउट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सीरियस यू नो इंस्पायरिंग फिल्म देन दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू माइट वॉन्ट टू वॉच. You are listening to Fanisha Radio 104.9 FM. एक और फिल्म पे जाने वाली हूँ, एक और अच्छे से गाने पे जाने वाली हूँ, which according to Shankar Mahadevan is that gem that was lost somewhere. उन्हें लगता है कि काफ़ी underrated ये गाना है उनकी इस फिल्म का जिसका नाम है सिकंदर. And सिकंदर starred आर माधवन and संजय सूरी and it centered around a young school boy in Kashmir who finds gun on his way to school. और इस शूटिंग को ये भी पूरा लोकेशन पे किया गया था, जम्मू एंड कश्मीर में इसकी पूरी शूटिंग की गई थी. एंड पीयूष झा वाज द डायरेक्टर हु इंसिस्टेड ऑन रियल लोकेशंस टू कैप्चर द ऑथेंटिक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑन लोकल चिल्ड्रन एक्चुअली. और उस टाइम पे ये जो टाइम है 2009 पे तो फिल्म रिलीज हुई है, तो 2008 में इसकी शूटिंग हुई होगी. ये काफ़ी वॉलेटाइल टाइम था उस वक्त उस जगह पे, बट दे managed to still pull it off. Box office pe this film was a disaster because the subject was so dark and heavy. Maybe it didn't pull the masses to the theaters for that reason.

This was a movie that released in 2009 on this day, August 21st, ladies and gentlemen. ये तो बॉलीवुड की कुछ बातें हुई. हॉलीवुड का ये गाना अगर मैंने आपके लिए नहीं चलाया, क्योंकि दिस हॉलीवुड फिल्म रिलीज ऑन दिस डे इन द ईयर 1987, तो यार मुझे पाप लग जाएगा. इसीलिए मैं ये गाना जरूर प्ले करना चाहती हूँ. फिल्म का नाम डर्टी डांसिंग, लेडीज एंड जेंटलमैन. और ये सुनकर आपको काफी अजीब लगेगा, बट द स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स वर एब्सोल्युटली कन्विंस कि ये मूवी मैसिव फ्लॉप होगी. देयर प्लान वाज टू कीप इट इन द थिएटर्स फॉर जस्ट वन वीकेंड और फिर इसे डंप कर देंगे होम वीडियो पे. इंस्टेड इट बिकेम ए मैसिव कल्चरल फिनोमिनन एंड एक्चुअली बिकेम द फर्स्ट मूवी इन हिस्ट्री टू सेल 1 मिलियन होम वीडियोज. इतनी बड़ी हिट हुई थी डर्टी डांसिंग और उसका ये गाना. लेट्स गेट यू राइट अवे. स्टारिंग पैट्रिक स्वेजी एंड जेनिफर ग्रे, इट इज द डर्टी डांसिंग जो अगस्त 21st को रिलीज हुई थी इन द ईयर 1987.

0: 6 मिलियन के बजट पे बना था ये फिल्म जिसका नाम है डर्टी डांसिंग, जो कि आज के दिन रिलीज हुई थी इन द ईयर 1987 एंड इट मेड ए वॉपिंग $214 मिलियन वर्ल्ड वाइड एंड दैट वाज अ फिनोमिनल हिट ऑफ दैट ईयर. वंस अगेन यू आर ट्यून इन टू गपशप गली विथ मी टू. अगले सेगमेंट में और उसके बाद वाले सेगमेंट में यानी कि 11 से 12 बजे तक वी गोइंग टू हैव समथिंग फन. इट इज एन एक्सपेरिमेंटल थिंग. लेट्स सी इफ इट वर्क्स विद ऑल ऑफ यू. आई नीड योर एनर्जी, योर पार्टिसिपेशन एंड योर फीडबैक लेडीज एंड जेंटलमैन. 972-235-5555 स्टूडियो का नंबर है. और यहाँ पे एक और जगह का नंबर देना चाहती हूँ. इट इज 8444282808. ये है तारा कमर्शियल एनर्जी. जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं ना, सुन लीजिए आप ध्यान से. दे प्राउडली सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: जिंदगी एक रंगमंच है.
5: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
6: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
7: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331.
8: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
9: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
10: Kya matlab?
11: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
11: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
10: Ab to karna hi padega, madam.
12: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke योग
14: है. अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: डैड, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ है?
17: लैपटॉप में.
16: इन्वेस्टमेंट?
17: गूगल ड्राइव.
16: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
17: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है.
16: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है.
17: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
18: Hi, this is Deepthi Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
17: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
19: Weekend ka plan? Abhi tak nahi mila. Bas 90 minutes north of Dallas, Choctaw Casino and Resort, Durant mein, har visit ban jata hai ek winning experience. Poker ho ya blackjack, exciting slots ho ya phir 20 amazing restaurants mein zabardast dining. Aur agar break chahiye, to luxurious sky tower or relaxing spa aapka intezar kar rahe hain. To sirf lucky feel mat kijiye, lucky ban jaiye. Choctaw Casino and Resort, Durant. Entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
20: Tracks that put you on the right track.

ये एक आर्टिस्ट हैं, एआई आर्टिस्ट हैं, और ये इन्होंने जो है रेगे स्टाइल में इंस्पायर्ड ये जो गाना उन्होंने बनाया है फ्रॉम दैट ओरिजिनल फ्रॉम रंगीला. आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज हिट और अ मिस फॉर यू, बट दिस इज द होल पॉइंट ऑफ द सेगमेंट दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग फॉर यू नाउ एंड इन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑल्सो. वील ट्राई एंड कंटिन्यू डिपेंडिंग ऑन वॉट काइंड ऑफ एनर्जी आई गेट फ्रॉम ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन. एआई से रिलेटेड कुछ चीज़ है और ये जो क्रिएटिव स्पेस में भी घुस चुका है, इसी के बारे में कुछ बातचीत होगी. लेकिन आफ्टर आई हैव स्पोकन अबाउट यू नो फ्यू अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और उसके बाद गाना ये जो आपने अभी अभी सुना जो एआई क्रिएटेड गाना था, उसके बाद हम ओरिजिनल पे जाने वाले हैं यार सीधे, क्योंकि एआई इज एआई. आई होप यू वर एबल टू मेक इट आउट. आपको समझ में आया क्या? क्योंकि मुझे याद है कि कुछ दिन पहले एक और मैंने एआई गाना लगाया था एंड आई गॉट अ कॉल एंड हम बात कर रहे थे एंड शी कुड फिगर आउट देर इज अ डिफरेंट साउंड टू इट, डिफरेंट ड्रैग टू इट, ऑल ऑफ दैट यू कैन मेक आउट कि वो एआई गाना है. सो येस, एआई टॉक विल कंटिन्यू, लेकिन पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर की बात पहले करना चाहती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स और हेल्थ के बारे में पहली इटर्निटी टू रियली सी द डॉक्टर व्हेन यू नीड टू सी ए डॉक्टर. ओके, द सेकेंड थिंग वुड बी कि आपको आपको वो वेल डिजर्विंग टाइम मिलेगा डॉक्टर के साथ, जो आप जब जाते हो तो चाहते हो कि डॉक्टर आपकी बात पूरी सुने इन ऑर्डर फॉर द डॉक्टर टू यू नो सजेस्ट यू समथिंग, एनालाइज यू बेटर एंड कम टू द ट्रीटमेंट दैट दे सीक इज राइट फॉर यू, राइट. और यहाँ सारी चीज़ें तो मिलती हैं, इसके अलावा आपके लिए एनुअल फिजिकल जो हो सकता है वो भी कवर्ड है, एंजाइटी केयर, फाइब्रोस्कैन फॉर अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, विटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग, और भी बड़ी सारी चीज़ें जो कि एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी. सो दिस इज़ वेरी मच लाइक अ वन स्टॉप शॉप, कहने में मुझे गलत लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली अ प्लेस वेयर यू कैन गो फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सो गो ऑन टू देयर वेबसाइट एंड चेक आउट मोर. आई कैन टेल यू दिस, यू कैन टॉक टू देम एंड फाइंड आउट फ्रॉम देयर. 214-666-6259 इज दैट नंबर. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, योर हेल्थ इज देयर पैशन. एंड फॉर अरिजीत सिंह एंड कंपोजर्स लाइक प्रीतम, Making music is their passion, for sure. This is Gapshap Gali with Meetu 972-235-5555, number in the studio.

और रापता कीजिए एजी फिनटैक्स के साथ. agfintax.com इज द वेबसाइट और नंबर बता देते हैं रापता करने के लिए 4699429888. दैट्स द नंबर टू कॉल. एंड दिस पार्ट ऑफ माय शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स एंड अकाउंटिंग फर्म्स इन द US दैट यू मस्ट नो. मिस्टर एजी ग्रांधी एंड हिज टीम कैन डेफिनेटली हेल्प यू. इट्स अनिल ग्रांधी, सॉरी, सो ए ग्रांधी. सो इट इज अनिल ग्रांधी यू कैन help you, and his team is always ready to help you. Chahe wo aap individual ho, ek startup aapka hai, ya aap ek established business own karte ho, AG Fintechs ke paas bade sare innovative financial solutions hai. Aap hi ke liye tailor made from bookkeeping, payroll accounting and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting and business advisory services, all under one roof that you can get. They help keep your finances absolutely organized, compliant and future ready. To deri kis baat ki, ek trusted jagah hai, efficient jagah hai aur aapke success ke liye bilkul committed hai. To AG Fintechs ke saath aap zarur partner karein in building a stronger financial future. To number ek bar phir de do, 4699429888. वेबसाइट भी दोबारा देना चाहती हूँ, agfintax.com. भरत ने कॉल किया और इस अगले गाने की रिक्वेस्ट की है, सो वी विल प्ले दिस नेक्स्ट ट्रैक. अमित त्रिवेदी यार, ये सारे जो ओरिजिनल कॉम्पोजर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, जो लिरिसिस्ट हैं, राइटर्स हैं, यार क्रिएटिव दुनिया में ना वाट लगी हुई है आजकल. आज फ्राइडे है और वीकेंड की वाइब सेट करने के लिए हम एक बहुत ही मज़ेदार और स्लाइटली माइंड बेंडिंग गेम खेलने वाले हैं आप लोगों के साथ, ठीक है. नाउ द गेम इज़ कॉल्ड मैन वर्सेस मशीन. आज क्या है ना कि हम यानी कि ह्यूमंस एआई के साथ टक्कर लेने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ टक्कर लेने वाले हैं. लोग क्या है ना कि एआई से ईमेल्स भी लिखवा रहे हैं, करेक्ट, रेसिपीज भी मांग रहे हैं, सोल्यूशंस, सर्चेस, दुनिया जहाँ की डे टू डे चीज़ों के बारे में सारा कुछ एआई से मिल जाता है. वो चैट जीपीटी हो या आपके जेमिनाई का हो या फिर क्लॉड, देर आर सो मैनी प्लेटफॉर्म, देर आर सो मैनी वेज टू गेट हेल्प फ्रॉम एआई दीज डेज. बट वॉट हैपन्स जब हम एआई से पोइट्री या शायरी लिखवाते हैं, यार क्या एआई हमारी देसी शायरी के जो जज्बात हैं उसे समझ सकता है? मैं अलग अलग टॉपिक्स पर ना दो शायरी पढ़ने वाली हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है. एक किसी रियल शायर ने लिखा है और दूसरे हमारे एआई शायर ने लिखा है, जिसका नाम भी दे देते हैं यार. हाउ अबाउट लेट्स सी, गालिब जीपीटी, अबाउट दैट. चलिए यही नाम रखने वाली हूँ मैं और आप लोगों को कॉल करके बताना है विच वन इज़ द रियल ह्यूमन शायरी एंड विच वन इज़ ए मशीन मेड शायरी, एआई शायरी, ठीक है. तो ये शायरी बैटल बिगिन्स राइट आफ्टर दिस सॉन्ग. 9722355555 ए गिव अवे कमिंग योर वे. जो भी मुझे पहला कॉल करते हैं, या तो यूँ कहूँ कि जो भी ये पहला चैलेंज लेते हैं उनके नाम.

0: यू आर लिसनिंग टू फनीशर रेडियो 104.9 FM। और गपशप की जो गली हमने पकड़ी है आज ना, वो है AI के तरफ जाता हुआ। और ये मैन वर्सेस मशीन गेम जो मैं खेलने वाली हूँ आपके लिए, इसके लिए मुझे ना कंटेस्टेंट्स चाहिए। कंटेस्टेंट्स यानी कि पार्टिसिपेंट्स चाहिए। और आपको आके ऑन एयर मुझे बताना है कि कौन सा एक्चुअली जो शेर या शायरी जो मैं पढ़ने वाली हूँ, कौन सा रियल शायर ने लिखा है और कौन सा AI शायर हमारे गालिब GPT ने लिखा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू एग्जैक्टली कम ऑन एयर एंड टेल मी, एंड आई एम गोइंग टू रियली रियली सॉर्ट ऑफ वांट टू मोटिवेट द पीपल हु हैवंट एवर कॉल्ड। प्लीज कॉल करो यार। फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड है आपके लिए, जो फ्रिस्को लोकेशन से आप पिकअप कर सकते हो। और उनका जो नया मेक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप है ना, यू गोना लव इट, आई एम टेलिंग यू। वो चाहे फिएस्टा वेजी हो या फायरी पोलो लोको, ये नाम में जो एक स्पाइसीनेस है ना, यू गोना सर्टनली इंजॉय। एंड सी फूड लवर्स के लिए भी बहुत कुछ है वहाँ पर। सो येस, यू डू नीड टू Give me a call right now in order to win. मैंने तो सोचा था यार किसी को ऑन एयर लूंगी और मतलब ऑन एयर ही पढ़ के बताऊंगी, ताकि बहुत ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं मिले और इंस्टेंटली मुझे बता सकें कि हमारे गालिब GPT ने लिखा है कि किसी असल शायर ने लिखा है। This is man versus machine and I want a participant who is all ready to participate in it. 972-235-5555 number in the studio, yaar. Come on, ladies and gentlemen, I am sure you can do that. कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? आप कहोगे कि ये गालिब GPT ने लिखा है, हो सकता है कि रियल शायर ने लिखा हो। इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है? इससे बस यही प्रूव होगा कि भाई AI भी अपना काम अच्छे से ही करती है, राइट? सो लेट्स गो फॉर इट लेडीज एंड जेंटलमैन। 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो। यू आर लाइव ऑन एयर। नाम क्या है आपका?
1: जी, मेरा नाम है सईदा।
0: सईदा जी,
1: कोशिश करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है।
0: ठीक है डन जी, करिए आप कोशिश, देखते हैं आपका कोशिश, आपकी जो कोशिश है वो रंग लाती है कि नहीं। सो शुरुआत करने वाले हैं दुनिया के सबसे पुराने और सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के साथ, वो है प्यार, मोहब्बत, लव। सो आई एम गोइंग टू रीड टू शायरीज ऑन लव। एक शायरी जो होगी वो पहली शायरी ए है और दूसरी शायरी हमारी बी है। ठीक है, तो पहली शायरी है, तेरे इश्क में हम इस कदर खो गए। जरा गौर फरमाएं, तेरे इश्क में हम इस कदर खो गए, रात के साए में सितारे हो गए। दिल की धड़कन तेरे ही नाम लेती है, दिल की धड़कन तेरा ही नाम लेती है, जैसे सुबह नई रोशनी देती है। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। हमारी जो शायरी नंबर बी है वो कुछ इस तरह से जाता है, अबाउट प्यार मोहब्बत। ठीक है, अजीज इतनी ही रखो कि जी संभल जाए, अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। वाह क्या बात है। कौन सी शायरी आपको लगता है कि हमारे किसी रियल शायर ने लिखी है और कौन सा आपको लगता है कि हमारी AI गालिब GPT ने लिखी है?
1: ए वाली AI ने लिखी है, बी वाली असली।
0: एकदम करेक्ट, शत प्रतिशत करेक्ट। प्लीज होल्ड द लाइन सईदा जी, यू हैव डेफिनेटली वन फ्रॉम फन पिज्जा किचन। कंग्रेचुलेशंस टू यू। आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन होल्ड। आपकी सारी डिटेल्स मैं ऑफ एयर लेने वाली हूँ कि यस, एक में धड़कन और रोशनी की बातें हैं और दूसरे में

मोहब्बत की एक अजीब सी लिमिट सेट कर दी गई है, एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल टू सी द वे खुमार बरा बंकवी हैज़ रिटन द शायरी. अजीज़ इतना ही रखो कि जी संभल जाए, अब इस कदर भी ना चाहो कि भाई दम निकल जाए. यही असल वाले हमारे शायर की शायरी. वाह, अनबीटेबल. मैन वर्सेस मशीन में मैन वन.

0: Listen, My Time Equity, led by CPA Sudhir Pai, helps individuals and families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities and alternative investment. So basically, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप plan कर रहे हैं long time wealth, retirement and growth की, investment growth की, तो जरूर connect करें. MyTimeEquity.com is their website.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
3: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
5: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम. ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा.
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
6: रेस्टोरेंट चूज करना हो, गूगल रिव्यूज. होटल बुक करना हो, गूगल रिव्यूज. लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है, माँ का रिव्यू.
7: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स, 2023-2026. मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स, सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री, स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, बिकॉज एवरी हेल्थी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड care. Call 214-666-6259 and schedule your appointments today.
8: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
9: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
10: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
11: अरे, 3 पे क्यों अटक गया?
12: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी 3 पे पहुंच गया.
13: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
14: डैलस, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए.
15: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल. एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलीशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज.
16: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज,
15: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर, टेक्सास. Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
17: Media partner, Fun Asia Network.
18: Tracks that put you on the right track.

पता है अकेले तो जीना भी नहीं चाहिए, हमेशा जो ह्यूमन है ना, वी आर सोशल एनिमल्स, तो हमें लोग चाहिए अपने आसपास, और जब मुश्किल हो तो कुछ प्रोफेशनल हेल्प भी चाहिए। और ऐसे में अटर्नी उमर ख्वाजा का नाम यहाँ याद करना चाहती हूँ और आप लोगों को भी याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर किसी कार एक्सीडेंट में आप हों या स्लिप एंड फॉल केस कुछ बनता हो आपका, जहाँ पे अगली पार्टी यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल एंड यू कैन गेट सर्टन कॉम्पनसेशन, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरे के पूरे अटर्नी उमर ख्वाजा और उनकी टीम पे छोड़ सकते हैं। वो आपके लिए लीगल बैटल लड़ेंगे विद द इंश्योरेंस कंपनी एंड एवरीथिंग दे विल गेट यू कॉम्पनसेटेड विद। और अगर आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट लेडीज एंड जेंटलमैन। 4693005046 विद दैट प्रॉमिस, दैट big promise that they bring for you. It is, I think, you know, कुछ debate ही नहीं होना चाहिए इसमें तो, कि भाई call करके आप देख लो एंड आजमा लो कि भाई आपके केस में वो कैसे हेल्प कर सकते हैं। 4693005046 इज दैट नंबर। attorneyomar.com इज द वेबसाइट फॉर दैट फ्री कंसल्टेशन दैट यू मे गेट एज वेल। सो वंस अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, अटर्नी उमर ख्वाजा की तरफ से आज फिर एक बार हम आप लोगों के लिए ट्रैफिक अपडेट लेकर आना चाहते हैं। और ट्रैफिक अपडेट में सबसे पहली गुड न्यूज़ ये है कि कोई मेजर कोलिजन या कुछ मैं नहीं देख रही हूँ। इट्स जस्ट माइनर, यू नो, आई एम सीइंग डिसेबल्ड व्हीकल केस, जिसके कारण थोड़ा बहुत बैकअप हो सकता है। एंड दैट इज ऑन I-30 एट टैरेंट डैलस काउंटी लाइन ईस्ट बाउंड एंड I-30 एट होराइजन रोड ईस्ट बाउंड, जहाँ पर यू नो आपके लिए एक लेन बंद आपको मिल सकती है। बाकी ऑल इज वेल विथ डैलस, आंट वी सो हैप्पी अबाउट दैट। अच्छा, हमारा ना मैन वर्सेस मशीन की जो का ये जो गेम चल रहा था, इट इज गोइंग टू कंटिन्यू। आप लोगों के लिए एक और बार मैं शायरी कुछ पढ़ना चाहती हूँ, और दिस इज टू डू विथ लाइफ, यानी कि जिंदगी और उसके स्ट्रगल्स। और ये टॉपिक सबको रिलेट कर सकता है, क्योंकि क्या है ना कि अगर आप अभी हाईवे पे हैं और बहुत सारा ट्रैफिक है, या यू नो घर पे फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, या ऑफिस में यार बहुत खिचखिच चल रही है, कुछ पॉलिटिक्स चल रही है, तो आप सभी के लिए ये लाइंस काफ़ी मायने रख सकती हैं। तो एक AI ने लिखा है, हमारे गालिब GPT ने लिखा है, और दूसरा रियल शायर ने लिखा है। आपको बस पहचानना है कि रियल शायर जो है वो उनकी कौन सी शायरी है। तो शायरी A फॉर ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये हुई हमारी शायरी A। और दूसरी शायरी जो शायरी B है वो है, जिंदगी एक अजीब सा सफ़र है, कभी धूप तो कभी छाव का असर है, मंजिल की तलाश में निकल पड़े हैं, रास्ते में अनजाने लोग मिले हैं। तो एक इंसान के एक्सपीरियंस से निकली है और एक एल्गोरिथम के सर्वर से निकली है। आपको बताना है विच वन इज रियल बाय अ रियल शायर एंड विच वन इज गालिब GPT। ठीक है, 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो।

All right, ladies and gentlemen, हमें सही जवाब अपना मिल चुका है एंड सही जवाब इट इज टू डू विथ यू नो हमने जो आप लोगों के साथ शेयर किया, क्या शेयर किया, मैं वही वापस जाके देखने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई हमारी जो जिंदगी और लाइफ के साथ जो ये टॉपिक्स थी ना, ये इसके बारे में कुछ बात थी और हमने कहा कि भाई कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, ये हमारा हमारा जो है ये टेक था। एंड शायरी ये बिल्कुल रियल शायर की तरफ से आई थी और यही मैं आपको बताना चाह रही थी, वसीम बरेलवी इन्होंने लिखा था ये, और दूसरी वाली शायरी चैट जीपीटी से निकाला हुआ, हमारे गालिब जीपीटी से निकाला हुआ ये शायरी थी। एंड यू आर राइट रुजीना, अक्स, दीपिका, फरहाद एंड ज्योति, बाय द वे हमारे बॉस का नाम फरहाद है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो देख रहे हो कि मैं फ़ोन उठाती हूँ कि नहीं। You are listening to Gupshup Gali with me too, ladies and gentlemen. यहाँ पर एक और शायरी ठोक दूँ, यहाँ पे एक रियल शायर की तरफ से होगा और एक आपके लिए होगा हमारे गालिब जीपीटी की तरफ से, ठीक है? It is to do with let me see what can I pull out for all of you this time. Okay, यादें, ये लेते हैं टॉपिक, यानी कि नॉस्टैल्जिया। तो शायरी ए है, यादों की किताब जब भी खोलता हूँ तेरे ही बारे में मैं सोचता हूँ, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता पर दिल को बस तेरा ही ख्याल भाता, ये हमारी है शायरी नंबर वन, ठीक है? और शायरी नंबर टू, इट इज़ एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। कौन सा रियल शायर की तरफ से और कौन सा हमारे गालिब जीपीटी की तरफ से, दिस इज मैन वर्सेस एआई दैट वी आर प्लेइंग। आई वांट अस टू फिगर आउट कि एआई का मैजिक सच्ची काम करता है कि नहीं।

कुछ हंसी मजाक के तौर पे ये हमारा सेगमेंट चला. इट वाज मैन वर्सेस मशीन, एआई वर्सेस रियल शायर्स दैट वी वर डूइंग, गालिब जीपीटी वर्सेस द डिफरेंट शायर्स दैट वी वर शेयरिंग सम शायरी अबाउट. एंड होपफुली यू एंजॉय दिस सेगमेंट. और अभी जो हाल ही में मैंने जो आपके साथ शेयर किया, इट वाज, लेट मी गो बैक टू दैट, एक मुद्दत से तेरी याद भी आए ना हमें और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं. ये लिखा है फिराक गोरखपुरी ने. जी हाँ, ये रियल शायर, जाने माने शायर एक हमारे. और ऐसे में ये कहना ज़रूरी बन जाता है कि व्हाट इज़ दिस एंटायर गेम अबाउट एक्चुअली. तो मैं पहले तो मस्ती में ही मैंने शुरू किया था एक्चुअली कि मैन वर्सेस मशीन करते हैं, देखते हैं हमारे लिसनर्स एक्चुअली क्रैक कर पाते हैं कि नहीं, कि कौन सा यू नो चैट जीपीटी ने लिखा है और कौन सा असल शायर ने लिखा है. बट एवरी टाइम अक्स मोनिक का सहर, आप सबने इस बारे भी सही गेस किया. एवरी टाइम मुझे एक सिंगल टाइम एक बंदा नहीं मिला जिसने कि गलत गेस किया हो. तो टाइम ये है कि मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप ध्यान से सुनो ना, तो गालिब जीपीटी हमारे ने ना उन्होंने राइम किया है परफेक्ट, बिल्कुल जिस तरह से यू नो एक मशीन कर सकता है. सितारे, सहारे, सफ़र, असर, वो सारी चीज़ें की हैं, सारी तुकबंदी की है एक बेसिक राइमिंग एल्गोरिथम फॉलो कर. लेकिन क्रिएटिव वर्ल्ड में एआई का सबसे बड़ा कौन शायद यही है कि भाई सोल कहाँ है, रूह कहाँ है इन सब चीज़ों में, इन लाइंस में, इन शब्दों में. एक मशीन का दिल कभी नहीं टूटा, उसने कभी नहीं वो बाहर के 105-106 डिग्री में बाहर जाके काम किया या जिंदगी के गर्मी को उन्होंने सहा. तो भाई कहाँ से इमोशन निकलेगा, प्यार ही नहीं हुआ तो कहाँ से इमोशन निकलेगा, है कि नहीं? तो बस वो रूह ही मिसिंग है इन सारी शायरी से, ये तो बात क्लियर है. अब बिल्कुल एक बिल्कुल रूह वाले गाने पर मैं लेके जाऊँ आपको, जो कि विशाल दादलानी ने लिखा भी, कंपोज भी किया, और आई थिंक ही सैंग इट, नो के सैंग इट. चलो लेट्स टेक यू टू दिस वेरी सोलफुल सॉन्ग. जो आप सोचें कि इस तरह से अगर सोचा जाए तो ये गाना एक्चुअली इज बी फिटिंग फॉर योर पार्टनर जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, या उस ऊपर वाले खुदा के लिए भी इसे डेडिकेट किया जा सकता है, टू योर लव वन और योर ऑलमाइटी. दोनों ही एंगल से गाना एक इबादत की तरह बैठता है.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Heere moti, main na chahun.
8: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
9: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
10: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
9: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
10: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
9: सच में सब संभालेंगे?
10: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
11: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428।
12: स्मार्ट लोग SFL वर्ल्ड वाइड को बुलाते हैं।
10: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
12: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
10: इंडिया तक।
12: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और वर्ल्ड वाइड, कम्प्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
11: SFL वर्ल्ड वाइड, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
13: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
14: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
13: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
14: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
13: ये क्या होता?
14: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
15: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
11: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
16: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
17: लिया।
16: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
17: नहीं आया।
16: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है। इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772। That's 972-863-772.
15: Visit www.sanadainc.com today.
18: Is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
11: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
19: Sadia.
17: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
15: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
19: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
20: तुमसे मिलके दिल का है।
15: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
19: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क।
21: Tracks that put you on the right track.

और ना कहते हैं ना कि गाना और खाना साथ ही साथ चलना चाहिए, तो बस इसीलिए तो मैं एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. एंड दिस इज अबाउट होको इंडियन रेस्टोरेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड एज सून एज आई फाइंड ऑल द डिटेल्स टू शेयर विथ यू, क्योंकि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाएगा एड्रेस देने में, यही मेरी सबसे बड़ी चिंता है. बाकी होको के बारे में तो हम सब जानते हैं, वी नो अबाउट देयर आइकॉनिक सैंडविचेस, वी नो अबाउट देयर चना पूरी, वी नो अबाउट देयर फ्लेवरफुल करीज, वी नो अबाउट द फेमस होको कोल्ड कोको. ये मतलब बिल्कुल राइमिंग टाइप का भी हो गया है. तो जी हाँ, मेक योर डे इवन मोर पोएटिक एंड ब्यूटिफुल विद द फूड ऑफ योर चॉइस. और ये चॉइस आपकी होनी चाहिए होको. अगर आपने कभी इंडिया में ट्राई नहीं किया है तो वक्त आ गया है कि अब आप ट्राई करें, क्योंकि फ्रिस्को में आ चुका है. येस, होको इंडियन रेस्टोरेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड इट इज एट 2693 प्रेस्टन रोड, स्वीट 1000 इन फ्रिस्को, दैट यू कैन एंजॉय the entire spread there. और फिर हमें बताइएगा कि आपका फेवरेट डिश वहाँ का क्या है. ठीक है, we'll add to the list of favorites here. Once again, you are tuned into Gupshup Gali with me too. Hopefully, आप लोग सब enjoy कर रहे हैं. आज का दिन, फ्राइडे का दिन हमेशा मस्त होता है. और हमने ना कुछ मस्ती मारी AI शायरी के साथ, AI versus real शायर्स की शायरी के साथ हमने पिछला एक घंटा बिताया. और उसी के साथ ना एक AI news जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, it is to do with ChatGPT 14's, ladies and gentlemen, क्योंकि ये segment है ताज़ा एंड न्यू, द फ्रेश ड्रॉप. एनीथिंग दैट कम्स माई वे आई मेक श्योर कि वो अगर नई खबर हो, एनीथिंग टू डू विथ टेक वर्ल्ड, म्यूजिक वर्ल्ड, फिल्मों की दुनिया से, या फिर किसी भी सोशल मीडिया वायरल रील की बात हो, या कुछ भी, एनीथिंग न्यू, इट हैज़ टू बी इन ऑन माई शो इफ़ आई कम अक्रॉस इट. अगर आपके पास ऐसी कोई अच्छी ताज़ा खबर हो, एकदम ब्रांड न्यू खबर हो, तो आप हम तक पहुँचाएँ. एंड वी विल डेफिनेटली मेक श्योर कि हम बाकी जनता तक वो ज़रूर पहुँचाएँ इन द सेगमेंट ताज़ा एंड न्यू, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड वॉट्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड नाइस अबाउट दिस डे इज एक सिंगर होती हैं जिनका नाम है वैशाली माड़े. जी हाँ, वही जिनके गाने आपने बहुत इंजॉय किए. सारे गामा पर चैलेंज जो था 2009 का, उन्होंने जीता था आफ्टर विनिंग द मराठी चैलेंज, द सारेगामा चैलेंज, सारेगामा पर चैलेंज मराठी लैंग्वेज का, एक साल पहले उसके. तो बस इतनी मझी हुई सिंगर है, वो पता चलता है जब वो श्रेया घोषाल के साथ उन्होंने ये गाना गाया. विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे.

यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विद मी टू। और गपशप गली में ताजा तरोताजा न्यूज जो है इन दिस सेगमेंट विच इज कॉल्ड ताजा एंड न्यू द फ्रेश ड्रॉप। आपके घर में अगर टीनेजर्स हैं जो सारा अपना होमवर्क जो है एआई से करवाते हैं, तो ये खबर समझ लीजिए आप ही के लिए है। ओपन एआई ने ऑफिशियली चैट जीपीटी 14 लॉन्च कर दिया है। ये स्पेसिफिकली माइनर्स के लिए है, टेलर्ड है फॉर देम, और ऑटोमेटिकली दे कैन टर्न ऑन, ये जो है ये अपने आप ही टर्न ऑन हो जाएगा फॉर यूजर्स अंडर 18। आजकल टीनएजर्स एआई को एज एन इमोशनल कॉन्फिडेंट भी यूज करने लगे हैं, विच कैन बी सो रिस्की फॉर देम मेंटल हेल्थ। और इसीलिए ये नया वर्जन हाई रिस्क टॉपिक्स जैसे कि वायलेंस हुआ या फिर सेल्फ हार्म, ऐसी कुछ टॉपिक्स अगर कुछ बात जो है टीनएजर्स पूछ रहे हैं तो उसको स्ट्रिक्टली लिमिट करता है। पेरेंट्स के लिए सबसे बढ़िया न्यूज़ बताऊं मैं क्या है आपके बच्चों के लिए, वो है क्वाइट आवर्स सेट कर सकते हैं आप, और सेंसिटिव टॉपिक्स पे नोटिफिकेशंस रिसीव कर सकते हैं। एंड दैट इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट फीचर दैट हैज बीन एडेड ऑन टू चैट जीपीटी 14। और एजुकेशन की बात अगर हो, हाँ होमवर्क की बात हो, इसका नया जो स्टडी मोड है ना, बच्चों को अच्छा नहीं लगने वाला है लेकिन हम पेरेंट्स को बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि ये स्टडी मोड जो है बच्चों को डायरेक्टली आंसर्स देने के बजाय स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा अलॉन्ग विथ होमवर्क रिमाइंड and fun quizzes, ladies and gentlemen, तालियां हो जाए इसी बात पे। The tech world is finally stepping up to protect our kids. Parents जो भी बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे ना कि ये AI की boundaries वगैरह, I think उनके लिए यही answer है ChatGPT 14, ladies and gentlemen। वैशाली माड़े और श्रेया घोषाल का एक और ये गाना तो भाई प्ले करना ही पड़ेगा, अनुज की रिक्वेस्ट पे।

और ऐसा ही वार्म वेलकम आप लोगों के लिए, या वार्म इनविटेशन मुझे कहना चाहिए, पाकिस्तान सोसाइटी नॉर्थ टेक्सस जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं कायद मेला 2026 एंड इट इज गोइंग टू बी एट द साउथ फोक रैंच इन पाकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, दरवाजे खुल जाएंगे आप लोगों के लिए 2 बजे और ये है 3 बजे से लेकर 11:45 PM। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड इट इज हैपनिंग टुमारो अगस्त 22nd। बहुत सारी आप शॉपिंग कर सकते हो, बहुत सारा खाना अलग अलग स्टॉल्स में जाके इंजॉय कर सकते हो, फिर अलग अलग कल्चरल फेस्टिविटीज हैं, लाइव म्यूजिक होगा एंड सबसे बड़ी बात, लाइव परफॉर्मेंसेस बाय रागा बॉयज। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी बात पे तालियां हो जाए, आई एम श्योर द एंटायर पाकिस्तानी कम्युनिटी इज सो एक्साइटेड अबाउट दिस स्पेक्टेकुलर सेलिब्रेशन दैट हैपेंस एवरी ईयर। और इस बारी साउथ फोक रैंच में तो अलग ही एक हंगामा होने वाला है, मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंट्री भी फ्री है और पार्किंग भी बिल्कुल फ्री है। तो कहने का मतलब ये है यार कि सिर्फ फैमिलीज के साथ नहीं, अपने दोस्तों का झुंड बना के आप पहुंचे कायद मेला 2026 पे। मीडिया पार्टनर फाइनेंशिया 104.9 FM। लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये है गपशप गली विद मी टू, और ये आखिरी सेगमेंट ताजा एंड न्यू सेगमेंट में ऊबर ईट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, बिकॉज ऊबर ईट्स इज ऑफिशियली टेकिंग थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल। उन्होंने ड्रोन डिलीवरी कंपनी जिपलाइन के साथ एक मैसिव पार्टनरशिप अनाउंस की है और उनका अल्टीमेट गोल पता है क्या है, टू हिट 1 million ड्रोन डिलीवरीज अ डे बाय द एंड ऑफ 2029। और इन सब चीजों में सबसे एक्साइटिंग बात पता है क्या है, ये फ्यूचरिस्टिक सर्विस इस साल के एंड तक सबसे पहले हमारे अपने डैलस और ह्यूस्टन में स्टार्ट होने वाला है। कैन यू इमेजिन दैट, पहली बार जिपलाइन विल बी फुल्ली इंटीग्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ऊबर ईट्स ऐप, मीनिंग कोई एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपना खाना ऑर्डर करो एंड इट विल फ्लाई स्ट्रेट टू योर डोरस्टेप। कैन यू इमेजिन दैट, Uber is building a complete hybrid network of human couriers, sidewalk robots or drones jo ye karne wale hain to make sure your food arrives at lightning speed aur bilkul fatafat aapko mil jaye। क्या पता अगले साल तक ये बिल्कुल हमारा एक नया नॉर्मल सा हो जाए, पता नहीं, है ना। इट लिटरली फील्स लाइक वी आर लिविंग इन अ साईफाई यू नो एरा। तो ये कोई रेड लाइट या कुछ रॉन्ग एग्जिट्स की बात ही नहीं है, मतलब सीधे घर पे आपके पहुंचेगा। एक डील करते हैं आप और मैं आज 21 अगस्त 2026 को, ठीक है। जय

जैसे ही डैलस में ये सर्विस फुल्ली रोल आउट होगा ना, आप अपना पहला ड्रोन ऑर्डर जब दोगे ना, तब मुझे आप कॉल करके बताओगे कि आपने क्या ऑर्डर किया है, ठीक है, और कौन से दिन किया है. ये तारीख फन एशिया की हिस्ट्री में भी हम सुनहरे अक्षरों से लिखेंगे. क्या कहते हैं, डील? ऑल राइट, एक और बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाए जाते जाते, एंड दैट इज कनिका कपूर सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे. Wishing her a very happy birthday and to everybody else enjoying and celebrating their extra special weekend birthday.

0: time to wind up my show, ladies and gentlemen, for the day and the week. और अगले हफ्ते मंडे को और ट्यूसडे को मैं सुबह 8 बजे आने वाली हूँ. शबनम जी को कवर करने वाली हूँ. शी इज गोइंग ऑन अ शॉर्ट गर्ल्स ट्रिप. यार उनको थोड़े मस्ती करने देते हैं. तब तक 2 दिन के लिए मैं कवर करने वाली हूँ. मंडे और ट्यूसडे सी यू एट 8. And get ready for Rimita up next with Afternoon Adda. This is Me Too signing off for the week.
1: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds with up to 25% off on diamond value and making charges. Plus, zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
3: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
4: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
5: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
6: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंक्वेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
7: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338. 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
8: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
9: Hello, मेरे relatives आ रहे हैं. Everyone's asking lunch में क्या है?
8: Fikar not. We have the perfect solution.
10: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
11: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho, kisne jana.
10: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
12: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

फ्राइडे ने अटेंडेंस लगा दी है, वीकेंड ने ट्रेलर दिखा दिया है और DFW अब बारी है फुल पिक्चर की। गुड आफ्टरनून, दिस इज रुमिता और आप सुन रहे हैं आफ्टरनून अड्डा का फिल्मी फ्राइडे, जहां पे गॉसिप वेरीफाइड होगी, रिव्यूज ऑनेस्ट होंगे, रिकमेंडेशंस सॉलिड होंगी और एंटरटेनमेंट बिल्कुल नॉनस्टॉप। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, फिल्मी फ्राइडे यार, फिल्मी वे में बोलते हैं ना, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हेडफोन्स लगाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए, बिकॉज योर फिल्मी वीकेंड ऑफिशियली स्टार्ट्स हियर, राइट हियर ऑन 104.9 FM फनीशिया रेडियो। आज का शो फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज है, आवरपन 2 और बंटवारा 1947 का ऑनेस्ट स्पॉइलर फ्री रिव्यू, इस वीकेंड थिएटर में क्या देखना चाहिए, OTT पर क्या स्ट्रीम करना चाहिए और बॉलीवुड की फ्रेश खबर के साथ लॉट्स ऑफ फिल्मी फन। एंड स्टूडियो का नंबर आपको तो पता ही है, 9722355555 इज द स्टूडियो नंबर, कीप इट रेडी। As I said, volume बढ़ा दीजिए, because Friday afternoon अब होने वाला है completely filmy।

36 minutes past 12 o'clock. You're listening to Funny Share Radio 104.9 FM. और जी हाँ, पार्टी कोई भी हो, चाहे वो वेडिंग हो, ग्रेजुएशन हो, हाउस वार्मिंग हो, या फिर कोई भी स्पेशल सेलिब्रेशन हो, आप ना स्ट्रेस कम लिया करो. क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ना पार्टीज में सिर्फ आपका जो ये स्ट्रेस है ना, कभी खत्म होने वाला नहीं है. चाहे वो वेन्यू के लिए हो, खाना क्या होगा, गेस्ट लिस्ट क्या होगा, डेकोर क्या होगा, इन सब का स्ट्रेस क्यों लेना है भाई, जहाँ आप DFW में हैं और वेनेसा इवेंट्स आपके साथ है. यानी कि वेन्यू, डेकोर, कैटरिंग एंड ऑल द अदर लिटिल डिटेल्स जो आपको परेशान करता है कोई भी इवेंट प्लानिंग के लिए, कोई भी इवेंट हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, कुछ नहीं करना है. जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स व्हेन वेनेसा इवेंट्स इज विथ यू. और क्या है ना, पता है, जो वेन्यू सिलेक्ट होती है, सिर्फ सिलेक्शन ही मेन नहीं है, उसको अच्छे से सुंदर से सजाना भी पड़ता है. सो व्हेन यू हैव वेनेसा इवेंट्स अलोंग विद द सिग्नेचर इवेंट्स वेयर दे विल टेक केयर ऑफ ऑल द डेकोर बाय देमसेल्व्स विद फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी एंड डिलिशियस कैटरिंग एक्सक्लूसिवली बाय द रिनाउंड बसेरा ग्रैंड. सो चिल मारो, कोई भी सेलिब्रेशन अगर प्लान कर रहे हो, जस्ट सिट बैक एंड मेक मेमोरीज. यार सेल्फी वेल्फी खींचो, इंस्टाग्राम में पोस्ट करो एंड चिल आउट व्हेन वेनेसा इवेंट्स इज विथ यू. कॉल हरी बसेरा टुडे एट 469-442-8770. दैट्स 469-442-8770, बिकॉज वेनेसा इवेंट्स इज योर सेलिब्रेशन पार्टनर.

listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Filmy Friday with me, Ramita, जहाँ पे हम हर फ्राइडे पोस्टमार्टम करते हैं फिल्म्स की जिसने उस वीक रिलीज की हो या फिर उसके पहले वाले वीक, यानी कि जिस वीक हम बात करते हैं उस वीक के रिलीजेस की, फ्रेश रिलीजेस की, और पिछले हफ्ते जो रिलीज्ड मूवीज है हमारी, जो कि है इस वीक आवारापन 2 एंड बटवारा, उनकी पोस्टमार्टम चलेगी. तो सबसे पहले आवारापन 2 की बात करते हैं. 2007 में एक फिल्म आई थी जो रिलीज के वक्त शायद ब्लॉकबास्टर नहीं बनी थी, बट शिवम पंडित A.K.A. इमरान हाशमी का कैरेक्टर लोगों के दिल में रह गया अलॉन्ग विद द म्यूजिक ऑफ आवारापन. एंड ऑफ कोर्स इमरान हाशमी इज वंस अगेन बैक विद हिज इंटेंस साइलेंट एंड इमोशनली वुंडेड अवतार आवारापन 2 में. ऑनेस्टली इमरान का परफॉर्मेंस ही फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो हमने अब रिव्यूज की मानी तो. एंड स्टाइलिश एक्शन है, लोकेशंस भी बहुत ज़्यादा विजुअली स्ट्रॉन्ग है, और म्यूज़िक पुराने वाली आवारापन, यू नो, आवारापन वाली वो फीलिंग हमें रिवाइव करती है. मेरे हिसाब से फर्स्ट हाफ ऑफ द मूवी इज क्वाइट एंगेजिंग. एज आई सेड, एक्शन, इमोशन और इमरान की मिस्टीरियस पर्सनालिटी आपको कनेक्टेड रखेगी. लेकिन सेकंड हाफ में पेस थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ना प्रॉपरली डेवलप नहीं होते हैं, और क्लाइमेक्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है. इवन इफ यू हैव शबाना आजमी इन द मूवी दिस टाइम इन आवारापन 2, द फिल्म कुड नॉट मेक इट टू द मार्क. अ वेरी स्ट्रॉन्ग नॉस्टैल्जिया इंडीड विद द परफॉर्मेंसेस एंड द सॉन्ग्स, बट स्क्रीन प्ले ना कुड हैव बीन बेटर. एंड दिशा पटानी, यू शुड डेफिनेटली हैव बेटर चॉइसेस of movies and scripts and try to act a little baby. So here it goes from Avarapan 2.0. Oh, this is Tera Mera Rishta. Of course, it is going to bring back all the nostalgia. So review ki mane, agar is week aap Avarapan 2 dekhna chahte hain on the theaters, go for it. If you like Imran Hashmi and his movies.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
3: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
2: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
3: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
4: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
5: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली, मस्ट बी 21 years or older to gain.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
11: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
0: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन, साल्स हॉट चिकन, कमिंग सून।
12: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
13: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
12: नहीं।
13: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
12: नहीं।
13: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
12: वो भी नहीं।
13: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
14: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
15: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
16: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
17: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
18: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
19: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
20: ना सब और प्राइस
19: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
21: मैं हीरो।
22: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
23: कौन सा?
22: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
23: अरे सारे तो सेम है।
22: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
23: ओ हाँ, ये तो अलग है।
14: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
24: डैलस, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए।
25: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल। एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलिशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज।
26: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज,
25: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर, टेक्सास। Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
0: Media partner, Fun Asia Network.

What a beautiful, beautiful, beautiful track from the movie Batwara 1947. जी हाँ, this film released last week on 14th of August, Independence Day release थी ये movie, directed by Rajkumar Santoshi, which is a serious historical drama featuring Sunny Deol, Preeti Zinta and Shabana Azmi in pivotal roles. A film partition के backdrop में humanity, displacement और relationship की story बताती है जरूर. इसकी इंटेंशंस सही थी, सिंसियर थी, बट मैसेज थोड़ा सा और मीनिंगफुल होना चाहिए था. एंड परफॉर्मेंसेस, स्पेशली सनी देओल एंड शबाना आजमी, दे आर इमोशनली पावरफुल, बट स्टोरी टेलिंग जो है ना इस मूवी की, थोड़ा सा ट्रीटमेंट डेटेड लगता है. पेस भी बहुत स्लो है, सीन्स आर ऑल्सो क्वाइट हैवी. और एंटरटेनमेंट से ज़्यादा दिस इज़ अ सीरियस इमोशनल एंड डिमांडिंग मूवी विच रिलीज्ड लास्ट वीक. तो अगर आप हिस्ट्री बेस्ड ड्रामास एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन फिल्म्स पसंद करते हैं, देन यू कैन स्टिल गिव इट अ चांस बिकॉज दे आर स्टिल प्लेइंग हियर. लाइट वीकेंड एंटरटेनमेंट चाहिए तो दिस मे नॉट बी योर फर्स्ट चॉइस फॉर योर दिस वीकेंड थिएटर गो टू मूवी वॉच लिस्ट. अगले हफ्ते देर इज एन इंटरेस्टिंग रिलीज विच इज खोसला का घोसला 2. यस, अनुपम खेर इज बैक विद द मूवी खोसला का घोसला 2. और जिन्होंने भी खोसला का घोसला देखा है, दे शुड बी लाइक आई एम एक्चुअली वेरी इंट्रीग्ड एंड अवेटिंग फॉर दिस मूवी टू बी रिलीज नेक्स्ट वीक बिकॉज आई नो वॉट fun this movie had. You're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. This is Filmy Friday with me, Rumita.

यू नो फ्राइडे इवनिंग का सबसे बड़ा फैमिली कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है कि क्या देखे। इमेजिन ये सिनेरियो तो आपके साथ होता ही होगा कि आप डिनर लेके रेडी बैठे हो एंड स्टिल एक हाथ में प्लेट है और राइट हैंड में रिमोट, स्क्रॉल किए जा रहे हो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड योर अनश्योर कि देखना क्या है। पापा को एक्शन, मम्मी को फैमिली ड्रामा, किड्स को एनिमेशन और 45 मिनट बाद भी स्क्रीन पर अभी भी आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म का होम पेज खुला हुआ है। सो लेट मी हेल्प यू बिकॉज दिस इज फिल्मी फ्राइडे ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो और आपकी रमिता आपको इस वीक ओटीटी पर काफी ऑप्शंस देने वाली है, देखने वाली। मेरी पहली रिकमेंडेशन है क्लीन अप कंपनी, अ हिंदी डार्क क्राइम कॉमेडी अबाउट थ्री फ्रेंड्स जो कि एक्सीडेंटली दे एंटर अ वेरी अनयूजुअल बिजनेस ऑफ क्लीनिंग अप क्राइम सीन्स। येस दैट्स अ बिजनेस आइडिया, आप अपनाना मत, जस्ट एंजॉय करना। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म में आ रही है आज, विच इज क्लीन अप कंपनी स्टारिंग रवि किशन, विशाल जेठवा एंड अमे वैग। कौन सी प्लेटफॉर्म में आने वाली है वो मैं नहीं देखूंगी यार, थोड़ा मेहनत कर लो, थोड़ा आप स्क्रॉल कर लो, गूगल कर लो, आपको मिल जाएगी विच ओटीटी प्लेटफॉर्म दे आर प्लेइंग। और घर में अगर रिमोट ही रिमोट कंट्रोल का फाइनल बॉस बनना है देन डू गिव इट अ रिकमेंडेशन इन योर फैमिली। उसके साथ साथ अगर आपको मास एक्शन पसंद है देन जन नयगन इज योर वीकेंड ओटीटी ऑप्शन एज वेल, स्टारिंग थलापति विजय एंड इट इज स्ट्रीमिंग अगेन ऑन अ वेरी पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड दिस वन इज मोर सूटेड फॉर व्यूअर्स हु एंजॉय लार्जर देन लाइफ हीरोज एक्शन एंड ड्रामेटिक कॉन्फ्रंटेशन। यानी कि मंडे टू फ्राइडे आफ्टरनून इवनिंग तक अगर ऑफिस में बवाल मच गया हो उसको अगर कैरी फॉरवर्ड करना है घर में ऑन अ फ्राइडे नाइट देन डू गिव इट अ ट्राई ओनली एट योर फेवरेट OTT platform. I know, thoda isme bhi Google karna hai. And if you are a family oriented watch, if you want a, agar ghar mein crime or action par agreement nahi hota hai and you want something lighter and family oriented, titles such as Pyar Prema Kallanayam, again an unconventional newlywed story packed with family chaos and relationship complications. To agar... टू रिपीट, डार्क कॉमेडी के लिए क्लीन अप कंपनी, मास एक्शन के लिए जन नयगन एंड प्यार प्रेमा कलरम, ऑल आर योर दिस वीक्स फ्राइडे ओटीटी रिकमेंडेशन फॉर यू।

भी आपको फाइनेंसेस तो आपके संभाल के रखने होंगे, राइट? यू नीड सम प्लानिंग अबाउट योर फाइनेंशियल फ्यूचर, एंड फॉर दैट मैटर यू हैव एजी फिनटेक्स बाय योर साइड, वेयर यू वेदर यू आर एन इंडिविजुअल, अ स्टार्टअप और एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेस. एजी फिनटेक्स ऑफर्स इनोवेटिव फिनेंशियल सॉल्यूशंस जो आपके लिए टेलर्ड है, यानी कि बुक कीपिंग, पेरोल अकाउंटिंग एंड बैंक एंड क्रेडिट कार्ड रिकन्सिलिएशन टू प्रोएक्टिव टैक्स प्लानिंग, टैक्स कंप्लायंस, फिनेंशियल रिपोर्टिंग, बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज. आपको आपके फिनेंसेस ऑर्गेनाइज रखते हैं, कंप्लायंट रखते हैं एंड मेक्स यू फ्यूचर रेडी. उनकी जो टीम है दैट इज ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड कमिटेड टू योर सक्सेस. एजी फिनटेक्स इज योर पार्टनर इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फिनेंशियल फ्यूचर. कॉल कीजिए 4699429888, दैट्स 4699429888, और यू कैन सिंपली विजिट AGFintax.com टुडे फॉर योर consultation.

party will be back in DFW, guys, because the revolution is going to happen. Kab? Kahan? That is 26 September at the Credit Union of Texas Event Center in Allen, because Sonu Nigam will be live in Dallas. Ji haan, an unforgettable night of music. That is on 6 September 26th at 8:30 PM onwards. Aapke चहीदे, मेरे चहीदे, हम सबके चहीदे सोनू निगम विल बी हियर इन डालस इन अ कॉन्सर्ट कॉल्ड द रेवोल्यूशन. टिकट्स के लिए विजिट ticketmaster.com एंड फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल 855-360

0: श्रावण हमें जोड़ता है भगवान से, रक्षाबंधन हमें जोड़ता है अपनों से, और कुछ रिश्ते एक डोर से शुरू होते हैं और एक अनमोल निशानी के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। हर रिश्ता अपनी एक कहानी लिखता है और PMJ ज्वेल्स उस कहानी को देता है सोने की चमक, हीरो की रोशनी और क्राफ्टमैनशिप जो पीढ़ियों तक साथ रहे।
1: PMJ ज्वेल्स नाउ ओपन ऑन 13215 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को।
2: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
3: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
6: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय CPA सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late stage pre-IPO opportunities and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
7: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
8: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route, rerouting.
8: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
9: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
8: क्यों?
9: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
8: अच्छा तो सीधा वही ले चलो,
10: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
9: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
11: आई एम सो स्ट्रेस्ड, क्रेडिट कार्ड बिल्स, अनसिक्योर्ड डेट्स, व्हाट आर वी गोइंग टू डू?
12: कुछ भी नहीं, उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस।
11: क्या मतलब?
12: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स।
11: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क? वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर मनी, हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
12: उरा डेट रिलीफ इज वन ऑफ द लीडिंग डेट सेटलमेंट कंपनीज। दे डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी अंटिल आवर डेट इज सेटल्ड एंड दे हैव अ 100% मनी बैक गारंटी। कॉल तो करो 888-888-9914।
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
13: डोंट लेट डेट रुइन योर लाइफ, विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर।
14: एक और लड्डू ले लो।
15: थोड़ी और बिरयानी?
14: अरे अमेरिका जाके थोड़ी मिलेगा।
16: अब सिर्फ सूटकेसेस ही नहीं, वेट, कोलेस्ट्रॉल और शुगर भी एक्स्ट्रा बैगेज बन के साथ आ गए।
17: इंडिया ट्रिप के बाद या कभी भी अपनी हेल्थ को गेस वर्क पर मत छोड़िए। स्केड्यूल योर एनुअल हेल्थ चेकअप एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अलोंग विद ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल एंड वेट चेक्स, दे आल्सो ऑफर डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ असेसमेंट, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग एंड मेनी अदर प्रिवेंटिव हेल्थ स्क्रीनिंग्स। कॉल और टेक्स्ट 214-666-6259। Health Primary Care.
18: Are you trying to protect your business, retain top talent, and plan for future succession all at the same time? An executive retention strategy using life insurance may help address multiple business goals, including key person protection, employee retention incentives, and future buyout planning. To explore business life insurance strategies, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms, and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Business planning strategies should be reviewed with qualified legal and tax professionals. Not legal, tax, or investment advice.
19: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन जाती है।
3: वही आवाज ले
2: लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
18: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
15: तुमसे मिलके दिल का है।
2: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
18: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

1:40 PM by the studio clock and you're listening to Funny Shar Radio 104.9 FM. This is a Filmy Friday और जैसे कि मैंने कहा यानी कि रमीता ने अब बताने वाली है आपको कि अगर फ्राइडे दोपहर तक अभी भी लंच का प्लान नहीं बनाया और अगर बना भी लिया खा भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है यार, वीकेंड इज हियर, तो आज डिनर का प्लान बना लो या कल लंच का प्लान बना लो, अभी भी संडे नाइट तक कहीं भी लंच या डिनर का प्लान बनाना हो, देन आई हैव वन रेकमेंडेशन फॉर यू, दैट इज ऑफ Page 3 ईटरी विच इज लोकेटेड इन मखेनी हब 121. यानी कि अगर आपको सिजलिंग कबाब्स और चाट खाने की इफ यू मिस दैट पालक पत्ता चाट ऑफ दिल्ली विच इज माई पर्सनल फेवरेट फ्रॉम Page 3, और वो जो राम लड्डू बोलते हैं एंड देर इज दैट रबरी जलेबी, ओ माई गॉड, इफ यू हैवन येट टेस्टेड दीज 3 स्पेशल आइटम्स फ्रॉम Page 3 ईटरी देन क्या ही किया यार. और सिर्फ खाना नहीं दोस्तों, दे हैव रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स एज वेल, ट्राई इट आउट बिकॉज दे हैव दिस फ्लेवरफुल ट्विस्ट इन देयर रेस्टोरेंट मेन्यू, चाहे वो बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड हो या फिर कोई मॉडर्न फ्लेयर, जैसे कि मैंने कहा इफ यू लंच एनी ब्रंच लंच डिनर या फिर वो बहुत ही अवेटेड डेट नाइट हो या फिर ऐसे ही खाने का मन हो, आप मेरी तरह फूडी है, देन स्टेप अप टू Page 3 ईटरी विच ब्रिंग्स द परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर एनर्जी and vibrant vibes. For further details, explore their menu at Page3Eatery.com. Sunte rahiye Filmy Friday. I'll be back with more fun and especially more music.

such a beautifully written track from the movie Kesari. And why I say beautifully written, I mean music तो अच्छी है ही, but कभी अपने lyrics पे भी गौर किया हो तो समझ आते हैं यार, such a dedicated lover and such beautifully expressing their love for their loved ones, for their mahi. But मेरा मानना है कि सिर्फ बताना ही काफी नहीं है, जताना भी पड़ता है. तो अगर आप अपने माही के लिए कुछ प्यार भरे जताना चाहते हो, अपना प्यार जताना चाहते हो विद पैम्परिंग गिफ्ट्स, और लड़कियों के लिए, हम लड़कियों के लिए डायमंड्स से ज़्यादा प्रेशियस क्या ही हो सकता है. आई नो इस पे बात पे डिबेट हो सकती है कि डायमंड्स आर नॉट द वुमन्स बेस्ट फ्रेंड एनी मोर, बट डायमंड्स आर जस्ट फॉर एवर और दे आर इररेजिस्टेबल ड्यूरिंग दिस तनिष्क फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, विच यू कैन एन्जॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस प्लस 0% डिडक्शन ऑन द एक्सचेंज ऑफ आपके पुराने गोल्ड ज्वेलरीज विच आर अबव 18 कैरेट. सो सेलिब्रेट दिस सीजन विद द टाइमलेस स्पार्कल एट तनिष्क विच इज लोकेटेड इन फ्रिस्को. टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड, जैसे कि हर दुकान में, हर हर ऑफर में होता है. तो डू चेक इट आउट एट द तनिष्क विच इज देयर इन फ्रिस्को. फिलहाल दिस तबाही मचाते हैं विद टॉक्सिक विच इज गोइंग टू गेट रिलीज्ड ऑन 26th of August दिस नेक्स्ट वीक.

You're listening to 104.9 FM Funny Shar Radio. मैं हूँ रमीता and this filmy Friday में वक्त है एक giveaway का. And how are you going to win this giveaway is simply guessing the movie. Yes, I'll be giving you 3 clues about the movie. Movie का नाम बताओ and जीत जाओ this giveaway from San Idli Restaurant, which is located in Frisco. क्या जीतोगे आप? Simply एक डोसा of your choice plus 1 filter coffee at the San Idli Vegetarian Restaurant in Indian Food, which is 100% vegetarian food menu, which is made of authentic flavors, fresh crispy dhosas, fluffy idlis, or comforting South Indian favorites, or saath hi saath, shahar ki best filter coffee. Chahe family dinners ho ya catering services with Jain friendly options as well. Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 and कस्टर जंक्शन. और इस गिवअवे की खास बात ये है कि ये गिवअवे सिर्फ एक बंदा या बंदी नहीं जीतेगा, जीतेंगे 2 लिसनर्स. सो कीप योर बॉलीवुड इयर्स वेरी एक्टिव राइट नाउ बिकॉज आई एम गोना आस्क यू दिस गेस द मूवी सेक्शन में दिस क्वेश्चन. सो क्लू नंबर 1 ये है कि फिल्म में एक मिडिल क्लास दिल्ली फैमिली है. क्लू नंबर 2, उनकी जमीन पर किसी और ने कब्जा कर लिया है. और क्लू नंबर 3 इज एक क्लेवर प्लान फेक बायर्स और प्रॉपर्टी डीलर के अगेंस्ट फुल फैमिली रिवेंज. बस इतना इजी कर दिया है मैंने. मूवी का नाम बताओ. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. एंड गेस व्हाट, एक बोनस क्लू भी है. इसका सीक्वल रिलीज होने वाला है 28th of August को in the theater. So call me and tell me the name of this movie, Delhi Family, Property पे कब्जा और एक full proof clever plan fake buyers के साथ.

हाय, मैं भी मर गई यार। अभी भी कॉल्स आ रहे हैं। आई नो आप लोग इतने बॉलीवुड बफ हो यार, 3 क्लू में पूरे पिक्चर का नाम बता दे रहे हो। मुझे तो लगता है 1 क्लू ही काफी था। बट फिलहाल यस, द मूवी नेम इज खोसला का खोसला, विच इज अगेन रिलीजिंग ऑन August 28th नेक्स्ट वीक। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले हफ्ते। अब के लिए मैं बता दूं कि मेरे दो विनर्स जो है उनके नाम, एक है कार्तिक अरोरा, कंग्रेचुलेशंस, आप जीत गए धोस ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी फ्रॉम सैन इडली। और दूसरे अंकित गुप्ता, कंग्रेचुलेशंस, आप भी जीत गए धोस ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी फ्रॉम सैन इडली रेस्टोरेंट। बाकियों के लिए है पूरे थ्रू आउट द डे यू विल गेट एम्पल ऑफ ऑप्शन टू विन गिव अवेज। कीप लिस्निंग टू फिनिश, इसीलिए ना मैं बोलती हूँ, एंड एंजॉय म्यूजिक विथ free giveaways. Keep listening to Fun Filmy Friday with me, Ramita, today only on your Dallas Ki Dharkan.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: Beta, 95% aaye?
4: Haan, mummy.
3: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
5: Mera?
3: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
5: Whoa.
6: School ka report card saal mein ek baar aata hai. But business ka report card har mahine. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
7: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: जीनी हुकम मेरे अखा, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
9: मिराज लाउंज चलिए मेरे अखा, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
8: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
9: नो प्रॉब्लम अखा, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
8: और एंटरटेनमेंट,
9: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
8: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
9: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंच पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
12: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just

0: Cameron. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: Dad, property papers कहाँ हैं?
2: Laptop में.
1: Investment?
2: Google Drive.
1: Insurance? Passwords?
2: बेटा, don't worry. मुझे सब पता है.
1: Dad, वही तो problem है. सिर्फ आपको पता है.
3: Your family shouldn't have to search for answers when you're not there to give them.
4: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. With proper estate planning, protect what you have built and give your family clarity and control.
3: Call 669-243-5799. That's 669-243-5799. Or visit nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
5: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
6: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
7: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
6: अजी, सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
8: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
6: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
6: सच में सब संभालेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
9: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

33 years exactly इस गाने का जो एज है दैट इज 33 years. खलनायक मूवी में रिलीज हुई थी एंड दैट वॉज ब्यूटिफुली प्रेजेंटेड इन दिस मूवी कॉल्ड क्रू. यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशिया रेडियो एंड दिस इज फिल्मी फ्राइडे विथ मी रमिता, जहाँ पे आज अब वक्त हो चुका है आपको बॉलीवुड फ्लैशबैक में ले जाने का. एक ऐसी मूवी, एक ऐसी फिल्म की तरफ जिसने हमें सिखाया था कि ड्रीमिंग बिग इज ओके, बस थोड़ा सा लीगल तरीके से. याद है, आई एम टॉकिंग अबाउट बंटी एंड बबली, विच रिलीज इन 2005. अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, द फ्रेश पेयरिंग, द फ्रेश केमिस्ट्री, और अमिताभ बच्चन एज द स्टाइलिश कॉप. उनका जो वो गमछे का स्टाइल था ना, विद दोज ग्लेयर्स, ओ माय गॉड. और ऑनेस्टली हम उस वक्त सोचने लगते थे कि स्कैम करना है, लेकिन बंटी और बबली जितना स्मार्ट होना तो बनता है. स्कैम नहीं करना है एक्चुअली, आई मेंट इज. और फिर उस फिल्म की म्यूजिक, वेयर एवर यू गो, चाहे वो शादी हो, पार्टी हो, या फिर सिंपली आपके स्कूल या कॉलेज में कोई डांस परफॉर्मेंस है, आई एम श्योर किसी ना किसी ने तो कजरारे में परफॉर्म किया ही होगा. और दैट ब्यूटिफुली गुलजार पेंड एंड शंकर एहसान लॉय की जो म्यूजिक, आय हाय, क्या ही बोलूँ मैं. तो सवाल ये हर बॉलीवुड फ्लैशबैक के एंड में मेरा यही रहता है कि अगर इफ़ यू वांट एनी मूवी टू गेट री रिलीज इन थिएटर्स राइट नाउ, विच मूवी एंड व्हाई वुड यू वांट दैट मूवी टू गेट री रिलीज. कॉल कीजिए हमें, स्टूडियो का नंबर इज 9722355555 एंड टेल मी विच मूवी यू वॉन्ट टू गेट इट रिलीज एंड वाई, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल.

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. This is Filmy Friday with me, Rumita. And I love this Bollywood flashback segment जहाँ पे मैं question करती हूँ आपको, पूछती हूँ कि कौन सी ऐसी movie होंगी जो फिर से अगर यहाँ पे release हो, theaters में release हो, remade हो, तो कौन सी होगी और क्यों? बहुत back to back calls आए, but specially दो calls जिनका मैं mention करना चाहूँगी. एक तो पंकज जी कहते हैं कि उन्हें सौदागर वापस थिएटर्स में देखना है अपने दोस्तों के साथ, जस्ट टू रिवाइव दोज मोमेंट्स बिटवीन, आई मीन इट वॉज अ सुभाष घाई क्लासिक ऑफ कोर्स, एंड जस्ट द मोमेंट बिटवीन राजकुमार एंड दिलीप कुमार विथ देयर फ्रेंडशिप बींग बॉन्डेड अगेन, देयर फ्रेंडशिप बींग रिवाइव्ड अगेन, एंड दैट्स वॉट एग्जैक्टली ही वॉन्ट्स टू ब्रिंग बैक द मेमरी ऑफ हिज फ्रेंडशिप विथ हिज ओन फ्रेंड्स. और दूसरे नंबर पर है रशीदा जी, जिन्होंने कॉल किया और कहा कि भाई कुछ भी हो, आई वॉन्ट टू वॉच जो जीता वही सिकंदर ऑन स्क्रीन अगेन. क्योंकि आजकल ये जो चिक फ्लिक उन्हें दिखने को मिलते हैं, हमें दिखने को मिलते हैं, जो कि है तो बहुत ही जेन जी स्पेसिफिक, बट द ओजी ऑफ चिक फ्लिक्स, यानी कि टीनेज रोमांस भी है, स्पोर्ट्स भी है, एंड दैट एड्रेनलिन रश व्हाइल यू वॉच जो जीता वही सिकंदर, एंड द क्यूटनेस ऑफ आमिर खान एज ऑलवेज, एंड हु कैन फॉरगेट दिस ब्यूटिफुल म्यूजिक बाय जतिन ललित. सो आई नो आई वुड रेकमेंड कि अगर आप भी इन फिल्म्स को, इन क्लासिक्स को मिस करते हैं, डू देम, डू गिव इट अ वॉच अगेन एंड रिवाइव दोज मेमरीज विच यू हैड व्हाइल यू वॉच देम द फर्स्ट टाइम एवर इन थिएटर्स और ऑल बाय योरसेल्फ इन योर टीवी स्क्रीन और विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू रिवाइव दोज मेमरीज यार.

सही कहते हैं वो लोग जो कहते हैं कि कुछ गानों के साथ हमारे जो रिश्ते होते हैं वो इतने टाइमलेस होते हैं, एंड देयर कांट बी वन ग्रेटर एग्जांपल देन दिस सॉन्ग दैट इज पहला नशा फ्रॉम द मूवी जो जीता वही सिकंदर. यू आर लिसनिंग टू 104.9 FM फनीशा रेडियो. दिस इज फिल्मी फ्राइडे विथ मी रमिता. और रिश्तों की अगर बात करें तो एक और भी एक ऐसा रिश्ता है विच इज टाइमलेस, यानी कि भाई और बहनों की रिश्ते, द सिबलिंग रिलेशनशिप. एंड दिस रक्षाबंधन विच इज अपकमिंग नेक्स्ट वीक. फनीशा रेडियो एंड चौकटाओ कैसीनो एंड रिसोर्ट इन ड्यूरेंट वॉन्ट टू हियर योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विथ योर ब्रदर और सिस्टर, यानी कि आपकी आपके बहन के साथ या भाई के साथ कोई भी एक दिलचस्प कहानी हमें एक मिनट के अंदर एक वॉइस नोट पे भेजिए. व्हाट्सएप कीजिए इन द नंबर 2148377147, द नंबर अगेन 2148377147, एंड यू कुड गेट अ चांस टू विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिसोर्ट स्टेज, एंड क्या पता आपको ग्रैंड प्राइज भी मिल सकता है अगर आपकी स्टोरी इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग हो. देन देर इज एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट द चौकटाओ कैसीनो एंड रिसोर्ट इन ड्यूरेंट. फॉर कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स आप फनीशा रेडियो के किसी भी सोशल मीडिया पेज में जाइए, वहां पे आपको डिटेल्स मिलेंगे. एंड रजिस्टर नाउ एंड टेक पार्टिसिपेशन चौकटाओ कैसीनो एंड रिसोर्ट इन ड्यूरेंट वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. एंड फॉर द पीपल टू नो यू मस्ट बी 21 ईयर्स older to participate. There are terms and conditions applied, jaise ki main hamesha kehti hu. Aur again, Chowkta Casino Resort in Durand, which is, as I say, it is an unforgettable memories. When unforgettable memories are made, you need to play responsibly. So take all these notes and participate in the Chowkta Casino Raksha Bandhan contest.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Hello, accident claim? Okay. Name of the lawyer?
4: उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट attorneyumar.com।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
6: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
10: लिया।
9: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
10: नहीं आया।
9: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
11: Visit www.sanadainc.com today.
12: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Jeet unki hoti hai, jinki nazar sirf target par hoti hai. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को
17: एकेडमी, पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099।
18: मेंशन फन एशिया एंड गेट 50% ऑफ ऑन ट्रायआउट सेशन।
2: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है।
11: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन।
2: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस।
19: तुमसे मिलके दिल का है।
11: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन।
2: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर। फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज। एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये, इश्क इश्क है।

A very, very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Funny Share Radio. सुन रहे हैं आप, मैं हूं किरण आपके साथ. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. और आज है जी Friday. Friday सबसे पहले तो thank God it's Friday because I love Fridays. This is the favorite day of the week for me. और दूसरी बात, एक तो weekend आ रहा होता है, उसकी खुशी तो होती ही है, और दूसरा जो खुशी की बात होती है वो होता है Kids Junction. 3 बजे से लेके 4:30 तक मैं लेती हूँ आप बच्चा पार्टी. आप सबकी रिक्वेस्ट, यू कैन गिव मी अ कॉल लाइव ऑन एयर एंड आई एम गोइंग टू टॉक टू यू एंड टेक योर रिक्वेस्ट. एंड माय ओनली रिक्वेस्ट इज मेक अ रिक्वेस्ट ऑफ अ बॉलीवुड और हिंदी सॉन्ग सो दैट एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू यू कैन एंजॉय द म्यूजिक जस्ट एज मच एज यू आर एंजॉइंग योर रिक्वेस्ट. दैट इज माय ओनली रिक्वेस्ट, बट दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 3 PM ऑनवर्ड्स. और एक स्पेशल बात जुमे की होती है मिक्स पॉट. ये जो 20-25 मिनट मेरे आपके साथ होते हैं, इसमें मैं आपके लिए प्ले करती हूँ कुछ पुराने गाने और उनके लफ्जों से निकले हुए कुछ जो मुझे नए गाने याद आते हैं वो आपके लिए. सो लेट्स बिगिन मिक्स पॉट राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. आज का जो पहला गाना है वो बड़ा ही खूबसूरत, टेकन फ्रॉम द मूवी मुकद्दर का सिकंदर.

फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से सुन रहे थे आप ये गाना. और जी, मुकद्दर का सिकंदर 1978 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जो आज तक की बॉलीवुड की मोस्ट आइकॉनिक हिट मूवीज में शुमार की जाती है. और अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और साथ ही साथ रेखा हमें इस फिल्म में रेखा तो थी, वो सलामेश राखी हमें इस फिल्म में नजर आई. और जो डायरेक्टर थे इस फिल्म के, प्रकाश मेहरा साहब, ओरिजिनली उन्होंने इन्विजन किया था कि वो एक मॉडर्न अडेप्टेशन, उस जमाने की मॉडर्न अडेप्टेशन ऑफ देवदास बनाएंगे. कोशिश तो डेफिनेटली उन्होंने की, लेकिन कुछ ट्विस्ट आई एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मेड मुकद्दर का सिकंदर इवन मोर पावरफुल. अच्छा जी, कुछ नए गाने और कुछ पुराने गाने आपके लिए प्ले कर रहे हैं मिक्स पॉट में. और सलामे इश्क से मुझे सलामे इश्क मूवी ही याद आ गई और उसका टाइटल ट्रैक आपके लिए अब प्ले करूंगी जो कि सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने गाया है. और सोनू निगम का ये गाना प्ले करते हुए आपको ये भी बताती चलूं जी कि द लेजेंडरी सोनू निगम आ रहे हैं डैलस में खास आपके लिए परफॉर्म करने. दिस इज रेवोल्यूशन, सोनू निगम लाइव इन डैलस सैटरडे सितंबर 26 को 8:30 PM शाम ये इवेंट शुरू होगा एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर इन एलन. आपके पसंदीदा गाने, आपकी पसंदीदा आवाज में, वो होती है ना, कुछ आवाजें होती हैं जो हमारी म्यूजिक के लिए की डेफिनेशंस होती हैं. तो सोनू निगम की आवाज ऐसी ही एक आवाज है जो हमारी, मेरी खास तौर पे म्यूजिक की डेफिनेशन बनी, स्पेशली 90s और 2000 अर्ली 2000s के एरा में. सो जरूर आप अटेंड कीजिए इस म्यूजिकल इवनिंग को, रेवोल्यूशन सोनू निगम लाइव ऑन सैटरडे सितंबर 26th एट 8:30 PM. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर ऑफ कोर्स पन एशिया नेटवर्क. टिकट मास्टर पे जाइए, टिकट्स अवेलेबल हैं आपके लिए. अगर आपने तक नहीं खरीदा कोई टिकट अपना, तो अभी टाइम है आपके पास, प्लीज बाय योर टिकट्स एट टिकट मास्टर. और अगर कोई सवाल है आपका तो फिर आप लॉग ऑन कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 855-360-SHOW. वंस अगेन दैट नंबर इज 855-360-SHOW. नाउ दिस इज द करंट वर्जन ऑफ सलामी इश्क.

पिछले 13 सालों से टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक प्राउडली हमारी कम्युनिटी को सर्व कर रहा है और अब दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम और सेकंड फिस्को लोकेशन. वेलकम लिनॉक्सी मेडिकल. जी हाँ, LUNOXY इफ यू लाइक टू सर्च लिनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाई डॉक्टर मनदीप आचार्य. ये वो जगह है जहां आपको मिलेगा प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरेज भी होंगे, सीटी स्कैन भी वहीं हो जाएंगे, कार्डियक डायग्नोस्टिक भी लिनॉक्सी मेडिकल में ही अंडर वन रूफ मिलेगा आपको. और यहीं पे बात खत्म नहीं हो रही, हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं वो, तो आप जरूर ये स्पा सर्विसेज भी वहां जाके अवेल कर सकते हैं. तो मतलब ऑल इन ऑल ये बता रही हूं आपको कि एक ही छत के नीचे एक ही जगह आप जाइए और सारे अपने जो आपके लिए, आपकी वेल बीइंग के लिए चीजें जरूरी हैं वो सब यहां पे मौजूद हैं. और दे आर ओपन 7 days a week फॉर योर कन्वीनियंस. सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक सातों दिन खुले हैं. कोई अपॉइंटमेंट आपको लेनी जरूरी नहीं है, यू कैन जस्ट वॉक इन. दैट इज हाउ इजी लिनॉक्सी मेडिकल हैज मेड इट फॉर यू. अच्छा, मिक्स पॉट चल रहा है तो मिक्स पॉट में जो अगला गाना है वो पुराने गाने का नंबर आ चुका है और जो गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूं दैट इज टेकन फ्रॉम द मूवी शक्ति. पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था मैं आपके लिए गाना जरूर प्ले करूंगी. दिस इज सच ए ब्यूटिफुल नंबर बाय लता मंगेशकर साहिबा. कहती हैं, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, और आगे जो पता दिया वो तो कमाल ही है.

1982 की क्लासिक क्राइम ड्रामा शक्ति डायरेक्टेड बाय रमेश सिप्पी बहुत ही फेमस हुई है मूवी फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर टू लेजेंडरी एक्टर्स दिलीप कुमार साहब और अमिताभ बच्चन फॉर द ओनली टाइम इन सिनेमाज हिस्ट्री. अमिताभ बच्चन ने बेटे का किरदार अदा किया, दिलीप कुमार साहब ने फादर का किरदार अदा किया. दो हेड स्ट्रॉन्ग, मतलब जरूरत से ज्यादा ही हेड स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज एक दूसरे से टकराई इस फिल्म में जो उनको रोल्स दिए गए थे. और बेचारी जो राखी जिन्होंने माँ का किरदार अदा किया था उनको मुझे सबसे ज्यादा इस मूवी में मुझे उन्हीं पर अफसोस होता है. वो बेचारी पिसती ही रहती हैं कभी हस्बैंड और कभी बेटे के दरमियान. बट शक्ति वॉज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट मूवी. अमरीश पुरी साहब ने इस मूवी में एक बेइंतहा खूबसूरत और कमाल के विलन का रोल अदा किया था. अच्छा जी, आपके लिए मिक्स पॉट चल रहा है. अब खत से मुझे एक खत याद आया जो कि करिश्मा कपूर ने लिखा था अजय देवगन को फॉर द मूवी जिगर. लेकिन वो खत की बातें बताने से पहले या प्ले करने से पहले आपके लिए प्ले बताती चलूं आपको कि अगर आप टेक्सस में बिजनेस ओनर हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तारा कमर्शियल एनर्जी आपके लिए कंपेरेटिव एनर्जी रेट्स, कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करती है. 2002 से दे आर इन बिजनेस इन टेक्सस और रिलायबल सर्विस और साथ ही साथ जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से वो आपके एनर्जी प्लान्स को डिजाइन करते हैं. सो अगर आप यू नो स्मार्ट कमर्शियल स्ट्रेटजी सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं तो तारा कमर्शियल एनर्जी से जरूर कॉन्टैक्ट कीजिए. नंबर है उनका 8444282808. नंबर अगेन इज 8444282808. या फिर आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको मिलेगी. दैट इज taraenergy.com. दिस इज TARA taraenergy.com. तो बढ़ते हैं करिश्मा कपूर के खत की तरफ. कह रही हैं, मैंने खत महबूब के नाम लिखा.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
3: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
4: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
5: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
3: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली.
6: हेलो, वीकेंड लंच एमरजेंसी हेल्पलाइन, हाउ मे आई हेल्प यू?
7: हेलो, मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं, एवरीवन इज आस्किंग लंच में क्या है.
6: फिकर नॉट, वी हैव द perfect solution.
8: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all-new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25-plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
2: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
1: कहाँ?
3: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानीपुरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
0: Foodistan in Aubrey. Mention Fun Asia and enjoy 10% discount.
4: Utha le re deva, utha le re baba, ye boxes utha le re.
5: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं.
4: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
5: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
4: इंडिया तक.
5: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज.
0: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
6: भूख लगी
7: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
8: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी. ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
0: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी.
5: 90s के गाने सिर्फ हिट्स नहीं, हमारी यादें हैं. और अब वो लेजेंडरी आवाज आ रही है लाइव टू प्लेनो, वो आवाज जिसने 90s को अनफॉरगेटेबल बना दिया. कुमार सानू लाइव इन कॉन्सर्ट, अनफॉरगेटेबल 90s, सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो. लिमिटेड सीट्स, फ्री पार्किंग एंड मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल. टिकट्स एट eventbrite.com. मोर इन्फो 214-869-2668. प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्च्यून ग्रुप.
9: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो.

0: jen, G-E-N, jen, speakersacademy.com. या फिर आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 214-724-2867. Once again, that number is 214-724-2867. So give your child the confidence of leading tomorrow, starting today with Next Gen Speakers Academy. And with this, we are going to break ki taraf, but we are celebrating. Patrick told me his mom is celebrating her birthday today, Sunaina. So I'm going to play something beautiful for Sunaina. And along with that, hamare जो है आयान, छोटे से आयान, वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो आयान, दिस इज गोइंग आउट फ्रॉम योर डैड, योर मॉम एंड योर सिस्टर दीबा टू यू. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू एंड टू एवरीवन हु इज सेलिब्रेटिंग. व्हेन वी कम बैक फ्रॉम द ब्रेक, आई विल प्ले अ सॉन्ग.
1: आर यू लुकिंग फॉर अ स्मार्टर अप्रोच टू रिड्यूसिंग टैक्सेस व्हाइल बिल्डिंग एंड प्रिजर्विंग वेल्थ? माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म लेड बाय सीपीए सुधीर पाई, ऑफर्स एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, टैक्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, रियल एस्टेट स्ट्रेटजीज, AI एंड लेट स्टेज प्री IPO अपॉर्चुनिटीज एंड अदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. लर्न हाउ अ पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी कैन हेल्प यू परस्यू योर फाइनेंशियल गोल्स. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: Yaar, modern mangalsutra dhoonte-dhoonte thak gayi hoon.
4: To CaratLane chalo, they now have a store in Frisco and the best collection of modern mangalsutras.
3: Seriously? Kaisa collection hai?
4: Minimal, diamond, elegant, everyday styles. You will probably spend more time choosing than shopping.
5: Find the Mangalsutra that matches your style at CaratLane, home to the largest collection of modern Mangalsutras. CaratLane, now open in Frisco next to Tanishq.
6: Mere kal wale khane mein dosa, aane wale khane mein dosa.
7: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
8: फैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विद फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
9: विजिट फैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन.
10: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
12: अजी सुनते हो?
13: अजी नहीं, एजी सुनते हैं.
14: The OG of tax planning, AG Fintax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM only on Funasia Radio.
15: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस.
16: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
15: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
16: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
15: ये क्या होता?
16: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
17: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन. Available.
18: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर.
19: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
17: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
19: Now, sir, or price?
17: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
9: Main hero in hoon.
20: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
21: कितने आदमी थे?
22: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: भाग जा,
1: चल फोट भाग जा, मेरे पीछे क्यों पड़ा है, वो भी तो सोया पड़ा है।
0: ए, ए विलन बादशाह, ये क्या करता है?
1: अरे कसरत करता है, देखता नहीं क्या तू?

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Jaane wo kaun sa desh jahan tum chale gaye.
8: आपका डॉक्टर गया लॉन्ग वेकेशन पर, कोई बात नहीं. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के मल्टीपल लोकेशंस, एक्सपीरियंस फिजिशियंस के साथ क्वालिटी केयर कभी नहीं रुकती. और सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं, आज ही अपना एनुअल फिजिकल शेड्यूल कीजिए. रेगुलर स्क्रीनिंग्स के साथ डिप्रेशन और एंजाइटी स्क्रीनिंग, अल्कोहल हेल्थ स्क्रीनिंग, फाइब्रो स्कैन, विटामिन B12 टेस्टिंग और बहुत कुछ. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हेल्थ केयर दैट नेवर टेक्स अ वेकेशन.
9: कॉल 214-666-6259 टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स टुडे.
10: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड. अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फाइनेंशियल रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस.
9: चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट डुरांत, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर. मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. प्लीज प्ले रिस्पांसिबली.
11: होचो
12: होको
11: ओचो
12: होको
11: ओचो
12: इट्स होको.
13: अरे बस भी करो यार.
12: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है.
14: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है. एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा.
9: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में. वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिएड केटरिंग ऑप्शंस. टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
16: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे.
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
15: सच में सब संभाल लेंगे.
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनोल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
17: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
18: क्योंकि Sal's Hot Chicken भी तीन पे पहुंच गया.
9: Plano, Richardson, and now at a brand new location. Sal's Hot Chicken, coming soon.
19: तारा वो तारा हर तारा.
9: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
20: जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
21: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त थाना उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा, ईस्ट प्लेनो. विजिट सिग्नेचर क्विजिन. हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
0: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
0: क्या मतलब?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
0: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
0: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
22: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
23: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
24: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
23: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
25: तुमसे मिलके दिल का है.
24: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
23: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360-SHOWS. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
26: The Dill of Dallas. Heart to Heart. Fun.

0: You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with us this afternoon. Kids Junction चल रहा है जी, 4:30 तक मैं लेने वाली हूँ आज की रिक्वेस्ट. वैसे 4 से 4:30 हम करते हैं चिल पार्टी राइट हेयर ऑन किड्स जंक्शन. आज हमारी चिल पार्टी होगी 4:30 till 5 PM. आर चिल पार्टी को होस्ट विल ज्वाइन अस इन द स्टूडियो फ्रॉम 4:30 till 5 PM. आगे बढ़ रहे हैं हम. मैं हूँ किरण आपके साथ एंड बच्चा पार्टी आई एम स्टिल टेकिंग योर कॉल्स एंड राइट नाउ आई हैव अ गिव अवे दैट यू कैन विन फॉर योर मॉम एंड डैड. दिस गिव अवे इज ब्रॉट टू यू बाय मिराज लाउंज. इट इज अ $20 गिफ्ट का $20 ऑफ ऑन your dine-in bill of $50 or more. Miraj Lounge is located on McKinney Ranch Parkway and they have, you know, for the parents, guys, that they have premium hookahs, delicious bites, handcrafted cocktails. They have live music, exciting DJ nights. Ladies night bhi hoti hai, college night bhi hoti hai. Happy hour unka chalta hai Monday through Thursday, 11 a.m. till 5 p.m. with hookahs at $24.99 and shots for only $4.99. So, guys, you have to give me a call and tell me what is, humne ye sawal poocha, I'm going to ask it again. What is that one thing that you can eat every day without getting tired? You have to give me a call. 972-235-5555. Share your favorite dish with me. What is it that you can eat any day without getting tired? And then I'm going to pick two winners amongst you. I have two giveaways, which is $20 off your dine-in bill of $50 or more. 972-235-5555.
1: This is the tribute to Talaiwa.

ओके, थैंक यू फॉर ऑल योर कॉल्स एंड टेलिंग मी योर फेवरेट डिशेस. एंड आज के जो हमारे आई हैड टू पिक टू लकी विनर्स, सो आई एम गोइंग टू सी स्ट्रेट अवे अनाउंस द नेम्स. वेदांत एंड सारा, दीज टू आर आर लकी विनर्स. वन लव्स टू ईट एग्स, स्पेशली स्क्रैम्बल्ड एग्स, एंड वन लव्स टू ईट चिपोटले. सो to each their own, jiski jo choice. I love both of these things, so I'm going to, guys, I love eating chipotle as well as eggs anyway, anytime. So Vedant and Sara, give us 2 days to send your name and number to the restaurant, and then you will have about 7 days to go to Mirage Lounge and avail your $20 off with a minimum dine-in bill of $50 or more. This is Kids Junction right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran.

और इस रक्षाबंधन क्या आ रहा है, बहुत स्पेशल फन एशिया रेडियो और चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट इन ड्यूरेंट सुनना चाहते हैं आपकी अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर सिबलिंग. और इससे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट द चांस ऑफ विनिंग एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंस, एंटरटेनमेंट, रिसॉर्ट स्टे, एज वेल एज यू विल गेट अ चांस ऑफ एंटरिंग इन टू द ग्रैंड प्राइज विन, विच इज एन अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रियूनियन वीकेंड एट चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट इन ड्यूरेंट. सो आपको क्या करना है, आपको एक मिनट की अपनी वॉइस नोट रिकॉर्ड करनी है टेलिंग अबाउट योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर सिबलिंग, एंड यू हैव टू व्हाट्सएप इट एट दिस नंबर 214-837-7147. 214-837-7147 इज द नंबर. व्हाट्सएप योर मेमोरी ऑन दिस 60-second रिकॉर्डिंग एंड देन यू विल एंटर ऑटोमेटिकली इनटू दीज प्राइज विन्स. सो कंप्लीट डिटेल्स के लिए, कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए आप फन एशिया रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस को कनेक्ट कीजिए. चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, दिस इज वेयर यू मेक अनफॉरगेटेबल मेमोरीज. यू मस्ट बी 21 ईयर्स और ओल्डर टू पार्टिसिपेट. Terms and conditions apply. So please be mindful of that and please play responsibly.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338 myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing.

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
2: लिया.
1: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
2: नहीं आया.
1: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
3: Visit www.senadainc.com today.
4: The biggest gift you can give your child is the gift of confidence. I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
5: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
6: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया.
0: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन. साल्स हॉट चिकन कमिंग सून.
7: जिंदगी एक रंगमंच है
8: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल. रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो. दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन. फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग, एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन. कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com.
9: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
10: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
0: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR. द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.
11: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

Hey,

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

0: I love the plan. Thank God it's Friday with me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart. Thank God it's Friday, दोस्तों 104.9 FM फनी जॉडी सुन रहे हैं मेरे साथ, मैं आपकी होस्ट नवनीता रहूंगी 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे में, और दिल से निकल रही है ये बात कि आ गया, देखो तो देखते ही देखते फ्राइडे आ चुका है. एंड थैंक गॉड ये शाम बहुत खास है, एंड गर्मी थोड़ी सी अब जाने को है और चली ही जाएगी. थैंक गॉड बच्चों के स्कूल खुल गए तो हम नहीं बोल सकते, बिकॉज इट ऑलवेज फील्स सैड व्हेन द किड्स आर गोइंग बैक टू स्कूल. अ लॉट ऑफ मामास फील ओ माय गॉड फाइनली थोड़ी सी रूटीन आएगी लाइफ में, बट फिर भी एक भेजना एक फीलिंग होता है कि यार स्कूल खुल गया, फिर सुबह उठना पड़ेगा और फिर बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा. बट फिर हमारे पास थैंक गॉड इस फ्राइडे आ जाता है, जब हम वेट करते हैं इस फ्राइडे की शाम का, दैट वी कैन एन्जॉय द सैटरडे एंड संडे. और हमारे ऑफिसेज में तो हमारे को होता ही है मंडे ब्लूज के साथ शुरू होता है, कलर्स जो भी बदले, बट फाइनली फ्राइडे को थैंक गॉड इट्स फ्राइडे का ही मूड होता है. सो मैं आ जाती हूँ थैंक गॉड इट्स फ्राइडे लेकर अपना शो 5 से 8, एंड थैंक यू टू किरण फॉर दैट अमेजिंग अमेजिंग शो जो वो करती हैं, और चिल्लड़ पार्टी होती है उनके साथ ऑन फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे स्कूल के बाद वो चिल्लड़ पार्टी हमारे स्टूडियो में आ सकती है, एंड वो भी कह सकती है थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. चलिए उसी चिल्ड्रन पार्टी से ये पहला वाला गाना, इट इज़ मेरे हीरो हैं वो, हैवान फिल्म है सैफ अली खान की, प्रीतम का म्यूजिक, शान की आवाज़, जावेद अख्तर के बोल. चलिए सुनते हैं, ब्रांड न्यू गाना हैज जस्ट ड्रॉप्ड.
1: लेकिन पहला पहला कदम जब चलते हैं हम, उंगली थामे कोई, लिख रहे हो ना, यूं मेहरबा प्यार का आसमां, कौन है वो यहाँ बता दे कोई, तुम भी गाओ.

0: देखे। At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
1: Dad, प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ हैं?
2: लैपटॉप में।
1: इन्वेस्टमेंट?
2: गूगल ड्राइव।
1: इंश्योरेंस? पासवर्ड्स?
2: बेटा डोंट वरी, मुझे सब पता है।
1: डैड, वही तो प्रॉब्लम है, सिर्फ आपको पता है।
3: योर फैमिली शुडंट हैव टू सर्च फॉर आंसर्स व्हेन यू आर नॉट देयर टू गिव देम।
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद एनआरआई वेल्थ। विद प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग, प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव बिल्ट एंड गिव योर फैमिली क्लैरिटी एंड कंट्रोल।
3: कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799, और विजिट nriwealth.com for a free 15-minute consultation. NRI Wealth. Don't leave a mess. Leave a plan.
5: Floors clean.
6: Check.
5: Windows clean.
6: Check.
5: Kitchen clean.
6: Check.
5: Air ducts clean.
6: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
7: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम clean कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-25.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, ये बॉक्सेस उठा ले रे।
11: अरे, बॉक्सेस उठाने के लिए बाबा को नहीं, स्मार्ट लोग SFL Worldwide को बुलाते हैं।
10: अच्छा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स भेजने हो तो?
11: डॉक्यूमेंट्स, बॉक्सेस, पूरा घर रिलोकेशन, इवन कार ट्रांसपोर्ट
10: इंडिया तक।
11: सिर्फ इंडिया नहीं, विद इन USA और Worldwide, कंप्लीट डोर टू डोर शिपिंग एंड मूविंग सर्विसेज।
9: SFL Worldwide, घर हो, गाड़ी हो या जिंदगी का नेक्स्ट मूव, सब सेफली पहुँचता है। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
12: अरे यार, घर मिल गया।
13: घर तो देख रहा हूँ, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
9: इसलिए कॉल करो अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। अजय इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर। वो सिर्फ घर नहीं दिखाते, हर प्रॉपर्टी का ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, प्रोज एंड कॉन्स समझाते हैं, बेस्ट प्राइस नेगोशिएट करते हैं, बिल्डर इंसेंटिव दिलवाते हैं और क्लोजिंग पर कैशबैक भी।
13: सीरियसली, अच्छे सर्विस भी और कैशबैक भी?
9: बिल्कुल, विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई सो मेनी पीपल आर रेविंग अबाउट him.
14: Hello, Weekend Lunch Emergency Helpline. How may I help you?
15: Hello, mere relatives aa rahe hain. Everyone's asking lunch mein kya hai?
14: Fikar not. We have the perfect solution.
9: The Flavor Lounge in Frisco brings you its all new weekend lunch buffet. From flavorful Indian favorites to live counters and chef special, 25 plus dishes, welcome drink, chaat, appetizers, main course and dessert. Saturday to Sunday, 12 p.m. to 3 p.m. This weekend, let the Flavor Lounge do the cooking.
16: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
17: डैलस, तैयार हो जाइए एक शानदार जश्न के लिए।
18: पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास प्रेजेंट्स कायद मेला 2026, अ ट्रिब्यूट टू आवर हेरिटेज एंड अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल। एंजॉय लाइव म्यूजिक, डिलीशियस फूड, शॉपिंग, कल्चरल एक्टिविटीज एंड फैमिली फन फॉर एवरी एज।
19: लाइव परफॉर्मेंस बाय रागा बॉयज,
18: सैटरडे ऑगस्ट 22nd फ्रॉम 3 PM टू 11:45 PM एट साउथ फोर्क रैंच इन पार्कर, टेक्सास। Doors open at 2 p.m. Entry or parking bilkul free. Kayad Mela 2026.
9: Media partner, Fun Asia Network.
20: यार कुछ तो पढ़ी लिखी होगी ना ये गर्मी।
5: 100% लगता है। नहीं तो इतनी सारी डिग्रियां लेकर कौन घूमता है यार, डिग्रियां नीचे नहीं आ रहे हैं। टू मच बहुत गर्मी है। और बाहर अगर आप हैं, गाड़ी से निकल चुके हैं, थोड़ी देर लगता है कि नहीं ऐसी बुरी हालत नहीं है। 2 सेकंड के बाद ही समझ आ जाता है कि बुरी नहीं, बुरी से बदतर है ये यार, व्हाट इज़ हैपनिंग। सुन रहे हैं 104.9 FM फनी जा रेडियो। ठंडक रखिए गाड़ी के अंदर, हमारी गाने सुनते हुए अगर आप बड़े चले जा रहे हैं, और एयर कंडीशनिंग ऑन तो होएगा ही।

से बदतर है ये यार, व्हाट इज हैपनिंग। सुन रहे हैं 104.9 एफएम फनी जा रेडियो, ठंडक रखिए गाड़ी के अंदर, हमारी गाने सुनते हुए अगर आप बड़े चले जा रहे हैं, और एयर कंडीशनिंग ऑन तो होएगा ही, बाहर जो भी चल रहा हो उसे बाहर रहने दीजिए। घर में क्यों लाते हैं हम, बाहर के टेंशन भी घर नहीं लाते। बाहर के लोग घर आते हैं तो मेहमान जैसे आते हैं, हम तो इस गर्मी को घर में मेहमान की तरह भी नहीं बुलाते। डोंट वरी, लेट इट बी आउट एंड एंजॉय दी सॉन्ग्स। ये ब्रांड न्यू गाना अगेन, इट हैज़ जस्ट ड्रॉप्ड, इट इज़ अ ब्रांड न्यू फिल्म जो आने वाली है, उंदी बुंदी प्रेम कीटाणु। कुछ नहीं समझ आ रहा ना, गाना सुनते हैं।

0: दिस इज सच अ क्रेजी सॉन्ग. सुन रहे हैं 104.9 FM फनीचर रेडियो विद लिटिल बिट ऑफ क्रेजीनेस. तो चलता है. और क्रेजीनेस के साथ किसी की ये क्रेजीनेस भी होती है. गुलजार साहब कहते हैं, एक मैं हूँ जो समझ न सका खुद को आज तक. एक मैं हूँ जो समझ न सका खुद को आज तक. और एक लोग हैं जो मुझे जाने क्या क्या समझ लेते हैं. आप क्या इस गलत फहमी के शिकार हैं जो जब लोग आपको कुछ भी समझ लेते हैं और आप ही नहीं समझ पाते खुद को? बात तो गहरी है. डूबिएगा मत, डोंट वरी, मैं आपको डूबने दूंगी नहीं. यहाँ पर बहुत सारे अमेजिंग गाने लाइन अप हैं, सो वही चलते हैं. चलिए
1: अरे वाह.

कुली तुझे मिर्ची लगी, दिस वॉज द वरुण धवन सॉन्ग एक जमाने में। तो ये कुली का जमाना एक्चुअली अब चला जा चुका है। पोर्टर्स हुआ करते थे, अब हम ही पोर्टर हैं, हम ही व्हील्स वाले बक्से लेकर घूमते हैं। एंड वी ओनली डोंट नो हाउ टू गेट द हेल्प फ्रॉम, बिकॉज सारा काम खुद के ऊपर जो हम लोगों ने ले लिया है। एंड लाइफ हैज़ बिकम मी एंड माई सेल्फ, द पोर्टर्स, जॉब्स एंड द अदर थिंग्स विच वी स्टार्ट, वी हैव स्टार्टेड ऑफ मेकिंग इट लाइक सेल्फ डिपेंडेंट। तो इतने सेल्फ डिपेंडेंट होते होते वो जॉब्स तो चले गए, लेकिन हम भी सिर्फ काम ही करते रह गए हर समय। आपको ये बात सच लगती है कि नहीं? सो वी आर सेइंग ए आई इज़ कमिंग अ लॉट। कमिंग क्या, वो तो आ ही चुका है। हमने कंप्यूटर्स निकाल लिए, बहुत कुछ हो गया। इवन द रोबोटिक थिंग्स दैट वी हैव एट होम, हमारे डिश वॉशेज हैं, हमारे स्मार्ट अप्लायंसेस हैं, जिसकी वजह से काम सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है। बट डोंट यू थिंक, यस हमारी डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई है लोगों की तरफ, लेकिन हम सुबह से शाम बस काम में ही फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। ये मशीन्स वगैरह हमने तो रख लिया, लेकिन उसके ऊपर काम हम ही को करना पड़ता है। सो टेल मी, वॉट इज़ योर टेक ऑन इट? 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, फ़ोन उठाए, नंबर दबाइए, मुझे बताइए कि आपको लगता है ये सारी सुविधाएं आपके लिए सुविधाएं हो गई हैं, या फिर इट हैज़ एक्चुअली क्रिएटेड मोर वर्क फॉर एन इंडिविजुअल? 9722355555 है स्टूडियो का नंबर, दैट्स इट, फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए।

0: सुन रहे हैं 104.9 FM फनीजर रेडियो. लेट मी टेक माई कॉलर ऑन एयर. गुड इवनिंग फनीजर रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. क्या है आपका विचार इन ऑल ऑफ दिस दैट्स दैट आई सेड?
1: या आई थिंक यू नो कंपैरेटिवली आई थिंक द वुमेन आर मोर लिबर सपोजिटली मोर लिबरेटेड हियर इन द वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूरोप एंड द नॉर्थ अमेरिकास. The women supposedly have more rights, are more liberated. But I notice, like in the other countries, like whether it be India or Africa or Middle East, there's so much help for the women over there. You know, like there's somebody to cook for you, somebody to clean. They have kids, someone to take the kids to the schools and bring them back. And even after the schools, they have help with homework. Like they're taking some tough
0: courses, teachers,
1: physics and all that stuff. They have a tutor. So, and then there's nannies also available if you're a working mom, you know, to help with kids and all that. So, yahan par, I think, hami dhobi and hami porter.
0: Porter.
1: Whatever you want to call it, you know.
0: Yeah.
1: So even though we're liberated, I feel like we end the women in Europe and North America, I think.
0: It's so sad, but that's so true, that liberation, going out and working, we are doing full-time jobs as well, apart from all the other things that needs to be done. And yes, in America, the men are also equally working hard and helping out. It's not, you're not saying that they are not, but the workload for a single person has become so much more. That's what you're saying.
1: Yeah,
0: right?
1: Like in Europe, the divorce rate is like 85%, some countries like Spain and stuff like that. Divorce rate is
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
6: When life feels too loud, it's time to listen within. Join Miracle Rhythms, a 4-day meditation, bodywork and movement retreat by Osho Universal at Osho Kevalya Dham in Denison.
7: My name is Ritika Anand, sannyas name Ma Prem Jaya. I am coming to Dallas on the 27th, 28th and 29th of August.
6: Experience meditation, breath work, intuitive movement, music and inner healing. Limited to just 25 participants. Book now at oshouniversal.org or call 214-395-6757.
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
9: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
10: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
11: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
12: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
13: क्योंकि Sal's Hot Chicken भी तीन पे पहुंच गया।
14: Plano Richardson and now at a brand new location. Sal's Hot Chicken coming soon.
15: तारा वो तारा हर तारा।
16: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है। तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
17: पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिख दिया था.
18: साइन मिलना मुश्किल है, लेकिन प्लेनो में जबरदस्त खाना, उसका सिग्नेचर मिल गया. सिग्नेचर क्विजिन इन प्लेनो, फेमस निहारी, सिजलिंग ग्रिल्स, क्रिस्पी फ्राइड चिकन और माउथ वाटरिंग पराठा रोल्स. और कोई भी सेलिब्रेशन हो तो बैंकवेट सर्विसेज भी. लोकेटेड एट स्प्रिंग क्रीक एंड आलमा ईस्ट प्लेनो. विजिट signaturecuisine.net. सिग्नेचर क्विजिन, हर टेस्ट पर अपना सिग्नेचर.
19: कुछ आवाजें सिर्फ एंटरटेन करती हैं और एक आवाज आपकी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाती है.
20: वही आवाज लेकर आ रही है एक रेवोल्यूशन.
21: 360 शोज ट्रू पेमेंट प्रेजेंट्स सोनू निगम लाइव इन डैलस.
22: तुमसे मिलके दिल का है.
20: सैटरडे सितंबर 26th 8:30 PM ऑनवर्ड्स एट द क्रेडिट यूनियन ऑफ टेक्सास इवेंट सेंटर एलन.
21: टिकट्स अवेलेबल एट टिकट मास्टर. फॉर मोर इन्फो कॉल 855-360 शोज. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया नेटवर्क.
0: Welcome back, friends. How are you doing on this amazing, amazing Friday evening? मैं आपकी होस्ट हूँ नवनीता पांसियात, straight from the heart on this amazing show. Thank God it's Friday. And yes, thank God, and नए movies आ जाते हैं जैसे ही Friday आए. और अभी आवारापन 2 is really creating waves all over India, जहाँ पर it has been really accepted very well. और आवारा 2 has been released. और वो चल रही है आपके थिएटर्स में, नज़दीकी थिएटर्स में. एंड दैट इज़ ब्रॉट टू यू बाय फन एशिया फिल्म्स. तो ये गाना फ्रॉम आवारा फन. इसके बाद यू नो बहुत सारे जो कुछ कुछ गाने हैं, कुछ कुछ OTTs लाइफ में आ गई हैं हमारी, जहाँ पर थिएटर से निकाल के हमें अपने ही यू नो अपने ही लिविंग रूम में बिठा दिया है बड़े बड़े TV के सामने. Yes, we'll talk about some on that as well.

आप और अपन टू इमरान हाशमी वापस से आ गए हैं अपनी इस किरदार में. व्हेन ही स्टार्टेड विद आवारापन द फर्स्ट वन एंड दिस रिलीज ऑन 14th of August. बहुत ड्रामा, बहुत रोमांस. नितिन कक्कर है जिन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है एंड इट हैज़ बीन रियली एक्सेप्टेड वेरी वेरी वेल. एंड दैट इज़ द सॉन्ग दैट यू हर्ड फ्रॉम आवारापन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं. हम लोगों ने एक बात शुरू की थी कि लाइफ में वी हैव स्टार्टेड डूइंग सो मच ऑफ यू नो, कहते हैं ना नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. और बहुत सारी इन्वेंशंस हो गई हैं जिसकी वजह से स्मार्टफोन्स आ गए हैं, स्मार्ट अप्लायंसेस आ गए हैं जो हमारा काम कम कर देते हैं, लाइक डिश वॉशर एंड इवन यू नो लॉन्ड्री एट्सेट्रा. जब हमें लोगों की ज़रूरत होती थी हु इज़ टू कम एंड हेल्प अस, एंड इफ़ वी डेंट हैव हेल्पर्स वी हैड टू डू इट ऑन आस बाई आर सेल्स, बट इट यूज़ टू गेट वेरी टायरिंग. बट फिर हम इतना कुछ नहीं करते थे. इफ़ यू आर डूइंग ऑल दैट एट होम देन यू आर नॉट गोइंग आउट टू वर्क, बट नाउ यू आर ऑल्सो गोइंग आउट टू वर्क. एंड बिकॉज ऑल दीज सहूलियत जिसे कहते हैं, उन्होंने हमें सहूलियत दी है कि नहीं दी है, दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन. तो अब AI वुड गिव अस मोर सहूलियत दैट वी आर लिसनिंग हियरिंग, और हो गई है. हमें हर कुछ सोच के इवन टाइपिंग करना होता है, किसी को लेटर भेजना होता है, सब तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं. लेकिन बड़े बड़े जो यू नो हमारे पास चीज़ें हैं, जो भी वर्क आप जिसके ऊपर भी काम कर रहे हैं हमारे पास आ चुके हैं, उसको भी हम AI से मिनटों में we can get big reports very easily deciphered through AI. So what does that mean? Does that actually mean that ek hi insaan ab char char insano ka kaam aur le lega? So what are we getting into? Hum pehle ghar mein ladies ghar pe kaam kar rahi hain, the man is going out, we have helpers, then we try and innovate, and then with that innovation we are doing ghar ka kaam, bahar ka kaam, and innovation se hame thodi si sahuliyat ho rahi hai. Ab hamara aur ek innovation hai jahan se hamare sare jo office ke kaam hai kam ho ja rahe hain. So yeah, four people's job one person is going to do, right? That is what it is getting to. So your 24 hours is not yours. If I tell you, it is now getting taken up by somebody else, but your time, आपको सहूलियत लग रही है ये सब नए इन्वेंशन से, तो that is something to rethink कि वो सहूलियत है या और मशरूफियत. Tell me, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. आप क्या सोचते हैं?

0: ये गाना पहचाने क्या आप? आपने OTT पर ये बहुत ही अमेजिंग सीरीज देखी क्या? इट इज कॉल्ड मुसाफिर कफे. ओ माय गॉड, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट मुसाफिर कफे. इसमें विक्रांत मासे हैं, वेदिका और महिमा. वेरी वेरी ब्यूटिफुली मेड सीरीज. बहुत कम है, आई थिंक 6 ही एपिसोड्स हैं. एंड इट इज वेरी गुड स्टोरी लाइन है. यू नो, कभी बीच में लगने लगा था, आजकल तो स्टोरी लाइन ही नहीं बन रही है, सब ग्रीन स्क्रीन पे क्या क्या बना रहे हैं. कहाँ गया वो इश्क, कहाँ गई रोमांस, कहाँ गए हमारे अमेजिंग स्टोरीज जिससे हम बनते हैं, इंसान की इंसानियत समझ आती है. एंड दैट इज़ मुसाफिर कफे राइट नाउ रनिंग इन नेटफ्लिक्स. आप ट्रस्ट मी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप बिंज वॉच कर लोगे इस वीकेंड पर. अगर आपने स्टार्ट किया है, ये द सॉन्ग वॉज फ्रॉम देयर एंड अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है. देयर इज़ अ सेकेंड यू नो सीजन दैट इज़ गोइंग टू बी आउट. और बहुत चर्चे हैं ऑनलाइन कि किसे ये दो गर्ल्स इस में हैं. वन इज़ प्रीति एंड द अदर इज़ सुधा. तो जो विक्रांत मासे हैं वो प्रीति के प्यार में होने चाहिए, प्यार में नहीं, उन्हें साथ होना चाहिए, या फिर सुधा. आई विल नॉट गिव अप द स्टोरी, आई विल नॉट गिव अप एनी थिंग एल्स अबाउट द प्लॉट, आई विल नॉट गिव अप एनी थिंग दैट विल स्पॉयल द फीलिंग. बट ये कहानी आप जब शुरुआत करेंगे तभी से पता चल जाएगा वो दो लड़कियां हैं, हु इज़ विक्रांत मासे विथ. सो यू विल नॉट, आई एम नॉट टेलिंग यू द स्टोरी, दिस इज़, इट स्टार्ट्स विथ दिस, सो आई एम नॉट स्पॉयलिंग इट, दिस नॉट अ स्पॉयलर, बट इट्स सुपर डुपर वेरी वेरी नाइस. अगर आपने नहीं देखी है तो आई एम नॉट सेलिंग इट, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम एक दिल को छूने वाली यू नो स्टोरी लाइन आई है. अदरवाइज समथिंग इज वॉज लॉस्ट इन इंसानियत, दैट्स वॉट आई थिंक. पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आप कहीं मत जाएगा. ब्रेक के बाद हम आते हैं. मुझे मनोज साहब ने कॉल किया था और मुझे बताया था, जो हम लोगों ने बात करना शुरू की थी, कि सहूलियत होती जा रही है ऑफ ऑल द आविष्कार जो हो रहा है, या फिर हम किसी गुलामी में पड़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो हमारे कंप्यूटर्स हों, चाहे वो AI हो अब, या फिर यू नो ऑल द स्मार्ट अप्लायंसेस दैट वी यूज. चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
9: Kaun sa?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
9: अरे सारे तो सेम है.
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
9: ओ हाँ, ये तो अलग है.
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: इस रक्षाबंधन चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड के साथ सेलिब्रेट कीजिए वो रिश्ता जिसमें नोकझोंक भी है, दोस्ती भी एंड ए लाइफ टाइम ऑफ अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। अपने भाई या बहन के साथ जुड़ी सबसे यादगार मेमोरी हमें 1 मिनट वॉइस नोट में भेजिए एंड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंसेस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीकेंड एट चौकटा कैसीनो एंड रिसोर्ट ड्यूरांड। अपनी स्टोरी व्हाट्सएप कीजिए 214-837-7147 पर या कॉन्टेस्ट डिटेल्स के लिए विजिट कीजिए फनेशा रेडियो के सोशल मीडिया पेजेस।
10: चौक टॉक कैसीनो एंड रिसॉर्ट डुरांट, वेयर अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। मस्ट बी 21 और ओल्डर टू पार्टिसिपेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली।
12: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 926641।
13: सुनो, कल बहुत काम है। पहले कुछ पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, केटरिंग सर्विसेज, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान। एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
10: फूडिस्तान इन ऑबरी। मेंशन फन एशिया एंड एंजॉय 10% डिस्काउंट।

0: Lawson Travels Cruises. Honeymoons, custom family trips, stress-free travel every mile. Call 214-631-2458 today.
1: जिंदगी एक रंगमंच है
2: और प्रॉपर्टी ढूंढना बस इंटरवल। रियल क्लाइमैक्स वो है जब क्लोजिंग स्मूथ हो, पेपर वर्क क्लियर हो और आपके कीज हाथ में हो। दैट्स वेयर फर्स्ट यूनाइटेड टेक्सास टाइटल स्टेप्स इन। फ्रॉम टाइटल टू क्लोजिंग एक्सपीरियंस अ स्मूथ, सिक्योर एंड सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन। कॉल 972-897-1530 और कनेक्ट टू info@firstunitedtexastitle.com।
3: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
4: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
3: कैसे?
4: पेज 3 ईटरी?
3: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
4: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोल्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
3: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
0: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
5: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
6: वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका 104.9 FM फनीजर रेडियो पर, 5 स्ट्रीट फ्रॉम द हार्ट दिस शो। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे पर आपका बहुत बहुत स्वागत।

थैंक गॉड इज फ्राइडे फन एशिया के इतने सारे रेडियो स्टेशंस एंड थैंक गॉड एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू गिव ऑल ऑफ अस फन एशिया 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो तो आप सुन ही रहे हैं बट वी हैव रेडियो संगम विद अ तेलुगु रेडियो स्टेशन वणक्कम एफएम विच इज़ अ तमिल रेडियो स्टेशन अपना पंजाब आ पंजाबी रेडियो स्टेशन रेडियो कारवा एंड अगेन हिंदी एंड दिस इज making all of our listeners love it and also be tuned in to different languages as well which is super duper shukriya thank you dhanyawad tune karne ke liye aur hamara itna saath dene ke liye kisi ne kaha hai kuch yaadein kitabon mein rakhe phoolon jaisi hoti hain phoolon kuch yaadein kitabon mein rakhe phoolon jaisi hoti hai sook jati hai magar महकती रहती है एंड दोज याद आर द मोस्ट ब्यूटिफुल यादें वो यादें यादों में ही रहे सूख जाए साथ न हो पर महकती रहे दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन दिस वन मुसाफिर कफे की बात कर रही थी ना मैं OTT पर देखिएगा जरूर

बातें कुछ अनकहीं सी, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग सुन रहे हैं 104.9 FM फन एशिया रेडियो। और ये शाम इसलिए भी खास है क्योंकि आप थैंक गॉड इट्स फ्राइडे खुद महसूस भी कर रहे हैं और अभी थैंक गॉड इट्स फ्राइडे सुन भी रहे हैं। बताएं आपको, आपकी जो ये सपनों वाली बात है ना, उसमें अगर आपके सपनों में घर आते हैं तो वो सपनों वाले घर आपके दिल के आपके नज़दीक आ सकते हैं विद ड्रीम होम मोर्गेज। 1998 से ड्रीम होम मोर्गेज बहुत सारी फैमिलीज को मदद कर रहा है अक्रॉस द कंट्री, जो होम ओनरशिप के सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं विद पर्सनलाइज मोर्गेज सॉल्यूशंस एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस। लाइसेंस्ड है ये 50 स्टेट्स में हर जगह एंड द एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस टेलर टू योर नीड्स। या फिर आप बाय कर रहे हैं फर्स्ट होम, अपग्रेड कर रहे हैं या रीफाइनेंस कर रहे हैं, स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टुडे। फोन उठाइए, नंबर दबाइए 9722455626 या फिर विजिट कीजिए dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स। ड्रीम होम मॉर्गेज, आपका वो अमेजिंग सपना, दे मेक इट कम ट्रू, दे मेक इट हैपन। 104.9 FM फन एशिया रेडियो पर ये एक और फिल्म है जो बटवारा 1947, तो लास्ट हफ्ते आवारापन 2 रिलीज़ हुई एंड बटवारा 1947 राजकुमार संतोषी की फिल्म विद सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी, अली फजल, अभिमन्यु सिंह, ये भी रिलीज़ हुई। तो उस फिल्म का ये गाना आपके लिए।

दिस वॉज फ्रॉम द फिल्म बटवारा। दोस्तों एक कहानी बताती हूँ आपको और उसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी फॉर लेट्स डू अ गिव अवे। ओके एंड दिस गिव अवे कम्स फ्रॉम फन पिज्जा किचन एंड दे हैव लॉन्च अ ब्रांड न्यू मैक्सिकन इंस्पायर्ड पिज्जा लाइनअप एंड दीज आर जस्ट पिज्जाज दे आर फुल फ्लेवर फिएस्टा फ्रॉम फ्रेश फिएस्टा वेजी टू फ्यूरी पोलो लोको एंड सी फूड पैक सेना कमरा एवरी बाइट इज बोल्ड एक्साइटिंग एंड मेड टू इम्प्रेस। हेड ओवर टू फन पिज्जा किचन एंड टेस्ट द न्यू ऑब्सेशन फॉर योरसेल्फ। नए फ्लेवर्स हैं, नया खाना है एट फन पिज्जा किचन। तो कहानी मेरी है ये, सोचिए एक दिन सुबह सुबह आप उठे और आप अपना बैंक अकाउंट आपने चेक किया और वहाँ पर कहीं से $10 million एक्सीडेंटली डिपॉजिट हुए हुए पड़े हैं आपके। आप फ़ोन करते हो बैंक को, इन्वेस्टिगेट करते हो, टेल यू नो से अच्छा ठीक है आपके ऊपर मैं ये नहीं डालती हूँ। से एक लेडी है, अ वुमन वेक्स अप वन मॉर्निंग एंड चेक्स हर बैंक अकाउंट, उसमें $10 million एक्सीडेंटली डिपॉजिट हो जाता है। क्योंकि इसमें आपको सहूलियत होगी मुझे आंसर देने में, बिकॉज इट्स नॉट यू आर टॉकिंग फॉर दिस वुमन। ओके सो शी कॉल्स द बैंक, दे इन्वेस्टिगेट एंड टेल हर या इट अपीयर्स कि कोई तो मिस्टेक हो गई है, तो आप ना पैसों को हाथ मत लगाना, डोंट टच द मनी, लेट द मनी बी देयर। पर अभी ये ट्विस्ट है, एक हफ्ता बीत जाता है, एक महीना बीत जाता है, 6 महीने बीत जाते हैं, वो पैसा अभी तक वहाँ है। किसी ने कॉल नहीं किया, बैंक से फ़ोन नहीं आया, nobody said anything, but the money is still there. Meanwhile, she's struggling financially. उनके पेरेंट्स को हेल्प चाहिए, बीमार हैं, they really need some money. Her mortgage is overdue. And that 10 million is staring at her every single morning. 6 महीने हो गए हैं, बैंक का कोई फ़ोन नहीं और उसकी इतनी परेशानियाँ, लेकिन वो कुछ उसको हाथ भी नहीं लगा सकती। Then एक दिन she discovers that if she transfers just 50,000, nobody may notice immediately. आप क्या करेंगे? Would you touch even $1? शायद वो 50,000 निकालेगी तो किसी को नज़र ही नहीं आएगा। आप क्या करेंगे? निकालेंगे? फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए, मुझे बताइए what are you going to do?

0: यार मॉडर्न मंगलसूत्र ढूंढते ढूंढते थक गई हूँ।
1: तो कैरेट लेन चलो, दे नाउ हैव अ स्टोर इन फ्रिस्को एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस।
0: सीरियसली, कैसा कलेक्शन है?
1: मिनिमल, डायमंड, एलिगेंट, एवरीडे स्टाइल्स। यू विल प्रोबेबली स्पेंड मोर टाइम चूजिंग देन शॉपिंग।
2: फाइंड द मंगलसूत्र दैट मैचेस योर स्टाइल एट कैरेट लेन, होम टू द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडर्न मंगलसूत्रस। कैरेट लेन, नाउ ओपन इन फ्रिस्को नेक्स्ट टू तनिष्क।
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
4: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
5: तारीख पर तारीख।
2: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
4: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
0: फ्लोर्स क्लीन
6: चेक,
0: विंडोज क्लीन
6: चेक,
0: किचन क्लीन
6: चेक,
0: एयर डक्ट्स क्लीन।
6: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
7: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No rotor brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route. Rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
8: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
2: क्यों?
8: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
9: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
8: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
10: आई एम सो स्ट्रेस्ड। क्रेडिट कार्ड बिल्स, अनसिक्योर्ड डेट्स, व्हाट आर वी गोइंग टू डू?
11: कुछ भी नहीं, उरा डेट रिलीफ विल डू इट फॉर अस।
10: क्या मतलब?
11: उरा कैन हेल्प अस सेव अप टू 50% ऑन आवर टोटल डेट एंड द रेस्ट वी पे इन इजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स।
10: बट व्हाट इफ इट डजंट वर्क? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
12: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
13: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
2: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
14: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
2: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट हाईवे 121 और कस्टर जंक्शन।
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
17: होचो,
18: होको,
17: ओचो,
18: होको,
17: ओचो,
18: इट्स होको।
19: अरे बस भी करो यार।
18: अरे नया रेस्टोरेंट है पर नाम समझ ही नहीं आ रहा है।
19: नाम होको हो या होचो क्या फर्क पड़ता है?
14: एक बार वहाँ के लेजेंडरी चना पूरी, आइकॉनिक सैंडविचेस, डिलीशियस करीज, चाट्स और फेमस कोल्ड कोको टेस्ट करोगे ना, फिर नाम नहीं सिर्फ टेस्ट याद रहेगा।
2: इंडिया के सबसे लव्ड फूड ब्रांड्स में से एक होको अब फ्रिस्को में। वही आइकॉनिक फ्लेवर्स, वही अनफॉरगेटेबल टेस्ट एंड वेरिड केटरिंग ऑप्शंस। टेस्ट इंडिया, रीलिव मेमोरीज।
13: तुझे देखा तो ये जाना सनम।
1: 90s
0: का रोमांस 90s की मेलोडीज और वो लेजेंडरी आवाज DFW गेट रेडी टू रिलीव द मैजिक ऑफ कुमार शानू लाइव अनफॉरगेटेबल 90s सितंबर 11th एट द ब्रांड न्यू रॉबिन्सन फाइन आर्ट्स प्लेनो गाइए झूमिए और फिर से जी लीजिए अपने फेवरेट 90s के गाने लिमिटेड सीट्स फ्री पार्किंग और मीट एंड ग्रीट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर टिकट्स विजिट eventbrite.com या फिर कॉल करें 214-869-2668 पर प्रेजेंटेड बाय फोकस एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून ग्रुप
5: नहीं ब्राउन गर्ल से मेरा दिल भरता नहीं गोरी गोरी स्किन के लिए मैं मरता नहीं क्योंकि मैं हूँ शेर

सुहानी होनी ही है, व्हाट डू यू से, है ना? तो झेलूराम ने मुझे बताया, एक्चुअली हो ऐसा रहा था कि एक लड़का ना टैटू बनवा रहा था और रो रहा था, रोए जा रहा था। तो झेलूराम ने कहा, मैंने बोला उसे, यार जब दर्द नहीं सहा जाता तो क्यों टैटू बनवा रहा है तू? तो लड़के ने कहा, नहीं दर्द से नहीं रो रहा हूँ भाई, करीना लिखवा रहा था इसलिए मेरे नाम में कमीना लिख दिया। सब तो रोने पड़ेगा यार, करीना दिखाते दिखाते वेरी इजीली करीना कैन जस्ट हैव अ लिटिल बिट ऑफ मात्रा ऊपर र पर, बन जाएगा कमीना। टैटू सोच के बनवाइए यार, मतलब इट्स डन सो डन फॉर लाइफ, कैसे हटाएंगे?

शाम है सुहानी, सुन रहे हैं 104.9 FM। ये शाम भी बहुत है सुहानी, बिकॉज थैंक गॉड इट्स फ्राइडे की शाम है। और जब थैंक गॉड इट्स फ्राइडे हम अपने दिल से कह सके, तो वो शाम

परीतरे फ्रॉम द फिल्म धड़क 2 सुन रहे हैं 104.9 FM फनीजा रेडियो। दोस्तों पता है रक्षाबंधन, फनीजा फिल्म रेडियो एंड चकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट, डुरान वांट टू हियर योर मोस्ट अनफॉरगेटेबल मेमोरी विद योर ब्रदर और सिस्टर। सोचिए ये जो मिली भगत है इनकी आपके ही फायदे के लिए है, आपकी मेमोरीज हम सुनेंगे और आप मेमोरीज से वापस से उन मेमोरीज को लेकर अभी आएंगे। सेंड अस अ 1 मिनट वॉइस नोट ऑन व्हाट्सएप एट 214-837-7147 एंड यू कुड विन एक्साइटिंग डेली प्राइजेस इंक्लूडिंग डाइनिंग एक्सपीरियंस, एंटरटेनमेंट, रिजॉर्ट स्टेज एंड द ग्रैंड प्राइज एंड अनफॉरगेटेबल सिबलिंग रीयूनियन वीक एट चकटाओ कैसीनो एट रिसॉर्ट। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा अगर आपको एक हफ्ता रहने को मिल जाए। माइंड ब्लोइंग हाँ। फॉर कंप्लीट कॉन्टेस्ट डिटेल्स चेक आउट फनीजा रेडियो एंड सोशल मीडिया पेजेस। फॉलो कीजिए हमें फनीजा के सोशल मीडिया पेजेस को, चकटाओ कैसीनो एंड रिजॉर्ट डुरांड वे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज आर मेड टुगेदर। लेकिन आपको 21 साल के ऊपर होना ज़रूरी है पार्टिसिपेट करने के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कॉन्टेस्ट। सो 104.9 FM फन एशिया रेडियो और यहाँ पर ये वाला गाना आपके लिए।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq Dallas at 2809 Preston Road, number 1200, Frisco, 75034 today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: जीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
4: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
5: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
4: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
5: और एंटरटेनमेंट,
4: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
5: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
4: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंच पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
6: द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव योर चाइल्ड इज द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। I, Sunhee Simon Santiago, and my co-founder, Audra Langston, have coached debate champions, valedictorians, and Ivy League grads. We've created an online 3rd through 6th grade course that isn't just a public speaking class. It's a guide for building lifelong leaders. For more information, visit NextGenSpeakersAcademy.com. That's NextGenSpeakersAcademy.com.
7: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
8: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing, no hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI powered platform real time rates compare karta hai, taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews, hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
9: अरे तीन पे क्यों अटक गया?
10: क्योंकि साल्स हॉट चिकन भी तीन पे पहुंच गया।
11: प्लेनो रिचर्डसन एंड नाउ एट अ ब्रांड न्यू लोकेशन। साल्स हॉट चिकन कमिंग सून।
12: तारा वो तारा हर तारा।
1: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
13: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
14: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
15: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
16: Welcome back. स्वागत है आप सबका 104.9 FM Fun Asia Radio पर. कैसे दोस्तों? How is it going? पता है, डॉक्टर कहते हैं फल सब्जी खाओ, कभी दवाई नहीं खानी पड़ेगी. पर अब क्या हम कश्मकश में हैं कि जो सारी फल और सब्जियां हैं खुद दवाई खाकर बाजार में आ रही है, है ना? दुनिया बदलती जा रही है दोस्तों. क्या समझे सही क्या नहीं, गलत और सही कौन बताएगा? राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज कम्प्लीटली व्हाट यू थिंक इज राइट और व्हाट यू थिंक इज रॉन्ग. अब सही गलत में गलत क्या, हैव नो आइडिया. सुन रहे हैं आप मुझे, बट वो सही है और सुनते रहिए वो भी सही है. और अगर कहीं जाना है तो फिर लौट के आना है, वो भी सही है. और गाना ये सही है कि नहीं, आप बताइए मुझे. फ़ोन उठाइए, नंबर दबाइए, आपकी कोई फरमाइश हो तो. 972-235-5555 है स्टूडियो का नंबर.

This part of our show is brought to you by AG FinTechs. Yes, one of the fastest growing tax and accounting firms in the United States of America. Whether you are an individual, a startup, or an established business, AG FinTechs offers innovative financial solutions tailored to your needs. From bookkeeping, payroll accounting, and bank and credit card reconciliations to proactive tax planning, tax compliance, financial reporting, and business advisory services. They help keep your finances organized, compliant, and future ready. Trusted, efficient, and committed to your success, AG FinTechs is your partner in building a stronger financial future. Phone time number dabaiye, call kijiye 469-942-9888 ya fir visit kijiye agfintechs.com. Aaj hi se pehle kuch nahi, but aaj se AG FinTechs is the name to go to. वैसे पता है मनोज साहब ने मुझे कॉल किया था उस समय जब हम AI के बारे में बात कर रहे थे कि हम जब इतने सारे डिस्कवरीज कर लिए हैं, इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं, उससे सहूलियत हो रही है कि और ज़्यादा लाइफ में मुश्किल हो रही है. तो मनोज साहब ने कहा कि सहूलियत का तो नहीं पता, पर ये ज़रूर पता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो डेड होता जा रहा है धीरे धीरे. आजकल हम सोचना इतना कम कर चुके हैं, हर चीज़ का आंसर बस डाल के खोज लेते हैं, अपना ब्रेन यूज़ ही नहीं करते कि चलो हम ब्रेन को यूज़ करके इसका सल्यूशन खोज लें. इमीडिएटली दिमाग में यही आता है, यार जल्दी से AI से पूछ लो. विच एवर प्लेटफॉर्म यू यूज, ई द चैट GPT और क्लॉड और Gemini, जो भी आप यूज़ करते हो, यही दिमाग में आता है कि सबसे पहले अपना दिमाग क्यों लगाना, धीरे धीरे क्या होगा हमारे दिमाग का, सोच के देखिए, समझ के देखिए. शायद हम सोचना समझना भी भूल जाए, तो सोच के देखिए, समझ के देखिए. प्लीज़ कुछ करना ज़रूरी है, नहीं तो हाथ से ही निकल जाएगा ये दिमाग. Brand new song, this is Drop

Baby, bring it on. That was the name of the song. Wah wah, bring it on. That was the name of the song. ये तो गाना हो गया. 104.9 FM Fun Asia Radio सुन रहे हैं. शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद ट्यून इन करने के लिए. वैसे दोस्तों आपको पता होगा शायद, आई एम अ रियल्टर नाउ और मैं केलर विलियम्स रियल्टी के साथ हूँ. एंड सो एक्साइटिंग, दिस इज़ अ न्यू फेज इन माई लाइफ विद माई आर्ट, विद माई रेडियो एंड नाउ बींग अ रियल्टर, जस्ट लुकिंग एट दिस ब्यूटिफुल होम्स. और अभी एक मैंने बहुत ही खूबसूरत होम लिस्ट किया है विच इज़ इन सलाइना, और इसका कल और परसों ओपन हाउस है. बट यू नो दिस इज सच एन अपग्रेडेड होम, ब्रांड न्यू. एक्चुअली जो सेलर थे ही टुक दिस होम फ्रॉम द बिल्डर्स इन जनवरी बहुत सारे अपग्रेड्स के साथ. एंड ही फॉर सम रीजन्स ही हैज़ टू सेल इट वेरी क्विकली, पर्सनल रीजन्स है, लेकिन इतने अपग्रेड्स हैं एंड ही इज़ गिविंग इट आउट एट अ वेरी वेरी क्रेजी अमेजिंग प्राइस. और बहुत सारा कुछ टीवी एंड फर्नीचर एंड म्यूजिक सिस्टम एंड बहुत कुछ खरीदा हुआ है विच आर सच वेरी क्लासी, वेरी हाई एंड, एंड इट्स ऑल देयर. सो दिस इज़ कमिंग आउट एंड टुमारो इट जस्ट गॉट लिस्टेड टुडे एंड टुमारो इट इज़ द फर्स्ट शोइंग विच इज़ ऑन ओपन हाउसेज सैटरडे एंड संडे. अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए, आपको ये देखना है, आप सलाइना में घर खोज रहे हैं, मैं नहीं खोज रही, नहीं तो मैं ही ले लेती, बट आप अगर खोज रहे हैं तो 972 नहीं है, मेरा नंबर है 347-449-4242, मुझे कॉल कीजिए एंड आप कल आइए ओपन हाउस में, कल और परसों किसी दिन भी, to see this one. This maybe you are looking and this might be yours and I can help you get that. Sun rahe hain 104.9 FM Fun Asia Radio. Subah shaam din raat rozana har hafte hum aate hain haste haste aur chahte hain bas aapki ek muskaan.

अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री।